0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty. The musty. The musty.
3: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। आज शनिवार 29 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5 बज रहे हैं।
4: Chillax with Radio Musty,
0: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात। घर मिला तो चलिए सुबह की ठीक 5:04 हो गई है। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया और आप सुन रही है रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। और लेट मी टेल यू दैट आज की सुबह हमने शुरू की एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, एंड आई होप कि आपको ये गाना बहुत ही पसंद आया किशोरदा की आवाज में और आपकी सैटरडे को और भी खूबसूरत बना रहा है। वैसे बाहर का मौसम अभी आप ज़रूर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठंड भी है, हवा भी तेज़ चल रही है और सुबह के जो पल है बहुत ही खास होते हैं ऐसे मौसम में ना। रजाई से बाहर निकलना भी एक अचीवमेंट सा लगता है, पर कई लोग शायद आज नहीं निकलेंगे क्योंकि सैटरडे है, वीकेंड शुरू हो चुका है, तो आप रह सकते हैं कंबल में लपेटे हुए, आप रह सकते हैं। और जिन लोगों को काम पर जाना है आपको हम बुखार कहते हैं, तो चलिए हमारे साथ ये सदाबहार गाने आप एंजॉय करते रहिए। ये वो गाने हैं जो समय के साथ पुराने ज़रूर हुए हैं लेकिन दिल के लिए कभी पुराने नहीं होते। एनवल कल था रक्षाबंधन, भाई बहन के रिश्ते को मनाने का खूबसूरत दिन। कल कितनी यादें ताज़ा हुई होंगी, राखी बांधी होंगी, मिठाई खाई होंगी, थोड़ी नोक झोंक हुई होगी और सबसे ज़रूरी अपनों के साथ समय गुजरा होगा। तो आज सुबह भी उन्हीं अपनों की यादों, उन्हीं पुरानी बातों और उन्हीं खूबसूरत गानों के साथ शुरू करते हैं। दिस इज रिलैक्स रिया के साथ और चलिए नेक्स्ट गाने हम अपने सभी लिसनर्स के नाम डेडिकेट करते हैं जो इस समय फुल ऑन साथ निभा रहे हैं। और आपके मैसेजेस, डेडिकेशंस आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। नंबर है 5499124।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: क्या खूबसूरत गाना था ना ये, और ऐसी सुबह में तो पुराने गाने का मजा ही कुछ और ही होता है। वेल 5:16 हुए हैं, सैटरडे ऑफिशियली शुरू हो चुका है और सैटरडे की सुबह का एक अलग ही सुकून होता है। वीकडेज में सुबह आँख खुलते ही दिमाग में लिस्ट शुरू हो जाती है, काम, स्कूल, ऑफिस, ट्रैफिक, डेडलाइंस, लेकिन सैटरडे कहता है कि आज थोड़ा धीरे ही चलो। और आज का मौसम भी वैसे वही कह रहा है, ठंडी हवा चल रही है बाहर, एकदम शांत माहौल। सड़क पर भी अभी हलचल तो शुरू हुई ही नहीं है, कहीं कोई चाय बना रहा होगा, कहीं कोई शायद सवेरे सवेरे जॉगिंग के लिए निकल गया। बट इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, आप नेसेसरी प्रिकॉशंस लेकर ही बाहर जाइए, यानी कि गर्म कपड़े आप पहनते चलिए। एंड वेल सवेरे सवेरे बहुतों को भूख भी लगती है, तो शायद आप नाश्ता भी ले रहे हैं, तो आपको हम शुभ आहार कहते हैं। और कुछ लोग वो तो अभी भी कंबल के अंदर से रेडियो मस्ती सुन रहे हैं, तो चलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं जस्ट हैव अ गुड टाइम हमारे साथ है। एंड वेल कल रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन के साथ बचपन की कितनी यादें जुड़ी हुई होती है ना। बहन राखी लेकर तैयार, भाई की भागने की कोशिश में, पहले गिफ्ट दिखाओ, पहले राखी बांधो और फिर मिठाई के साथ वो छोटी छोटी नोकझोंक। जिंदगी बड़ी हो जाती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, लोग अलग अलग जगह रहने लगते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता दिल में वही रहता है। तो अगर कल आपने अपनी भाई या बहन के साथ समय गुजारा, एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, तो उन पलों को संभाल कर रखिए। और अगर दूर है तो एक फोन कॉल भी बहुत कुछ कह सकती है। चलिए एक और सदाबहार गाने आपके नाम, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वन।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: आप लोग तो सुबह सुबह रिलैक्स का पूरा मजा ले रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, डेडिकेशंस आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात आपको हमारी सर बहरे गाने बहुत ही पसंद आ रही है। सच कहूँ, ठंडी हवा, सैटरडे की सुबह और ऊपर से ये पुराने खूबसूरत गाने, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। और अब समय है आपके मैसेजेस पढ़ने का। किसी ने क्या भेजा है हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम व्हाट्सएप की ओर बढ़ते हैं। जयशन जी, प्रणाम आपको। सवेरे सवेरे हमारे साथ जुड़ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मैसेजेस यहाँ पर भेजते हैं, डेडिकेशन से भेजते हैं। तो चलिए, आप काम के लिए रवाना हो रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ठंड है। वेल, सच बात है, क्योंकि हम भी वही रीजन, आप ईस्ट में काम करते हैं तो हम भी वही रीजन से आते हैं और सच में बहुत ही ठंड थी। वैसे आई थिंक कि ओवरऑल सभी पूरे टापू में बहुत ही ठंड हो रही है, तो सभी को हम कहेंगे कि गर्म कपड़े पहनते रहिए। और आप डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना फॉर तेंबा, उमिरन, दानू, जीवन, अंगुतिया, आकाश, शर्वन, रामदेवर, मेवन, सभी दोस्तों के नाम, सभी कलीग्स के नाम। एंड यहाँ पर हमारे साथ ओल्ड सो जुड़ी हुई है अब्दुल और

0: साहिर बानो जी, तो गुड मॉर्निंग आपको एंड सिंगर रिहान दाऊ को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रिहान, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको। 15 साल के हो गए हैं, सो ब्लेस यू और बहुत सारा प्यार यहाँ पर। बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम पापा इरशाद, मामा सामीम और आपके दादा है अब्दुल और दादी सायरा बानो। सो यस, इन्होंने आपको विश किया है और हम भी हैं आपको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड यहाँ पर सुया जी कैसी हैं आप? आप और लाल देव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुंगुमा से है और कहते हैं कि ये जो गाने हम चला रहे हैं आपकी फेवरेट गाने हैं, तो आप अपनी गर्मा गर्म इलायची चाय एंजॉय कर रहे हैं साथ में आरएम2 रेडियो मस्ती के गाने। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहा है, सो आप एंजॉय करते रहिए और नेक्स्ट ट्रैक हम आपके नाम ही ज़रूर डेडिकेट करेंगे। एंड अमृता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉइंट साबले से हैं आप और कह रही है कि चिचोट मूवी का गाना जो हमने चलाया था आपको बहुत ही पसंद है एंड इट्स योर फेवरेट, सो ये गाना आपके लिए हमने चलाया है। वेल नेक्स्ट ट्रैक भी हम जरूर आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं। वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल ट्रैक नेक्स्ट, वन ऑफ विश हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नहीं लेकिन हैप्पी वीकेंड यहाँ पर टू सोगाई पमी साउद सुनक सिंह ओहानन और सिबालिक परिवार। सो यस, हम जरूर उनको विश करेंगे हैप्पी हैप्पी वीकेंड। ज्योति जी शादी पे नगर से है और नेक्स्ट गाना आशनी रेखा सुरेखा और माधव परिवार के नाम। अनुषा ओगेगाम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्लेंदे गौशर से है और नेक्स्ट गाना आप अपने पापा के नाम डेडिकेट करते हैं, सासन मम्मा प्रेमिला, भाई संजू, भाभी है रोशनी और भांजी है परी, आपके भांजे भी हैं हेमकेश और सभी परिवार वालों के नाम। सो यस, बात करते करते यहाँ पर 5:40 हो चला है, लेट्स हियर द नेक्स्ट ट्रैक, फिर इसके बाद हम लेकर आएंगे आपकी राशि।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: घड़ी मिलाते चलिए 6:45 बज रहे हैं और समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा, क्योंकि इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: वाला आज का दिन नए काम शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी अपने से अच्छी बातचीत होगी। पैसे के मामले में सोच समझ कर कदम बढ़ाए। लेकिन नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज मन शांत रहेगा और घर परिवार से खुशी मिलेगी। पुरानी याद आपके चेहरे पर मुस्कान ले आ सकती है और काम में धीरे धीरे सफलता मिलेगी आपको। लेकिन नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज किसी खास इंसान से बात दिल को हल्का कर सकती है। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और जल्दबाजी से बचना बेहतर ही रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज परिवार के साथ अच्छा समय गुजरेगा। दिल की कोई बात अपनों से बांट सकते हैं आप। खर्च करते समय यह थोड़ा ध्यान रखें। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपका हौसला बना रहेगा और किसी काम में अच्छी तारीफ मिल सकती है आपको। दोस्त या रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलेगी। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज पुराने अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा। सेहत और आराम का भी ध्यान रखें। किसी फैसले में अपने दिल की भी सुने। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। किसी अपने से मिलना या बात करना दिन को खास बना सकता है। काम में संतुलन बनाए रखें। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बेवजह की बहस से दूर रहना फायदेमंद होगा। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज का दिन हल्का फुल्का और खुशनुमा रहेगा। छोटी सी सैर या अचानक बना प्लान मजा दे सकता है। नए मौके पर नजर रखें। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज मेहनत का अच्छा फल मिल

0: सकता है, घर में सुकून न रहेगा और किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। लकी नंबर है आज आपका 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज कुछ नया सीखने या नई जगह जाने का मौका आपको मिल सकता है और अपने फैसलों पर भरोसा आप रखते चले। लकी नंबर है आज आपका 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज दिन में पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, अपनों का साथ मिलेगा और कोई छोटी सी खुशी आपका दिन बना देगी। लकी नंबर है आज आपका 7। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। वेल, सैटरडे का दिन है, वीकेंड टाइम है, आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अदिति के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको अदिति।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले फरवरी महीने में ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर अपने बड़े अक्षरों में लिखा था, जेको गौसिया को मत छोड़ो। इस कदम से शगस मुद्दे से जुड़ी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस पोस्ट के कारण पिछले अप्रैल महीने से शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि उस समय केयर स्टार्मर की सरकार के अधीन में बरतानी संसद ने इस बिल को अलग रख दिया था। अब जहां अगस्त महीने समाप्त होने चला है, वहां पिछले 2025 में तय हुए समझौते को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं है। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ में कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया गया कि मॉरिशस सरकार की दो सूत्रों के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। ईंधन सप्लाई को लेकर पिछले हफ्ते मॉरिशस और भारत के बीच 5 सालों का एक समझौता तय हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी व्यापार के हालिया आंकड़े मॉरिशस के आयात पर ऊर्जा खर्चों के प्रभाव की तरफ संकेत करते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधे से ज़्यादा बढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंच गई है, जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 2400 पार कर गई है। इनमें 500 से ज़्यादा विदेशी मूल के लोग बताए जाते हैं। राहत कार्य जारी हैं। भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए तेज़ हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से सावधानियां बरतने की मांग की जाती है, खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए खासकर क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर सतर्कता बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन संबद्ध तटीय इलाकों में भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:21 पर सूर्योदय, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Masti।
1: तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
4: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
5: Chillax with Radio Masti,
3: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। 6:10 हो चुके हैं, सैटरडे की सुबह है और आप सुन रहे हैं रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। और इस सेकंड आवर की शुरुआत हुई है एक बहुत ही खूबसूरत दिल को छू जाने वाले गाने के साथ, साथिया फ्रॉम साया मूवी। बाहर अभी भी ठंड है, हवा में वो हल्की सी सर्दी है और सुबह का माहौल बिल्कुल सुकून भरा है। पहले घंटे में हमने सदाबहार गानों का साथ पुरानी यादों को हमने ताज़ा किया और अब थोड़ा सा सॉफ्ट मिक्स लेकर आए हैं आपके नाम। सैटरडे है तो सुबह को ज़्यादा भागदौड़ वाली बनाने की ज़रूरत नहीं, आज बस आप आराम से उठना, अपनी चाय या कॉफ़ी आपको बनानी है, खिड़की खोलनी है और ठंडी हवा को महसूस करना है और रेडियो मस्ती को अपना साथी भी बनाना है। कुछ लोग अब तक सो रहे हैं, कुछ लोगों की सुबह काम के साथ शुरू हो चुकी है और कुछ लोग वीकेंड की प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आप, म्यूजिक को साथ रखिए, मूड को हल्का रखिए और सैटरडे को एंजॉय करते रहिए। चलिए अब इसी सॉफ्ट रोमांटिक और वीकेंड वाले मूड को हम आगे बढ़ाते हैं। रिलैक्स कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती। आपकी डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499 1294
2: with Radio Mastery, your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: सवेरे सवेरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवानंद जी, आपके साथ है बबीता कृष्टि दर्शनी नकुल एंड रिया। हैप्पी सैटरडे विश करते हैं सभी को, हैप्पी सैटरडे आपको भी। और अमृता जी हमारे साथ पहुंचे सावले से जुड़ी हुई है, कहती है कि गाने का जो सिलेक्शन है आपको बहुत बहुत ही पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार। और यहाँ पर नंदिनी हमारे साथ जुड़ चुकी है और एक गाना रिक्वेस्ट कर रही है, देखेंगे अगर हो सके तो जरूर चलाएंगे। एंड गुड मॉर्निंग विश करते हैं सभी को किशन जी, किशन रघुनाथ जी आप है सो नाम से। और नेक्स्ट ट्रैक आप अपनी पत्नी माला और अपनी दोनों बेटियों के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, जिया एंड रिया। एंड यहाँ पर ललिता जीतन जी, कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग विश करती है सभी को, अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर रही है आज का जो प्रोग्राम। तो चलिए आप रेडियो मस्ती के गाने एंजॉय करती रहिए रिलैक्स शोरिया के साथ। विदेशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हैं आप, आफ्टर लॉन्ग आपने मैसेज भेजा है, सो आई होप सब ठीक ठाक। और यहाँ पर ऑल्सो सपना हमारे साथ जुड़ चुकी है, सपना और आप अपने प्यार प्रकाश के नाम डेडिकेट करना चाहती है एक प्यार भरा गाना, तो वो हम ज़रूर करेंगे, बहुत ही खूबसूरत गाना हम उनके नाम डेडिकेट करेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेलो दीपक, गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग सभी को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदी पापा इसी प्रमिला जी हमारे साथ कनेक्टेड है और आज आपकी

0: की बहन माला का जन्मदिन है, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे माला जी को और बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस आपके पूरे परिवार की ओर से।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: घर ही मिलाई, सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ ने कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया कि मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए श्रगुस मामले को आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये बढ़कर 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा। न्यायिक क्षेत्र में असाइजेज अदालत के स्तर पर सजा सुनाए जाने के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 54 के मुकाबले 2025 में 104 लोगों को सजा सुनाई गई, खासकर ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंची। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले फरवरी महीने में ट्रूथ सोशल नामक नेटवर्क पर बड़े अक्षरों में लिखा था, डिएगो गार्सिया को मत छोड़ो। इस कदम से श्रगुस मुद्दे से जुड़ी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस पोस्ट के कारण पिछले अप्रैल महीने से श्रगुस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि उस समय सखेर सौम की सरकार के अधीन में बरतानी संसद ने उस बिल को अलग कर दिया था। अब जहां अगस्त महीना समाप्त होने चला है, वहीं पिछले 2025 में तय हुए समझौते को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं है। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ ने कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया कि मॉरिशन सरकार के दो सूत्रों के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। विस्तार प्रणव बिहारी और गीता स्नारायण के साथ।
1: विदेश मंत्री रितेश रामफल द्वारा शुक्रवार की सुबह और M1 पर दिए गए बयान में उन्होंने कहा, राष्ट्र संघ महासभा लगने वाली है सितंबर में, देखते हैं कि क्या होगा। वेस्टमिंस्टर पैलेस में संसदीय कार्यों के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है और साथ में बरतानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली मुलाकात का भी।
2: À la rentrée du Parlement britannique, qui le dossier de Chagos.
1: उम्मीद है कि बरतानी संसद के कार्यों के शुरू होने पर श्रगुस मामले का अनुसमर्थन किया जाएगा, क्योंकि अब तक ब्रिटेन ने कहा है कि इसके साथ आगे बढ़ेंगे। और अब हालिया खबरों के अनुसार बरतानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि श्रगुस का मामला प्रधानमंत्री के एजेंडे में शामिल हो। टेलीग्राफ के अनुसार मॉरिशस इस शिखर बैठक का फायदा उठाकर मांग कर सकता है कि यूनाइटेड किंगडम पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे के प्रयोग को जटिल बना सकता है। मॉरिशस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रसंघ से एक रेजोल्यूशन

0: एक्शन की मांग भी कर सकता है, जिससे यूनाइटेड किंगडम द्वारा टापुओं के प्रयोग को अवैध करार दिया जा सकता है या फिर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। लेकिन तब तक बरतानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि जेगो गार्शिया पर लंबे समय तक अधिकार और सुरक्षा यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच समझौते की नींव है।
1: ईंधन सप्लाई को लेकर पिछले हफ्ते मॉरिशस और भारत के बीच 5 सालों का एक समझौता तय हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी व्यापार के हालिया आंकड़े मॉरिशस के आयात पर ऊर्जा खर्चों के प्रभाव की तरफ संकेत करते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधे से और बढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा है। शैलिनी अवन, गीता स्नोरान।
0: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की ओर से बुधवार को जारी इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस का व्यापार घाटा 67.5 बिलियन रुपए रहा, जबकि पहली तिमाही में ये 45.6 बिलियन रुपए था। यानी 3 महीनों में व्यापार घाटे में 48.1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक साल में ये 26% बढ़ा है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह आयात है, जो तिमाही आधार पर 36.4% बढ़कर 96.4 बिलियन रुपए हो गए। आयात में खनिज ईंधन, लुब्रिकेंट और संबंधित उत्पादों में एक साल के मुकाबले 71.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके मुकाबले निर्यात में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही। दूसरी तिमाही में निर्यात 28.9 बिलियन रुपए रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 4.3% अधिक है। इस तरह साल के पहले 6 महीनों में मॉरिशस का व्यापार घाटा 113.1 बिलियन रुपए हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। दूसरी तिमाही में स्थिति बिगड़ने के बावजूद स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने पूरे साल के लिए करीब 215 बिलियन रुपए के व्यापार घाटे के अपने अनुमान को बरकरार रखा है। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और समुद्री व्यापार मार्गों पर तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं।
1: 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटे में बढ़ोतरी को लेकर अर्थशास्त्री मनीष अदुकोनी ने एक बुनियादी बात की तरफ संकेत किया है। मॉरिशस अपने इस्तेमाल का 80% से ज़्यादा हिस्सा आयात करता है। इसमें ईंधन सबसे महत्वपूर्ण है और हाल में वैश्विक अस्थिरता के साथ इसकी कीमत बढ़ने से आयात में खर्च सीधे तौर से बढ़े हैं। हालाँकि उनका ये मानना है कि मॉरिशस में आयात किए जाने वाले सामानों में कुछ ऐसे हैं जिनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। वे खास तौर पर पर्यटन सेक्टर का जिक्र करती हैं, एक ऐसा उद्योग जो विदेशी मुद्रा तो कमाता है लेकिन साथ ही आयात से जुड़ा काफ़ी खर्च भी करवाता है। होटल बनाने से लेकर रोज़मर्रा के कामकाज तक इस्तेमाल होने वाले सामानों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। इसलिए मनीष अदुकोनी के अनुसार संरचना के स्तर पर ही बदलाव की आवश्यकता है। वे इस बात पर जोर देती हैं कि ये समस्या मात्र आयात तक सीमित नहीं है, बल्कि मॉरिशस के निर्यात को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, न्यायिक क्षेत्र में असाइज अदालत के स्तर पर सजा सुनाए जाने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 54 के मुकाबले 2025 में 104 लोगों को सजा सुनाई गई, खासकर ड्रग से जुड़े अपराधों के लिए। ये जानकारी न्यायपालिका की 2025 की सालाना रिपोर्ट में सामने आई है, जो कुछ दिन पहले ऑनलाइन प्रकाशित हुई है। 2025 में देश की अलग अलग अदालतों में 92,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लवीना सूफी, गीता स्नान।
0: रिपोर्ट के अनुसार 2025 में मॉरिशस की अदालतों में 92,649 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में ये संख्या 88,586 थी। यानी मामलों में 4.6% की बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर 2025 तक 70,259 मामले अभी भी लंबित थे। एक साल पहले इन मामलों की संख्या 66,919 थी। यानी 2024 और 2025 के बीच इन मामलों में 5% की बढ़ोतरी हुई। असाइजेज अदालत में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराए जाने के मामले 30 से बढ़कर 63 हो गए। वहीं हत्या के मामलों में दोष सिद्धि की संख्या 7 पर ही रही। इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन यानी FCD में 2025 में 74 मामले दर्ज

0: किए गए, जबकि 2024 में ये संख्या 60 थी। इसी दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या 58 से घटकर 46 हो गई। इसके चलते न निपटाए गए मामलों की संख्या 148 से बढ़कर 176 हो गई। तलाक के मामलों में 2025 में 3,129 आवेदन दाखिल किए गए, जो 0.6% की मामूली कमी है। निपटाए गए 3,358 मामलों में से 89% मामलों में तलाक का फैसला सुनाया गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 44.1% तलाक आपसी सहमति से हुए, वहीं 64.8% मामलों में दंपति के एक या कोई भी बच्चा नहीं था।
1: आने वाले कुछ महीनों के दौरान एल नीनो घटना की ओर तेज होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल पर भी अंतर्राष्ट्रीय नजर पर स्तर पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में मॉरिशस इलाकाई जलवायु पर इनके संभावित प्रभाव की बारीकी से जांच कर रहा है। संदर्भ में गुरुवार को रोजिल में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में जलवायु परिवर्तनशीलता पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये पहल मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की रही, जिसके लिए इंस्टीट्यूट फ्रांसिस डी मॉरिस का सहयोग रहा। मकसद रहा उन घटनाओं को बेहतर समझना जो जलवायु पर असर डालती हैं और खासकर पानी, खेती, मछली पालन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर इनके नतीजों का अंदाजा लगाना। मौके पर उपस्थित कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार हालात के अनुसार ढलने की बात अब अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने शोधकर्ताओं, संस्थानों, किसानों और मछुआरों को साथ लेकर प्रयास करने की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रेसिजन फार्मिंग और नई तकनीकों की संभावनाओं पर भी बल दिया। शैलिनी अबन, आस्था गोविंद।
2: Chaque fois, une cause d'adaptation, mitigation, etc. Au fin, trouver que finalement, Tibet et Kathmandu.
3: कृषि सेक्टर में बदलाव अब जरूरी हो गया है। इसी वजह से खेती में एआई और ड्रोन जैसी नई टेक्निकों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि खेतों में ज्यादा सटीक तरीके से काम किया जा सके। रेनियन के रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर इस दिशा में अध्ययन किया जा रहा है। फ्रांस के साथ भी सहयोग जारी है, खासकर गन्ने की नई किस्मों और खाद्य फसलों को लेकर। इसके साथ किसानों को खेतों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पदार्थों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसानों में सही तरीके अपनाने की आदत विकसित करना जरूरी है, क्योंकि कृषि और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कोई खतरा नहीं लिया जा सकता।
1: मॉरिशस में बारिश की मौजूदा कमी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के जरिए पानी के जिम्मेदार इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। गुरुवार को जोन 4 की 5 स्टेट सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों ने वाकवा में सतत विकास पर आधारित एक वैश्विक शैक्षिक परियोजना के नतीजे प्रस्तुत किए। ग्रीन हाउस, सब्जियों के बगीचे, कंपोस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम और स्थानीय तथा औषधीय पौधों वाले बगीचे, कुछ 155 छात्रों ने 3 महीने के अंदर अंदर 32 प्रोजेक्ट डिजाइन करके तैयार किए। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को सब्जियां उगाना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाना सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ये पहल देश के चारों एजुकेशनल जोन्स तक बढ़ाई जाएंगी। उनसे बात की शैलिनी अबन ने, विवरण गीता स्नरण का।
4: Avec le soutien de Mauritius Telecom, nous pouvons inculquer une valeur dans nos bons enfants.
0: हम sustainable development की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह स्कूलों में मॉरिशस टेलीकॉम के सहयोग से बच्चों को मूल्य सिखा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और एक उपाय है कि किस तरह वे पौधे जमीन में लगा सकते हैं और अपने स्कूल के पर्यावरण को सुंदर कैसे बना सकते हैं। हमेशा शिक्षा जोन में प्रतीकात्मक रूप से गतिविधि चलाते हैं और अन्य 4 जोन में तथा रोड्रिग्स में भी इसे दोहराते हैं।
1: आपने जरूर महसूस किया होगा कि हमारे इलाके पर कल से तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऋतु विज्ञान केंद्र की तरफ से मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, जो सोमवार 31 अगस्त सुबह के 10 बजे तक बरकरार रहेगी। इन 2-3 दिनों के लिए मौसम कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। मौसम

0: विभाग की तरफ से मुनिया शांताली के साथ।
1: Un anticyclone, un fort anticyclone même qui peut évoluer au sud-ouest des Mascareignes. Donc déjà qu'on a trouvé le temps les plutôt venteux. Donc on a aussi un avertissement de vent fort qui est en vigueur à l'île Maurice. Et l'avertissement est valable jusqu'à lundi à 10h. Et donc les conseillers pour être très prudents. C'est sûr que demain, rafale qui nous cavave et Nakikavava arrive jusqu'à 90 km par heure dans certains endroits. Et on a aussi un avertissement de forte houle, de la mangrove, la houle, qui peut influencer l'état de la mer dans les parages des Mascareignes. Donc, ben la houle de 4 à 6 mètres qui est capable même d'atteindre la côte, surtout dans la région du sud et de l'ouest, est capable même de faire ras de marée. Donc, il est conseillé pour ne pas sortir en mer et aussi pour éviter d'aventurer sa ben la plage là, surtout dans le domaine de marée haute. Et sinon, ça, en termes de temps même, donc ce sera de la pluie pour le moment, ben la pluie qui n'est pas pour beaucoup en termes d'intensité, mais toujours parfois, ben, je peux traverser dans les alizés de l'anticyclone, et ça pour donner quelques pluies. Et surtout à l'est, au sud et sur les hauteurs. Nous pouvons sous l'effet de l'anticyclone jusqu'à au moins en début de semaine. Donc nous portons toujours de la pluie à ce moment-là, surtout le banc de versant au vent et sur les hauteurs de l'île. Mais le banc de secteur de l'ouest et du nord aussi, donc pour le moment nous pouvons quand même banc de verser de soleil.
0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंच गई है जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 2400 पार कर गई है इनमें 500 से ज्यादा विदेशी मूल के लोग बताए जाते हैं राहत कार्य जारी हैं भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है जो सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी मास्कारिंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज दिन के दौरान रह रहकर खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे रह रहकर बारिश होगी हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और गाड़ी चलाते हुए सड़कों पर क्रॉस विंड्स वाली जगहों पर खास सतर्कता बरतें प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन तटीय इलाकों तथा समंदर तटों पर भी न निकलने की सलाह दी जाती है तापमान सामान्य से कम रहेगा सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 13 से 15 अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस साहिली इलाकों पर न्यूनतम 16 से 18 अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा सुबह 6:21 पर सूर्योदय हुआ शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर बरतानी अखबार द टेलीग्राफ ने कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया कि मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए शागस मामले को आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री पर समझौता लागू करने का दबाव बनाए रखने का प्रयास करेगा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार इस साल की प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का रहा, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा। न्यायिक क्षेत्र में असाइज अदालत के स्तर पर सजा सुनाए जाने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 54 के मुकाबले 2025 में 104 लोगों को सजा सुनाई गई, खासकर ड्रग्स से जुड़े मामलों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंची। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फिजान हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शुभ समाचार सुनिए। दुकान लेन मौगाविये बोबा सेमी, दुकान लेन मौगाविये बोबा सेमी 69 साल के 69 years old जनाब हुसैन तिगाली, जनाब हुसैन तिगाली जो हुसैन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन की 11:30 बजे इनके मकान दुकान लेन मौगाविये बोबा सेमी से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए पोर्ट लुई की जमा मस्जिद ले जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM। डिस्पेंसरी रोड थ्री ओले में 53 साल के 53 years old श्री जितेंद्र दुलब जो पाम मौशदालपोरी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान डिस्पेंसरी रोड थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिजर्वर रोड कॉन्फुक्रो फिनिक्स में 72 साल की 72 years old श्रीमती यशोदा नन्लोल पैदाशी नाम बिसुनत जो आन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री ज्ञान नन्लोल के मकान रिजर्वर रोड कॉन्फुक्रो फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्फुक्रो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिवरसाइड रोड लालोरा सैंपिया में 74 साल के 74 years old श्री रोहित लखमन इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे इनकी पत्नी श्रीमती राजमती लखमन के मकान रिवरसाइड रोड लालोरा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्तान सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 साल के 95 years old श्री हरिलाल कोयलेसा जो मौशदालपोरी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती सती कोयलेसा के मकान अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागुज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 11 सेंट जेम्स स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 76 साल की 76 years old श्रीमती बिदवंती स्वंबर पैदाशी नाम रामदोस इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 10 बजे रॉयल रोड बुबासें के एलियन सन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। बुआशेरी रोड मोका में 77 साल की 77 years old श्रीमती विद्यावती रामा पैदाइशी नाम एगतसामी जो विवेक नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। आज दिन के दो बजे के मकान बौशहरी रोड मौका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली बोयों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ओंग्रे कातों बिस्नाथ लेन ओकुले में 71 साल की 71 years old श्री पदुमन लल जवाहिर जो सुरेश नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज सुबह नौ बजे की पत्नी श्रीमती बीना लल जवाहिर के मकान ओंग्रे कातों बिस्नाथ लेन ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोलफेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। घर मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 7 बज रही है।
4: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: Once again, good morning आप सभी को 7:05 हो चुके हैं. सैटरडे की सुबह है और आप सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर. और क्या खूबसूरत शुरुआत हुई है इस थर्ड आवर की मेहरबान गाने के साथ है. अब सूरज पूरी तरह से आसमान में आ गया है. सुबह की ठंडक अभी भी है, हवा भी ब्रीजी ब्रीजी है, लेकिन मौसम एकदम खूबसूरत है. ऐसी सुबह जहाँ बस मन करता है खिड़की खोल कर बैठो, गर्म चाय या कॉफी का कप हाथ में हो और म्यूजिक सुनते रहो. सैटरडे है भाई, वीक का वो दिन जहां सुबह उठते ही दिल कहता है आज जल्दी किस बात की. और आज की सुबह हम बना रहे हैं और भी खास, क्योंकि विनर्स के साथ है एक जबरदस्त गेम. जी हाँ, यू जस्ट हैव टू प्ले विद द एमबीसी रेडियो. और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है एक गिफ्ट वाउचर विद 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय योर विनर्स. सो यस, यहाँ पर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं अंटिल 6th of September. व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ Sierra Chicken Franks 340 gram? What is the normal price and the promotional price of Sierra Chicken Franks 340 gram? तो बस यही आपको हमें बताना है पूरे नाम और पूरे पते के साथ on 54991294. चलिए अभी गाना सुन लेते हैं और we'll be back अपनी lucky winner के साथ. Good luck to all of you.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Well, यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम विनर्स और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि अंटिल 6th ऑफ सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ सियरा चिकन फ्रैंक्स 340 ग्राम. आपको बता दें दैट नॉर्मल प्राइस है 55 रुपीज़ जबकि प्रमोशनल प्राइस है 34 रुपीज़ 90.

0: 85 सेंट। यहाँ पर बहुतों ने सही जवाब दिए हमें, लेकिन एक ही विनर चाहिए तो लकी ड्रॉ हमने कर लिया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी लकी विनर बनी है कलिका ललिता। आप है वैली डिफाइड से, सो कंग्रेचुलेशन आपको, आपने दिया है एकदम सही जवाब और इसी के चलते आपको मिल रहा है 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय योर विनर्स। आपको बता दी दैट ये वाउचर आप तक हम पोस्ट करेंगे, इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि पूरे नाम और पूरे पते के साथ सही जवाब भेजना। सो यस ललिता जी, आपको वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस और आपका वाउचर आप तक पहुंच जाएगा। सो जो लोग नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, आप दिल छोटा ना करें क्योंकि बारी आपकी ज़रूर आएगी एंड वी हैव एक दो गेम्स और तो हम खेलते रहेंगे आपके साथ। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड टू आरएमटी रेडियो मस्ती।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: चलिए अब समय है एक स्पेशल बॉलीवुड गेम का, ब्रॉट टू यू बाय एमबीसी रेडियो एंड आई मीडिया. जी हाँ, मीडिया ब्रिंग्स टू मॉरिशस मुक्तेश द वॉइस ऑफ मुकेश फॉर टू वेरी स्पेशल शोज ऑन फ्राइडे 4th एंड संडे 6th ऑफ सितंबर द कुडॉन आर्ट्स सेंटर. जी हाँ, यहाँ पर हम आपको बता दें दैट मुक्तेश हु हेल्स फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात इंडिया हैज़ बिन एनथ्रिलिंग ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड विद हिज रिमार्केबल मुकेश लाइक वॉइस. और खास बात ये है कि मुख्तर शाह के साथ हमारे अपने रिप्यूटेड मोशन को सिंगर्स भी परफॉर्म करने वाली है एंड बहुत कुछ है आपको बताने का, बट अभी तो हम गेम खेल देते हैं. यहाँ पर अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है एक एंट्री टिकट फॉर द कंसर्ट ऑन 4th ऑफ सितंबर 2026 ऑफर्ड बाय आई मीडिया. तो आज का सवाल आपके लिए मुकेश जी, द ग्रेटर मुकेश जी की आवाज़ में तो बहुत ही मशहूर गाने हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ और दोस्त दोस्त ना रहा. सवाल ये है कि मैं दो पल का शायर हूँ किस फिल्म का गाना है. बस आपको यही हमें बताना है और सही जवाब आप पूरे नाम और पूरे पते के साथ भेज सकते हैं 5499-1294. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: अब समय है विनर अनाउंस करने का. सवाल था, मैं पल दो पल का शायर हूँ.

फिल्म का गाना है और जिन्होंने जवाब दिया कभी कभी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपने वकील जी के इस एवरग्रीन गाने को पहचान लिया है, सो बिग कंग्रेचुलेशन गोज आउट टू एवरीवन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। लेकिन लकी विनर हमें मिल गई है एंड आप है सुरैया बीपति, आप है त्यागोज से और आपने दिया है सही जवाब, सो कंग्रेचुलेशन आपको। आपको मिल रहा है एक एंट्री टिकट फॉर द कंसर्ट ऑन 4 September 2026 ऑफर्ड बाई आई मीडिया। तो आप जीत रहे हैं टिकट्स, हमने आपको बता दिया, प्रेजेंटेड बाय आई मीडिया वेयर यू गेट टू एंजॉय द टाइमलेस मेलोडीज ऑफ मुकेश जी इंक्लूडिंग फेवरेट्स लाइक मैं पल दो पल का शायर हूँ एंड दोस्त दोस्त ना रहा इन द वॉइस ऑफ मुख्तर शाह। तो आपको हम ये भी बता रहे हैं कि मुख्तर शाह विल परफॉर्म द टाइमलेस melodies of the legendary singer and music lovers will be treated to unforgettable masterpieces of Indian cinema from the 50s, 60s and 70s. Our reputed Dimarshan co-singers bhi honge wahan par, Vasharani Bisi sir aur Vishal Mangruji will sing alongside Mukhtar Shah accompanied by our finest musicians under the musical direction of Vijay Yamanisamy. MBC is inviting you to participate and win tickets. To hamari games mein aap participate kar सकते हैं, आपको मिल सकता है एंट्री टिकट्स और अगर आप इंटरेस्टेड भी है तो जरूर आप खरीद सकते हैं। सो यस, यहाँ पर सुरैया बन गई हैं हमारी लकी विनर एंड जो लोग नहीं बन पाए लकी विनर, नॉट टू फॉरगेट वी हैव सम मोर गेम्स, तो आप सुनते रहे यहाँ पर आरएमटी रेडियो मस्ती। वी हैव सम गेम्स आपके नाम जो हम थोड़ी देर में वापस लेकर आएंगे।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए जी, समय हो चला है आज कल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है ये सुनने का, तो चलिए हम अरविंद को सुनते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। महलों में भी सीटी बजती हैं, इस बार केवल सीटी नहीं ढोल बाजा शहनाई भी। 4-1 के भारी स्कोर पर मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को चकनाचूर किया। सिटी के लिए रायन चर्की का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा, जादूगरी प्रदर्शन कहा जा रहा है। चर्की का डबल, गोल स्कोरिंग मशीन अर्लिंग अलोन का भी डबल रहा। क्रिस्टल पैलेस का गोल एक ऑन गोल रहा गोलकीपर दोनारूमा का। नया मैनेजर एंजो मारेस्का बहुत खुश हुआ, लगातार दूसरी जीत और वो भी स्टाइल में। क्रिस्टल पैलेस की दूसरी हार मतलब अभी के लिए मैनचेस्टर सिटी लीग लीडर और क्रिस्टल पैलेस सबसे नीचे अंतिम पोजीशन पे। आज के मैच इस प्रकार हैं। अर्ली किक ऑफ अनफील्ड रोड में लिवरपूल नॉटिंगहम फॉरेस्ट का स्वागत करेगा। 3:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, 3:30 किक ऑफ। उसके बाद बोर्नमुथ एवर्टन, कोवेंट्री सिटी हल सिटी, टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड, ये आज रात 8:30 बजे 8:30 किक ऑफ है। कल के मैच संडे फिक्स्चर, चेल्सी ब्राइटन, लीड्स यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड, संडरलैंड वर्सेस फुलहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा इप्सविच टाउन के खिलाफ 7:30 बजे 7:30 किक ऑफ। मंडे मैच एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख की धुआंधार एंट्री, 5-1 से बायर्न म्यूनिख ने स्टुटगार्ट को पछाड़ा। उपामेकानो, ओलिजे, जियाज पावलोविच के साथ एक ऑन गोल भी रहा। इस्माइल साइबाखी जिसने अपना पहला मैच खेला उसकी ओर से 3 असिस्ट रहे। फ्रांस में पारिस सैं जर्मे बाल बाल बचा, लील 2-0 से लगभग पारी को लील गया था, पर इंजुरी टाइम में 4 मिनटों के अंदर अंदर पारिस सैं जर्मे की लाजवाब एंट्री यानी उसका कमबैक, विटिन्हा और मार्किनोस पारिस सैं जर्मे को डूबने से बचा पाए। पारिस सैं जर्मे के लिए ये दूसरा ड्रॉ है।

0: पिछले मैच में भी यही कहानी थी। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में रेक्साम 1 बर्मिंगम 2 और स्पेन के लालीगा में रेसिंग सांतोंडे 3 एल्चे 2 अलावेस 1 विलारियल 0। ट्रांसफर न्यूज। ट्रांसफर बाजार बंद होने में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। ब्रैडली बाकोला लिवरपूल में अभी ले नई आलबा, यानी अभी तक नहीं आया है। बाहें फैलाए, हाथ पसारे, बेसब्री से लिवरपूल में बाकोला के आने का इंतजार किया जा रहा है, राह देख रहे हैं, पर अब तक केवल इन प्रिंसिपल कुछ ठोस नहीं है। उधर अस्टन विला पारी सैन जर्मेन से इब्राहिम एम्बाये को साइन करने जा रहा है, दाम लगभग 47 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। लिवरपूल ने भी एम्बाये को बाय करने का इरादा रखा था। एम्बाये केवल 18 साल का है, विला में उसका भविष्य उज्जवल होने वाला है। अस्टन विला एसी मिलान से राफा लियाओ को साइन करना चाहता था, पर लियाओ गलातासराय में चला गया। यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के ड्रॉ कल निकाले गए। यूरोपा लीग में प्रीमियर लीग से सन्डरलैंड, बोर्नमुथ और क्रिस्टल पैलेस हैं। सन्डरलैंड के ग्रुप में है एजेड अल्कमार, एसी मिलान, डिनामो अंडेलेक, यागेलोनिया, लेच पोजन और लेवस्की सोफिया। बोर्नमुथ के ग्रुप में है एसी मिलान, रियल सोसिएदाद, विक्टोरिया प्लाजेंस, स्पार्टा प्राग, स्टुमकाज, सेल्टा वीगो, अपोएल बेर्शेवा और लिल स्ट्रोम। क्रिस्टल पैलेस के ग्रुप में रियल सोसिएदाद, लियों, स्पार्टा प्राग, साल्सबर्ग, लेच पोजन, यागेलोनिया, होफनहाइम और बेसिक्टास। कॉन्फ्रेंस लीग में ब्राइटन है और ब्राइटन के साथ होगा मोनाको, पनाथिनाइकोस, क्रायोवा, रेताफे, काउनोस, अल्गीरिस, याब्लोनेक। यूरोपा लीग में सभी टीमें 8 मैच खेलेंगे, 4 होम 4 एवे, जबकि कॉन्फ्रेंस लीग में 3-3 मैच खेले जाएंगे, 3 होम 3 एवे, और इसी तरह क्वालिफाई होंगे नॉकआउट राउंड के लिए। क्रिकेट। इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच में अभी द थ्री लायंस की दूसरी इनिंग्स चल रही है। पहले बैटिंग करके इंग्लैंड 290 पर ऑल आउट हुई, फिर पाकिस्तान को केवल 110 रन पर साफ किया। अभी इंग्लैंद 3 विकेट खोकर 81 रन पर खेल रही है। पाकिस्तान पर 261 रन लीड। आज तीसरे दिन का खेल होगा। विमेंस एशिया कप कल से शुरू हुआ। दुबई में थाईलैंड ने हांगकांग को हराया। आज यूएई वर्सेस श्रीलंका और कल टीम इंडिया की एंट्री होगी थाईलैंड के खिलाफ। ये महिला एशिया कप है। मॉरिशस में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 के 5वें सप्ताह में आज 1 बजे एएमजी पैंथर्स वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स, फिर कल 9 बजे एपीपी लियोपार्ड्स वर्सेस वन हेल्थ जगुआर्स, और कल 1 बजे कॉन्टिनेंटल चीतास वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स। साइकिलिंग। किमले कुपियना इस बार क्लासिक लोरियों में भाग लेगी। ब्रिटेन टूर जीतकर आज फ्रांस में क्लासिक लोरियों में आएगी। ये भी वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। मॉरिशस में ही क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल लेवल पर कोइराची विलेज काउंसिल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। इस संडे को रोशनुआ टूर्नामेंट में सतानिक रोशतेया का मुकाबला ओलंपिक भामस्तान से। मोसेलमा सेंट एंड्रे में सैटरडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से गला मैच वेटरन कैडेट्स के खिलाफ, ये भी इसी रविवार को, इसी संडे को मोसेलमा सेंट एंड्रे मैदान में। सेंट जूलियन डुटमों में जिल्फाई स्पोर्ट्स क्लब की 60th एनिवर्सरी के लिए आज सैटरडे शनिवार को जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब मल्टी जिम और नए पेटॉक बुलोद्रोम की ओपनिंग होगी, और अवार्ड सेरेमोनी भी 4 बजे से जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब में। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हमारा साथ देते रहिए, विल बी अपडेटिंग यू आज दिन भर, क्योंकि बहुत एक्टिविटीज हैं, खासतौर पर 3:30 बजे से लिवरपूल वाला मैच अनफील्ड रोड में, सीजन लिवरपूल की एंट्री और बाकी मैचों के बारे में भी मैच रिजल्ट देते रहेंगे, और वीकेंड में काफी एक्टिविटीज होते हैं देश भर में, इस पर भी जानकारियां देंगे आपको। हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद, टेक केयर, यू टू।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट, रेडियो मस्ती।

0: Chillax with Radio Masti. और अब समय है एक और एक्साइटिंग गेम का ऑन चिलैक्स एंड दिस वन इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय बाजलू योर फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट. सो आपको बता दें दैट बाजलू इज एट विक्टोरिया बिन टर्मिनल पोर्ट लुइस बाजलू द सेंट ऑफ क्वालिटी. और ये भी आपको हम बता देती है दैट राखी के मौके पर जी हाँ उन्होंने काफ़ी सारे प्रमोशंस दिए थे और वहाँ पर 25% ऑफ भी चल रहा था. बट राखी तो ख़त्म हो गया है एंड यहाँ पर 25% ऑफ तो नहीं है लेकिन बहुत सारे प्रमोशंस जारी है वहाँ पर, तो आप ज़रूर जाकर चेक कर सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू दैट अगर आप जीत जाते हैं, क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है एक वाउचर With 500 rupees. So yes, है ना exciting. यहाँ पर सवेरे सवेरे हम आपके नाम games, gifts, बहुत कुछ लेकर आते हैं. तो आज का जो question है ये बहुत ही simple है. Which of the following product categories is Bajaloo best known for? Which of the following product categories is Bajaloo best known for? आपको options हम बता देते हैं. A. Body mist. B. Eau de Cologne. C. Eau de Parfum. बस इन तीनों में से एक आपको चूज़ करना है और सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ आप भेजेगा ज़रूर. और पता नहीं आप जीत सकते हैं 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय बाजलू. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.
1: Chillax with Radio Masti. Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: रेडियो मस्ती पर गेम्स लेकर आते हैं आपके नाम और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैटेगरीज इज बार्चलो बेस्ट नोन फॉर। आपको हमने ऑप्शंस भेज दिए थे, ए बॉडी मिस्ट, बी ओडिकोलॉन या सी ओडिपफ है, और सही जवाब है ओडिपफ है। यहाँ पर काफ़ी सारे सही जवाब मिले हमें और लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गया है हमारा लकी विनर। सो कंग्रेचुलेशन टू यू दी शबुदन, आप है लाफ्लोगा से और आपने दिया है सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी, दैट्स ओडिपफ है, और इसी के चलते आपको मिल रहा है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड टू यू बाय या बार्चलो। सो ये वाउचर आप तक पोस्ट किया जाएगा एंड आप सभी को हम बता देते हैं दैट बार्चलो इट्स अ फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट और ये पाया जाता है एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल पोर्ट लुइस। बार्चलो द सेंट ऑफ क्वालिटी, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं उनको 214-68-11 और 5251-1805 पर। सो जो लोग नहीं जीत पाए, बाद में और भी सारे गेम्स होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे, तो आप इसीलिए हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। चलिए, हैव अ ग्रेट टाइम ऑन रेडियो मस्ती।

नमस्ते पेशवा भोजपुरी के समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गल फरवरी महीना में ट्रूथ सोशल नामक प्लेटफॉर्म पर ही बड़ा अक्षर में लिख ले रहन जेगो गौसिया के ने छोड़े के ई कदम से शागस मुद्दा से जुड़ल स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आयल बा। ई पोस्ट के कारण गल अप्रैल महीना से शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता के मान्यता देवे की प्रक्रिया रुक गल रहल काहे कि उ बखत सकेस्टामा की सरकार के अधीन में बरतानी संसद उ बिल के अलग रख देले रहल। अब जहां अगस्त महीना समाप्त हुआ था हुए पर ही गल 2025 में तैल होल समझौता के हबीले कोनो मंजूरी नहीं मिलल बा। हालांकि मामला में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं बाटे। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ में काल एगो लेख में उल्लेख करल गल कि मॉरिशन सरकार की दुगो सूत्र के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीना में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए ई मामला की आगे बढ़ावे के आर मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के समझौता लागू करे की दबाव बनावे के प्रयास करी। ईंधन सप्लाई के लेके गल हफ्ता मॉरिशस और भारत के बीच 5 बरिस के कुछ समझौता तय होल बाटे। दूसर दिन विदेशी व्यापार के हालिया आंकड़ा मॉरिशस के आयात पर ही ऊर्जा खर्च के प्रभाव देने संकेत करता। ये बरिस के दूसर का तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधा से जस्ती बढ़ल बा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार पहला तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपया के रहल हुए पर ही अप्रैल से जून महीना के बीच ई 67.5 बिलियन रुपया ले पहुंचल बा। 2026 के दूसर का तिमाही के दौरान व्यापार घाटा में बढ़ोतरी के लेके अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी एगो बुनियादी बात देने संकेत कर ले हवन। मॉरिशस अपन इस्तेमाल के 80% जस्ती हिस्सा आयात करेला। एकर में ईंधन सबले जस्ती महत्वपूर्ण है और हाल में वैश्विक स्थिरता के संग एकर कीमत बढ़े के संगे आयात के खर्चा परी सीधा तौर से प्रभाव पड़ल बा। हालांकि उनका ये भी मानना है कि मॉरिशस में आयात करल जाए होला सामान में एकाद गो ऐसा उत्पाद है जे स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन हो सकेला। वो खास तौर पर ही पर्यटन सेक्टर के जिक्र करेलन। ऐसा उद्योग जो विदेशी मुद्रा कमावेला बकीर एकर संगे ही आयात से जुड़ल काफ़ी खर्चा भी करवावेला। होटल बनावे से लेके रोजमर्रा के कामकाज ले इस्तेमाल हुए होला सामान के एगो बड़ा हिस्सा आयात करल जाला। एकर खातिर मनीषा दुकोनी के अनुसार संरचना के स्तर पर ही बदलाव की आवश्यकता बा। उ इभी बात पर जोर देवेलन कि समस्या खाली आयात ले सीमित नहीं है बकील मॉरिशस के निर्यात पर भी मुश्किल पड़ता। न्यायिक क्षेत्र में असाइज अदालत के स्तर पर ही सजा सुनावे के मामला में काफ़ी बढ़ोतरी होल बा। 2024 में 54 मुकाबला में 2025 में 104 जना के सजा सुनावल गल है खासकर ड्रग्स से जुड़ल अपराध खातिर। ये सब जानकारी नगर पालिका न्यायपालिका की 2025 की सालाना रिपोर्ट में सामने आल बा जे एकादिन अगते ऑनलाइन प्रकाशित करल गल रहल। और मॉरिशस में पानी के मौजूदा कमी के ध्यान में रख के स्कूल के जरिए पानी के जिम्मेदार इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ावे के अभियान चलावल जाता। बीफे के जोन 4 के 15 स्टेट सेकेंडरी स्कूल के छात्र लोग वाकवा में सतत विकास पर आधारित एगो शैक्षिक परियोजना के नतीजा प्रस्तुत कर ले रहलन जा। ग्रीन हाउस सब्जी के बगीचा कंपोस्ट बारिश के पानी इकट्ठा करे के सिस्टम और स्थानीय तथा औषधीय पौधा होला बगीचा एकादगो 155 छात्र लोग 3 महीना के अंदर अंदर 32 ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करके तैयार कर ले हवन जा। शिक्षा मंत्री महेन गंगा पौसादी बात पर ही जोर दे ले हवन कि छात्र लोग की सब्जी उगावे के और पर्यावरण के अनुकूल तरीका अपनावे के सीखे के चाहिए। वही भी बोलन कि ये पहल देश के आर 4 एजुकेशनल जोन ले बढ़ावल जाए। दूसरा देश के खबर में नेपाल में उतरल विनाशकारी बाढ़ में मरे होला लोग की संख्या 580 ले पहुंच गल बा जबकि लापता हुए होला लोग की तादाद 2400 ले पहुंच गल बाटे। एकर में 500 विदेशी मूल के लोग हवन जा। राहत कार्य जारी बाटे। भारत देने से 50 टन मूलभूत सामान और दवाई के कंसाइनमेंट भेजल गल है। तय रहल भोजपुरी के समाचार। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।

0: So well with this beautiful Bhojpuri classic, ऐसी गाने के साथ आपका हम warm welcome कर रहे हैं. सुबह के 8:09 Saturday morning है 29th of August. मैं हूँ परी आपके साथ. It's time for your time listener का. लेकर आएंगे आपके लिए कुछ beautiful hits और आपकी इस morning को बनाएंगे खास and special. आप भी साथ दे रहे हैं. So not to forget आपके messages, आपके dedications 5499-1294 पर. अभी के लिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी. मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं अगले 24 घंटों के लिए अनुमान. दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होती रहेगी. हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.

0: जनता से सावधानियां बरतने की मांग की जाती है, खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए खासकर क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर सतर्कता बरतें। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन संबद्ध तटीय इलाकों में भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:21 पर सूर्योदय, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: La foire belle-belle Kadi retourne Cot Winners.
4: Belle-belle Kadi de retour Cot Winners. Du mercredi 26 août au lundi 31 août, le sèche-linge à 499,95 roupies et le fromage cheddar craft de 250 grammes à 78,95 roupies. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu. La
3: foire belle-belle Kadi nous ramène, nous la
5: On est tous winners.
1: Timeless Tarka.
2: RM2.
1: Timeless Tarka.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: So well, ladies and gentlemen, morning time. सुबह के 8:30 होने को है. It's 8:30 in the morning and आपकी ये जो sweet sweet weekend morning है उसमें हम लेकर आए हैं your time list का. So मैं हूँ परी आपके साथ गोरी good morning wishes के साथ आपको happy Saturday wish कर रहे हैं. Official beginning of the weekend. So what's your plan? I know कि आज के कुछ plans तो ज़रूर होंगे. कुछ लोग काम पर जा रहे हैं. I do know half day आप भी काम करते हैं. So अगर आप काम पर निकल रहे हैं या फिर आप सुबह घर पर चिल कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं या फिर अभी तक ब्लैंकेट में अपनी स्लो मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं, जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, वी हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए. आपके मॉर्निंग मूड को सेट करने के लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स. दैट्स योर टाइमलेस तड़का एंड टू गेट यू इन द वीकेंड मूड वी हैव दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना. इसी गाने के साथ विश कर रहे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग. परी का साथ दिन के 11 बजे तक माही वे हमारे सभी लिसनर्स के नाम. एंजॉय दिस वन.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गूंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: कहते हैं दोस्तों कि हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है। बीता हुआ कल चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना रहा हो, आज आपके पास अपनी कहानी को नई तरीके से लिखने का मौका जरूर है। कीप मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ, पेशेंस एंड करेज, बिकॉज छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। खुद पर विश्वास रखिए और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर और केपेबल आप है। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, डू गुड, बी गुड एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: L'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

0: Без
1: тарга. RM2.
2: So well friends, that's your timeless terka. It's 8:51 in the morning. क्या है आज का plan? Beach shopping friends के साथ breakfast या फिर ultimate Saturday plan? Nothing to do. बस enjoy करें अपने Saturday को, chill करें और relax करें because ये मौके भी तो rarely मिलते हैं. So I am sure that weekend का plan आपका हो गया है all set. घूमने फिरने का plan या फिर relax करने का plan. जो भी है आपके plans, not to forget RM2 Radio मस्ती हमेशा आपके साथ. Also you can send me आपके messages, आपके dedications. आपका प्यार on 5499-1294. अगला गाना goes out for Akshat and Daksh, who are preparing to go to tuitions. उनके पापा उनके लिए भेज रहे हैं ये sweet सा message. So Akshat and Daksh, wishing you a wonderful, wonderful Saturday. Have a great time. साथ ही यहाँ पर ललिता जीतन हमारा साथ दे रही हैं गर्मा गर्म इलायची वाली चाय और साथ में बॉलीवुड के परफेक्ट सॉन्ग्स. सो हो गई है आपकी मॉर्निंग एकदम ब्यूटीफुल सी. सो ललिता जी, गाना आपके नाम, सभी जीतन परिवार जो लावांश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. गुड मॉर्निंग विशेष आप तक पहुंचाएंगे और स्वीट गाने आपके लिए चलाएंगे. कहती है सुपर कोल्ड एट ग्लेन पार्क आज. बिल्कुल सही कहा, हम भी आसपास ही रहते हैं और कल रात से जो मौसम चेंज हुआ है यानी कि कंबल ब्लैंकेट सब कुछ बाहर एक बार फिर आ गया एंड सुपर कोल्ड. यस आई डू अग्री. सो अपना ख्याल रखिए विजया जी, हैव सम गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफी और उसके साथ वील बी प्लेइंग सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स आपकी इस सैटरडे को ब्यूटिफुल बनाने के लिए. सो विजया जी वक्वा से हमारा साथ दे रही हैं, विशिंग यू वंडरफुल वीकेंड. अभी के लिए अगला गाना और ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम. थोड़ी ही देर में हम बनने वाले हैं समाचारों की ओर, लौट कर आएंगे. दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.
1: RM2
0: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती.

0: वक्त सुबह के 9 बज गए हैं और संक्षिप्त समाचार लेकर के आ गई है अदिति अवतार, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले फरवरी महीने में ट्रूथ सोशल नामक प्लेटफॉर्म पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जेगो गौसिया को मत छोड़ो। इस कदम से शागोस मुद्दे से जुड़ी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस पोस्ट के कारण पिछले अप्रैल महीने से शागोस द्वीप समूह

0: ऊपर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रक्रिया रुक गई क्योंकि उस समय सकेर सौमक की सरकार के अधीन में बरतानी संसद ने उस बिल को अलग रख दिया था। अब जहां अगस्त समाप्त होने चला वहीं पिछले 2025 में तय हुए समझौते को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं है। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ ने कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया कि मॉरिशस सरकार की दो सूत्रों के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इस मामले को अलग आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। ईंधन सप्लाई को लेकर पिछले हफ्ते मॉरिशस और भारत के बीच 5 सालों का एक समझौता तय हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी व्यापार की हालिया आंकड़े मॉरिशस के आयात पर ऊर्जा खर्चों के प्रभाव की तरफ संकेत करते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधे से ज्यादा बढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए था वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा है। आने वाले कुछ महीनों के दौरान एल नीनो घटना के और तेज होने का अनुमान लगाया गया है और साथ ही पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में मॉरिशस इलाकाई जलवायु पर इनके संभावित प्रभाव की बारीकी से जांच कर रहा है। संदर्भ में गुरुवार को रोजेल में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में जलवायु परिवर्तनशीलता पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये पहल मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की रही जिसके लिए एनसीजी फ्रांसिस दे मोरिस का सहयोग रहा। मकसद रहा उन घटनाओं को बेहतर समझना जो जलवायु पर असर डालती हैं और खासकर पानी खेती मछली पालन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर इनके नतीजों का अंदाजा लगाना। मौके पर उपस्थित कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार हालात के अनुसार ढलने की बात अब अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने शोधकर्ताओं संस्थानों किसानों और मछुआरों के साथ मिलकर प्रयास करने की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रेसिजन फार्मिंग और नई तकनीकों की संभावनाओं पर भी बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंच गई है जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 2400 पार कर गई। इनमें 500 से ज्यादा विदेशी मूल के लोग बताए जाते हैं। राहत कार्य जारी हैं। भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया। दीजिए नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Shameless Tadka.
1: RM2.
2: सो वेल फ्रेंड्स, अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, वार्म वेलकम. आज से लेकर 9 के बीच हमने किया म्यूजिक, मस्ती एंड शाउट आउट्स. अब नेक्स्ट 2 आवर्स में भी होने वाली है म्यूजिक, गेम्स और सरप्राइजेस कमिंग योर वे. सो डोंट गो एनीवेयर. एक छोटा सा रिमाइंडर, सैटरडे है, सो बस एक पर्सन को आप जेन्युइनली स्माइल करा देना. सिंपल सा मैसेज है, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे. कभी कभी छोटी चीज़ें पूरा मूड चेंज कर देती हैं, एंड यहाँ पर गुड म्यूजिक तो होता ही है आपके मूड को सेट रखने के लिए. सो इट्स मी परी आपके साथ इन योर टाइमलेस तड़का. अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक आफ्टर 10 AM वी आर गोइंग टू हैव सम सरप्राइज. स्टूडियो के बाहर आपको लेकर चलेंगे, कुछ होने वाला है खास, सो कहीं मत जाइए आप. एंड मॉर्निंग टाइम अगर किसी के लिए स्पेशल बनाना चाहते हैं आप ये सैटरडे मॉर्निंग, ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके शाउट आउट्स ऑन 5499-1294. सो फॉर नाउ गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती. And this is one of my favorites. Dedicate कर रहे हैं आप सभी के लिए और इसी गाने के साथ आपको विश कर रहे हैं a wonderful morning. Stay connected, stay musical.

0: Без Тарка.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों मॉर्निंग टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का. आई डू होप दैट वीकेंड आपके लिए लेकर आया है लोड्स ऑफ खुशियां. वैसे खुशियां तो तभी से शुरू हो जाती है जब से आप डिसाइड करते हैं टू बी हैप्पी. वीक डेज में काम का प्रेशर होता है, काम का बोझ होता है और अलार्म क्लॉक्स के साथ उठना पड़ता है, लेकिन वीकेंड्स आर सो ब्यूटीफुल जहां पर आप आराम से उठ सकते हैं, अपनी स्लो मॉर्निंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी को धीरे धीरे सिप कर सकते हैं. एंड आई गेस दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ लाइफ जहाँ पर आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना है और आप छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कर पाते हैं. मंडे टू फ्राइडे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन वीकेंड्स होते हैं स्पेशल एंड वी डू नो दैट आज भी आपके काफ़ी सारे प्लान्स बन रहे होंगे. आई डू होप मौसम थोड़ा सा ठीक रहे तो यू कैन प्लान समथिंग. और कल से हमने देखा कि वेदर जो है यहाँ मॉरिशस में थोड़ा सा चेंज हो गया है.

साथ ही मौसम के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप हो गया. सो अगर ऐसे में आप रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा सर्दी है, सो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. एंड यहाँ पर आपके लिए वॉर्म्थ एंड प्यार हम पहुँचाते रहेंगे हमारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ. अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का, जहाँ पर इतने प्यारे गाने हैं जिन्हें सुनते हुए आपकी जो मॉर्निंग है एकदम म्यूजिकली स्टार्ट हो रही है. साथ ही यहाँ पर आ गए हैं आपके ब्यूटीफुल शाउट आउट्स ऑन 5499 1294. रागिनी जी कहती हैं हेलो परी, एंजॉयिंग द सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच रागिनी जी, साथ दे रही हैं आप, जानकर अच्छा लगा. सो नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम. साथ ही कहती है गाना हो जाए फॉर समवन जो आपसे थोड़े से नाराज है. सो ओके, कोशिश करेंगे एक गाना ऐसा चलाएं जिनसे उनकी जो नाराजगी है वो दूर हो जाए. और आप दोनों को विश कर रहे हैं हैप्पी हैप्पी सैटरडे. Davis and all the way from Lal Mati aaye hain aap bhi good morning wishes ke saath. So good morning aapko dearest, and sabhi aapke parivar ke liye hum special wishes bhej rahe hain. Gaana goes out for Medha, Manish, Shreya, Aryan, Neel, Sheetal, Vicky, Retina, Nitin, Sangeeta, Mutai Blonde se hamara saath de rahe hain aap. So good morning wishes ke saath, also sending some good music aapke liye. साथ यहाँ पर मॉर्निंग मॉर्निंग में आए हैं अपनी स्पेशल विशेस के साथ, ये है अपारू फैमिलीज ऑफ होशनुआ. गुड मॉर्निंग आपको दारिन श्वेता, रविश प्रीशा एंड लव शाह हमेशा साथ देते हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. वी ऑल्सो हैव अ ब्यूटीफुल लक्ष्मी जयपोल, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. गाना होगा आपके नाम. मिस करिश्मा मौसम से तौंद्रे से, गाना फॉर यू एंड फॉर योर लवली फैमिली, दैट्स कमिंग फ्रॉम विनय. आपके बारे में सोच रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में, सो आई गेस दैट्स अ स्पेशल मॉर्निंग फॉर यू एंड फॉर हिम. सो ऐसे ही आपके स्वीट मैसेजेस, स्वीट डेडिकेशंस, स्वीट शाउट आउट्स ऑन 5499 1294.

बात की हमने स्लो मॉर्निंग्स की स्लो स्टार्ट की सो आई हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जहां पर यू कैन एंजॉय योर मॉर्निंग अपनी गर्मा गर्म चाय कॉफी सिप कर रहे हैं अभी तक ब्लैंकेट में अपनी मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं जो भी है आज आपका प्लान वी हैव अ प्लान कि हम गुड म्यूजिक आप तक पहुंचाएं दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स एंजॉय दिस वन

So, well, good music continues taking you down memory lane. यहाँ पर we have this Bollywood mashup आप सभी के लिए जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. Saturday morning है और well यहाँ पर आपके messages, dedications भी है. Enjoying the songs and enjoying the गाने. So ये गाना हमारी प्यारी सी रोशनी के नाम साथ दे रहे हैं आप. So have a great weekend, sweetheart. और आपके लिए special wishes के साथ good music चलता रहेगा on Radio Masti. पर साथ दे रहे हैं परविनी, देशना, रवीश, अमीशा एंड सभी गनिया परिवार. मौज ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. विशिंग आंटी शालिनी गनिया अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज आंटी शालिनी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. सो चलिए गुड विशेस इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ. एंड एवरीवन हु लव्स 90s, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल 90s मैशअप आपके लिए. वैलेंटाइंस मैशअप है और वैलेंटाइंस डे तो ऐसे हम फरवरी में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन लाइक वी से दैट हर एक दिन होना चाहिए खास, हर एक दिन होना चाहिए फुल ऑफ लव. सो ये गाना आपके नाम. एंजॉय दिस वन. एवरीवन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आपका आरएम टू रेडियो मस्ती. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: без тарка.
1: RM2.
2: तो वेल फ्रेंड्स, सैटरडे है, मंडे टू फ्राइडे मौका कहाँ मिलता है किसी को आराम से गुड मॉर्निंग कहने का, लेकिन वीकेंड में रेडियो मस्ती आपको ये चांस जरूर देता है. वैसे मंडे टू फ्राइडे तो हम हमेशा कहते रहते हैं डू सेंड अस योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस, लेकिन वी डू नो आप काफ़ी बिजी रहते हैं और जो लोग घर पर होते हैं उनके मैसेजेस तो आ जाते हैं. लेकिन आज इफ़ यू आर एंजॉइंग योर सैटरडे की छुट्टी, यू कैन सेंड सम ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके अपनों के नाम ऑन 5499 1294. किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या फिर स्पेशल समवन को आप गुड मॉर्निंग विश करना चाहते हैं तो बस एक स्पेशल सा शाउट आउट हमारे इसी मैजिकल नंबर पर, जहां पर उनके लिए होगा एक स्वीट सा डेडिकेशन विद अ ब्यूटीफुल ट्रैक ऑब्वियसली. एंड हमारे सभी लिसनर्स जो हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, दिल से आपको कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद, साथ देने के लिए शुक्रिया. चलिए दोस्तों, अभी के लिए अरमान साथ दे रहे हैं आप, थैंक यू अरमान, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. बस आप शो को पसंद कर रहे हैं, गानों को पसंद कर रहे हैं, मेरी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं, ये जानकर अच्छा लगा. सो हैव अ वंडरफुल सैटरडे, एंड पोर्टलो से हमारा साथ दे रहे हैं, सो वीकेंड भी आपका मस्त ज़बरदस्त हो, यही विशेज आप तक पहुँचा रहे हैं. ज्योति जी ऑल द वे फ्रॉम शातु बनारस आई हैं स्पेशल विशेज लेकर फॉर अश्नी, रेखा, सुरेखा, मदर परिवार के नाम उनको विश करना चाहती हैं, बो वीकेंड. एंड यहाँ पर गीता बोलूराम भी साथ दे रही हैं, सो गाना होगा आपके नाम, हैव अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ. यलेश आप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ एंड सेंडिंग वंडरफुल विशेज आपके पूरे परिवार के नाम, सभी शाम परिवार ऑफ सुरिनाम जो दे रहे हैं हमारा साथ. वी हैव अ ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए, एंजॉय दिस वन.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: एंड विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. समाचारों के बाद लौट कर आएंगे. दैट्स योर टाइमलेस तड़का एंड लेकर चलेंगे आपको स्टूडियो के बाहर फॉर सम मस्ती. सो स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. मैं हूं परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक. दैट्स योर टाइमलेस तड़का.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार. 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटे में बढ़ोतरी को लेकर अर्थशास्त्री मनीष अदुकोनी ने एक बुनियादी बात की तरफ संकेत किया है. मॉरिशस अपने इस्तेमाल का 80% से ज़्यादा हिस्सा आयात करता है. इसमें ईंधन सबसे महत्वपूर्ण है और हाल में वैश्विक अस्थिरता के साथ इसकी कीमत बढ़ने से आयात में खर्चे सीधे तौर से बढ़े हैं. हालांकि उनका ये भी मानना है कि मॉरिशस में आयात किए जाने वाले सामानों में कुछ ऐसे हैं जिनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है. वे खास तौर पर पर्यटन सेक्टर का जिक्र करती हैं. एक ऐसा उद्योग जो विदेशी मुद्रा तो कमाता है लेकिन साथ ही आयात से जुड़ा काफ़ी खर्च भी करवाता है. होटल बनाने से लेकर रोज़मर्रा के कामकाज तक इस्तेमाल होने वाले सामानों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है. इसलिए मनीष अदुकोनी के अनुसार संरचना के स्तर पर ही बदलाव की आवश्यकता है. वे इस बात पर जोर देती हैं कि समस्या मात्र आयात तक सीमित नहीं है बल्कि मॉरिशस के निर्यात को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. न्यायिक क्षेत्र में असाइजेज अदालत के स्तर पर सजा सुनाए जाने के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. 2024 में 54 के मुकाबले 2025 में 104 लोगों को सजा सुनाई गई, खासकर ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए. ये जानकारी न्यायपालिका की 2025 की सालाना रिपोर्ट में सामने आई है जो कुछ दिन पहले ऑनलाइन प्रकाशित हुई है. 2025 में देश की अलग अलग अदालतों में 92,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए. मॉरिशस में बारिश की

0: मौजूदा कमी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के जरिए पानी के जिम्मेदार इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। गुरुवार को जोन 4 के 15 से सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों ने वाकवा में सतत विकास पर आधारित एक शैक्षिक परियोजना के नतीजे प्रस्तुत किए। ग्रीन हाउस, सब्जियों के बगीचे, कंपोस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम और स्थानीय तथा औषधीय पौधों वाले बगीचे, कुछ 155 छात्रों ने 3 महीनों के अंदर अंदर 32 प्रोजेक्ट डिजाइन करके तैयार किए। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को सब्जियां उगाना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाना सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ये पहल देश के चारों एजुकेशनल जोन्स तक बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 600 तक पहुंच गई है, जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 3000 पार कर गई है। इनमें 500 से ज़्यादा विदेशी मूल के लोग हैं। राहत कार्य जारी है। भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। लक्ष्मी रोड लिस्पेरांस तबिशे में, लक्ष्मी रोड लिस्पेरांस तबिशे में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड श्री रामराज दौलत जो पंडित विजय नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान लक्ष्मी रोड लिस्पेरांस तबिशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्पेरांस तबिशे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूरिया 3 PM। टैगोर रोड रिश्मा में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड श्री प्रकाश रामभुजन जो प्रवीण नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनकी माँ श्रीमती रेवती रामभुजन के मकान टैगोर रोड रिश्मा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूरिया 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Weetabix est le petit déjeuner idéal pour bien commencer la journée. Alors, choisissez Weetabix. Weetabix, pour une meilleure santé de ma famille.
1: RM2 Radio Musti. RM2 Radio Musti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, सुबह के 10:07 मैंने कहा था आपको कि 10 बजे के बाद होने वाला है कुछ खास एंड स्पेशल आपके लिए. सो लेकर चलते हैं आपको स्टूडियो के बाहर. क्या है स्पेशल जानते हैं पूनम से, जो ऑलरेडी पहुंच चुकी है एट द लोकेशन. हेलो जी, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग परी, क्या हाल चाल है जी. यहाँ पर तो मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, और साथ में ही बहुत ही प्यारा एक ऐसा काम चलने जा रहा है जिसे लोग कहते हैं कि हमेशा करते रहना चाहिए. SBM बैंक के पास मैं खड़ी हूँ, काथरोबोन में. हम बाहर नहीं है क्योंकि मौसम थोड़ा आपको पता ही है परी, ठंडा हो गया है, थोड़ा सा रेनी है, पर हम इनसाइड है, पर हैं यहीं पर. हमारी पूरी MBC की टीम है और हमारे SBM के सभी जितने भी स्टाफ हैं जो काम करते हैं, चाहे मैनेजमेंट हैं, चाहे जो सीनियर्स ऑफिशियल्स हैं, सभी यहाँ पर हैं. डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और मैं आपको स्पेशली बताऊँ ना, यहाँ पर ये आज करने जा रहे हैं 2026 का दूसरा रक्तदान शिविर जो इन्होंने आयोजित किया है. और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे हैं और कहते हैं कि जो ब्लड देना होता है ना, उसके बाद भी इतनी प्यारी सी बड़ी सी स्माइल सबके चेहरे पर देख के ऐसा लग रहा है सच में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. तो मैं तो सभी को कहूँगी कि जो भी आसपास हैं, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे का दिन होता है वीकेंड का, तो घर में मत बैठिए, बाहर आइए. इतना अच्छा वेदर है, बाहर खाने पीने को भी मिलेगा. यहाँ पर भी उन्होंने सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और यहाँ पर जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी चेकअप कर रहे हैं और सभी बता रहे हैं कि जो रक्तदान है क्यों, मतलब आपको देना चाहिए, ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए, ये चीज़ें जब आपको पता चलेंगी ना थोड़ी देर बाद, इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कितनी इम्पॉर्टेंट है हर लाइफ के लिए. कभी कभी ऐसा होता है ना कि परी कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं महसूस होती, बट एकदम से अचानक से कोई ज़िंदगी में हैपनिंग हो जाती है और वहाँ पर लगता है अरे काश हमने भी ब्लड दिया होता, या हम इस समय इस मोमेंट पे किसी के काम आ सकते. तो वहाँ पर रियलाइज़ होता है कि अगर हमने ये किया होता तो अच्छा होता. तो मैं आपको सभी को इन्वाइट करती हूँ RM2 रेडियो मस्ती की तरफ से, SBM काथरोबोन, यहाँ पर आइए, यहाँ पर ब्लड डोनेट कीजिए और कह देना किसी ना किसी की ज़िंदगी को बचाइए और अपने चेहरे पर भी एक बहुत बड़ी सी स्माइल लेकर आइए. तो मैं तो परी ये भी तो यही कहूँगी, बट थोड़ी देर बाद हम जब जुड़ेंगे तो आपको मिलाएंगे बहुत सारे ऑफिशियल से जो आपको बताएंगे ब्लड डोनेट क्यों करना है, इससे क्या फ़ायदे हैं, किस किस चीज़ों से आपको हेल्प मिल सकती है एक ज़िंदगी को बचाने के लिए. थैंक यू परी.

0: RM2 Radio Musti. RM2
1: Radio Musti. तो चलिए थोड़ी देर में लेकर चलेंगे आपको बैक टू ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज किया है SBM ने. लेकिन उससे पहले इट्स टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ. क्लोज योर आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज मेमोरीज एंड द टाइमलेस वॉइस ऑफ शान. अब RM2 रेडियो मस्ती आपको एक चांस दे रहा है टू एक्सपीरियंस द मैजिक लाइव. और RM2 रेडियो मस्ती के साथ खेलें एंड स्टैंड अ चांस टू विन एक खास टिकट. वेल सो आपको बता दें दैट अगर आज आप हमारे साथ खेलते हैं तो आप क्या जीत पाएंगे. सो आप जीत सकते हैं एक VIP टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव कॉन्सर्ट. वन वॉइस वन स्टेज वन अनफॉरगेटेबल नाइट एट SBICC ऑन 5th ऑफ सितंबर 2026 एज फ्रॉम 8 PM प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ticketbox.mu. सो अगर आप जीतना चाहते हैं एक VIP टिकट सो वी हैव अ सिंपल सा क्वेश्चन जो हम आपको पूछने वाले हैं. और आपको हमें बताना है कि ये जो शान का कॉन्सर्ट है ऑन 5th ऑफ सितंबर ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है. इज इट ए SBICC पाई, बी ट्रियानो या फिर सी कोदो. आपके सही जवाब ऑन 5499-1294 आपके पूरे नाम और पते के साथ. वेयर विल शान कॉन्सर्ट टेक प्लेस ऑन 5th ऑफ सितंबर 2026. इज इट ए SBICC पाई, बी ट्रियानो या फिर सी कोदो. आपके सही जवाबों का इंतजार ऑन अ मैजिकल नंबर इट्स 5499-1294. सो ऑल द वेरी बेस्ट और खेलते रहें हमारे साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: Forum 2
1: Radio Masti.
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पर हम हैं कत्रबोन में। यहाँ पर SBM ने एक बहुत ही बढ़िया सा एक कॉज कर रहे हैं जहाँ जिसे कहते हैं रक्तदान शिविर, और यहाँ पर हमारे साथ सभी नर्सेज डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और हमारे वो लोग जिन्हें कहते हैं जिनके पास दिल है, और जिनके पास दिल होता है ना उनके पास सबसे बड़े दिल के साथ में बहुत बड़ा कहते हैं ना प्यारा सा खून भी होता है, क्योंकि उनके खून में जो दौरा होता है ना वो बहुत ही फंटास्टिक होता है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग कह लो, बड़े कह लो, मैं तो कहती नहीं हूँ कि ये लोग बड़े हैं, मैं तो कहती हूँ ये यंगस्टर्स हैं। चाहे ये 65 साल के लोग आ रहे हैं, चाहे यहाँ पे 25 साल का कोई लड़का आ रहा है, चाहे लड़की आ रही है, उनके अंदर मतलब ऐसा एक वो है कि आज से ही वो चाहते हैं कि कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर जाएं जिससे कि उनको आगे अपनी कहते हैं ना जैसे किसी को बहुत सारी दुआएं चाहिए होती हैं, तो ये शायद दुआओं का ही असर है, उनके बड़ों का असर है। और आज ये खुद बस ऐसे ही कि हमें ये देना है, ब्लड डोनेट करना है, और ये दुआएं ले रहे हैं। हमारे सारा स्टाफ यहाँ पर SBM का बैठा है और बहुत ही प्यार से खुशी से सबको इनवाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर रविश पांडू, ब्रांच मैनेजर ऑफ SBM खातोबोन। तो गुड मॉर्निंग सर, मैं तो आपसे बस यही कहूँगी कि आपने ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही ऐसा होते रहना चाहिए। आई थिंक सो इट्स अ सेकेंड टाइम फ्रॉम SBM। सो मेरा एक जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज आई नो कि आपको हिंदी नहीं आती है, बट हमारे RM2 के लिसनर्स जो कि हिंदी भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं, तो हम ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। फर्स्ट मैं हिंदी में पूछती हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का ये जो कार्यक्रम है, आपने जो रखा है रक्त शिविर SBM के लिए, कितना खास है? सो द क्वेश्चन इज, मिस्टर पांडू, कुड यू टेल अस आवर RM2 लिसनर अ बिट मोर अबाउट टुडे ब्लड ड्राइव, व्हाट इट इज एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस?
3: गुड मॉर्निंग पूनम, एंड अ वार्म हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 एट SBM। ब्लड डोनेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स द कम्युनिटी। We regularly organize blood drives across our branches in Mauritius and Rodrigues.
2: Mm-hmm.
3: You correctly mentioned today's event is the second blood drive for the year after the one hosted by SBM Flag last month.
2: Mm-hmm.
3: In 2025, we carried out a blood drive across 4 SBM branches and we collected well over 400 pints of blood.
2: Wow. Wow. So, आपके लिए जो 400 pints आपने बताया, ये बहुत ही खास है, बट आप ये बता सकते हैं कि ये तो आपके लास्ट ईयर का था, बट अब आप इस बार क्या उम्मीद करते हैं? What's your expectation this year?
3: We are hoping for the same amazing support from the members of our public this year.
2: Wow.
3: In a hope to better off the last year's figures.
2: Mm-hmm.
3: I should add that blood donation lies at the heart of our philosophy at SBM.
2: Mm-hmm.
3: It's a simple but powerful act of kindness, because every drop has the power to save a life.
2: Wow, very good, very nice. सच बात है कि जितनी भी खून की एक बूंद होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसके लिए जिसको इसकी ज़रूरत होती है। हो सकता है ये हमारी बॉडी के अंदर इतना काम कर रहा होता है, हमें एहसास नहीं होता है, बट जिस मोमेंट पे इनकी इस ब्लड की ज़रूरत होती है, वो सिंगल ड्रॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप कहीं भी हैं आज आस पास कत्रबोन की साइड, या दूर भी हैं, तो स्पेशली चल कर आएँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा कॉज है। रक्तदान देना बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी लाइफ में। इंजॉय कीजिए ये गाने।

0: Colorim 2
1: Radio Musti.
2: सो वेल दोस्तों यहां पर पूछा था आपसे एक सवाल वेरी सिंपल सा क्वेश्चन और आपको हमें बताना था कि ये जो कॉन्सर्ट होने वाला है ईशान का ऑन 5th ऑफ सितंबर 2026 ये कहां पर होगा इज इट एसवीआईसीसी पार्क ट्रियानो या फिर

को दो. एंड द राइट आंसर इज एट SBICC पाए. दैट्स द राइट आंसर. यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. लकी ड्रॉ के बाद लकी विनर दिव्या दर्शनी संगा, आप है गुड लेंथ से, बनती है लकी विनर. कांग्रेचुलेशंस. So, दिव्य दर्शनी, आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब. कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड वेल, यहाँ पर हम आपको बता दिए दैट एक जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान, इसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट SBICC पाए ऑन 5th of September. सो आपको बता दिए दैट शान जो है इंडियाज मोस्ट बिलवड प्लेबैक सिंगर, नोन फॉर हिज स्मूथ सोलफुल एंड वर्सटाइल वॉइस. ही रोज टू प्रोमिनेंस इन लेटर 1990s एंड बिकम अ फेमिलियर वॉइस इन बॉलीवुड थ्रू रोमांटिक मेलोडिक एंड फील गुड सॉन्ग्स. ओवर द years, Shan ne deliver kiye hain numerous memorable hits across Hindi cinema and Indian pop music, earning a strong fan following across generation. So ab aapko mila hai ye mauka jahan par aap unki ye energy, soulful voice aur timeless melodies of Shan enjoy kar payenge live at SBICC stage on 5th of September 2026 as from 8 PM. So let me tell you, the game was powered by ticketbox.mu aur aap jeet gayi hain ek VIP ticket. Once again aapko kahenge congratulations. RM2 Radio Masti.

RM2 Radio Masti. आप सब जानते ही हैं जैसे कि हम यहाँ पर हैं SBM कात्रबोन और कात्रबोन में बहुत ही प्यारा सा हमने रक्त शिविर लगाया है पूरी SBM की तरफ से. आज तो हम ये खुद को भी एक पार्ट मान रहे हैं अपने आप को, क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती हमेशा कहते हैं हम आपके हर सुख दुख में साथ है, पर आज हम इसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक सुख का काम है. जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, कहते हैं किसी इमरजेंसी कोई आ जाए या किसी की ज़िंदगी में कोई अप एंड डाउन आ जाए और वहाँ पर चाहिए होता है सिर्फ खून, और खून चाहे आपको किसी कोई सर्जरी हो रही होती है, चाहे किसी को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चाहे कैंसर होता है और इमीडिएटली कोई एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले तो खून की और उसके बाद फिर पड़ती है ज़रूरत डॉक्टर की. तो हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं और हमारे लिए यहाँ पर बहुत सारे डोनर्स ऑलरेडी लाइन लगनी शुरू हो चुकी है. RM2 रेडियो मस्ती को जो भी सुन रहा है उसको एहसास हो रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. बहुत सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, पर जब ये यंगस्टर्स जब साथ साथ जुड़ जाते हैं ना, तब एहसास होता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हमारी कंट्री में हमारी सोसाइटी में हो रहा है. और यहाँ पर अभी मैंने बात की है, यहाँ पर एक सर है, उनका नाम है अनबाबो. कितने मैं एवरी ईयर 2 times देता हूँ ये ब्लड, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, मुझे एहसास होता है कि ये मेरी ड्यूटी है. अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो काश मेरा वो खून इस्तेमाल हो सके जो उनको काम आ सके. अभी हमने यहाँ पर एक और मैम से बात की है, मैंने बोला आपने कितनी बार खून दिया है, तो वो कहते हैं मैं 2nd time दे रही हूँ, और 2nd time इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि बहुत जल्दी एकदम से खून बन जाता है बॉडी में. और ये एक अच्छा कॉज है क्योंकि हम सबके लिए तो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, पर एक ऐसी चीज़ है जो कि डॉक्टर्स को जब चाहिए होती है या किसी फैमिली को चाहिए होती है और वो हाथ जोड़ के बस यही कह रहा होता है कि काश हमें कोई डोनर मिल जाए, खून मिल जाए, जिससे हमारा बच्चा या हमारा फैमिली मेंबर बच जाए. और हम भी सभी को कहेंगे जो आज सैटरडे आसपास हैं, बिल्कुल कात्रबोन की तरफ हैं या वकवा की तरफ हैं, तो आप प्लीज़ घर में मत बैठिए. यहाँ पे इन्होंने SBM ने बहुत सारा अच्छा अरेंजमेंट्स किया है, खाने पीने का भी किया है. आप यहाँ पर आपको कोई इशू है, और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको कोई अंदर डिजीज़ बन रही होती है आपकी बॉडी में, तो डॉक्टर्स हैं वो स्कैनिंग करते हैं आपका, पहले चेकअप करते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है, मतलब आपसे हम ब्लड ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते. अगर उनको लगता है कि आपको एनीमिया है तो मतलब वो बोलते हैं कि भाई आप मत दीजिए, साफ वो मना कर देते हैं. उन्हें लगता है कि आपका खून ज़रूरी है, आप दे सकते हैं, आप आराम से अपनी हेल्थ को भी देख सकते हैं और किसी और को भी सेव कर सकते हैं, यही इम्पॉर्टेंट होता है. तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, यहाँ पर पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है, सभी का वेलकम कर रहे हैं उनकी बड़ी सी स्माइल के साथ में, और हम सभी को कहेंगे कि बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट कॉज के साथ में बहुत ही प्यार भरा हुआ आपको एक हैम्पर भी यहाँ पर मिल रहा है. तो आप आइए, आप किसी की जान बचा सकते हैं, आप आपकी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जगह जाते हैं कि कोई हमसे कोई अच्छा काम करवा ले, तो आपको ये चांस मिल रहा है, यहाँ पर आइए और ये चांस है आपको ब्लड देने का. तो हम यही कहेंगे, थोड़ी देर बाद आप जुड़ पाएंगे हमारे एक और SBM के स्टाफ के साथ में, जो आपको बता सकेंगे कि ये इन्होंने इतना बड़ा शिविर लगाया है, कितनी बार लगा चुके हैं मॉरिशियस में, और जिस तरीके से अभी सर रोटरी में भी किया है, तो हम आपको यही बोलेंगे कि मॉरिशियस को सुंदर बना

0: रखना है, प्यारा बना के रखना है और बिल्कुल हेल्दी बना के रखना है। तो हेल्थ में अगर कोई इश्यू आ जाए तो ये ब्लड डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो यही कहूँगी। आ जाइए RM2 रेडियो, मस्ती आपके साथ है, इंजॉय कीजिए गाने और साथ में जल्दी से आइए।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
3: तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए लेकर आए हैं कुछ स्टाइलिंग टिप्स आपके लिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं, फिट इज एवरीथिंग। आउटफिट एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं, लेकिन प्रॉपर फिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कलर मैचिंग, अगर आउटफिट एक बोल्ड कलर का है तो बाकी पीसेस को आप न्यूट्रल रख सकते हैं। व्हाइट, ब्लैक, बेज या फिर नेवी आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिक्स में इन्वेस्ट कीजिए, गुड क्वालिटी व्हाइट ब्लैक टीज, स्ट्रेट जीन्स, ट्राउजर्स, स्नीकर्स, वार्डरोब्स के मस्ट हैव है। और साथ ही हम जानते हैं दैट लेयरिंग करने से कपड़े काफी स्टाइलिश लगते हैं, आपका लुक काफी स्टाइलिश लगता है। सो टी शर्ट के साथ एक ओवरसाइज शर्ट, ब्लेजर या कुर्ती, लाइट वेट जैकेट से लुक इंस्टेंटली स्टाइलिश हो सकता है। एसेसरीज के बारे में हमेशा बात करते हैं, वॉच, सनग्लासेस, बेल्ट, इयररिंग्स, नेकलेस या फिर सिंपल सा बैग आउटफिट को मोर पॉलिश्ड बना सकता है। और जैसे हम कहते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक आउटफिट में बहुत सारे स्टेटमेंट पीसेस आप ऐड ना करें, बस एक दो स्टैंड आउट एलिमेंट्स आप चूज कर सकते हैं। सो बी स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
2: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: FRM2
1: Radio Masti.
2: क्या बात है, क्या बात है. यहाँ पर हम भाई हैं कतरबोन SBM में और आज हम बाहर नहीं हैं क्योंकि बाहर बहुत ही मौसम प्यारा और सुहाना है और थोड़ी थोड़ी सी बारिश, नहीं कह सकती ज़्यादा ज़्यादा से बारिश है, पर फिर भी लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज जो ये रक्तदान शिविर चल रहा है यहाँ पर इनको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स करने चाहिए एज ए ह्यूमन. और हम तो यही कहेंगे कि सब लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, चाहे नर्सेज, चाहे डॉक्टर्स, चाहे RM2 रेडियो मस्ती यहाँ पे हुआ है और साथ में SBM का पूरा स्टाफ हमारे साथ इतना अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है. इतना उनका नीट एंड क्लीन प्लेस है, हर चीज़ बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रखी हुई है उन्होंने, सिर्फ इसीलिए कि हमारे किसी भी जो डोनर है उसको कोई मुश्किल ना हो. पानी पास में है, खाने को साथ में है और साथ में हमारी जुड़ चुकी हैं हमारी पर्सनल बैंकर मिसेस विशा गोविंदा जी जो कि SBM कतरबोन से हैं. तो हम उनसे, उनका भी एक ही टेंशन है कि उनको हिंदी नहीं आती, तो हम लोग आपके लिए एक क्वेश्चन हिंदी में करेंगे और सेम इंग्लिश में भी करने वाले हैं. तो

अमीषा जी, आप इस शिविर में क्या क्या कर रही हैं हमें भी बताइए. तो कुड यू टेल अस मोर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टुडे एट एसवीएम?

0: Hello.
1: Hello to all listeners of Orange 2. Today we are partnering with the National Blood Transfusion Service, better known as Blood Bank, for this special blood drive here at SBM Quatrebonne. If you are listening right now, this is your chance to make a real difference. Whether you live nearby or you're just out for some weekend shopping, please feel free to stop to our branch before 2:30 p.m. Our team and the Blood Bank staff are ready to welcome you. Remember, every drop matters and every donor makes a difference.
0: Right.
1: Together, let's give the gift of life.
2: Wonderful. जैसे विशा जी ने बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच इस चीज़ को अरेंजमेंट्स करने के लिए. और जिस तरीके से आपने बताया कि 2:30 तक कोई भी आ सकता है तो SBM Quatrebonne में, और ये बहुत ही अच्छा कॉज चल रहा है. और मैं सभी लिसनर्स को कहूँगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, सीधा आइए, बाजू उठाइए और ब्लड दीजिए, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है और आपके खुद के चेहरे पर भी एक स्माइल लेकर आ सकता है, क्योंकि करने जा रहे हैं आप एक बहुत ही बेहतरीन भला, चाहे सोसाइटी का कह लो, चाहे अपना कह लो, चाहे आपके किसी भी सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल के लिए. अगर आपने एक बार ज़िंदगी में खून दिया है तो सच बात है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि खून का रिश्ता खून से होता है. इंजॉय कीजिए RM2 रेडियो, मस्ती हम सब हैं आपके साथ.
3: RM2 Radio Musti.
4: Allons chez Lolo. Alpa, deux petits pois, 500 grammes à 15,95 rupees. Basmati First Choice, grade à 11,21, de 5 kg à 385 rupees. De l'huile N-Lit Omega 100% Soya à

यहाँ पर हम काथरोबोन में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे SBM बैंक के अंदर है, यहाँ पर हम बाहर नहीं दिखेंगे क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, पर हम यहाँ पर बोलेंगे कि अंदर सारे बिस गर्मा गर्म हो रखे हैं, कोजी कोजी एनवायरनमेंट है यहाँ पर, सारा स्टाफ जितना हेल्पफुल है, यहाँ पर जो हमारे डोनर्स हैं उनके चेहरे पर जो स्माइल है, जो अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, ड्यूटी निभानी है, और अगर जिसने ड्यूटी निभा दी उसको कहीं ना कहीं उनके आने वाली जनरेशन को अपने आप ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। तो कितना अच्छा थॉट है इन लोगों का। मैं तो यही सोचती हूँ कि कई बार हम बहुत चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ले लेते हैं, बहुत छोटा समझ लेते हैं, पर जो रक्तदान है, यानी कि ये जो शिविर लगाया हुआ है SBM ने, सिर्फ इसीलिए लगाया है आप सबके लिए कि कभी किसी चीज़ की परेशानी किसी को आ जाए तो आपके पास ब्लड होगा, आपके ब्लड बैंक में आपके नाम से इकट्ठा होगा और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होगी। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं कि हम लोगों को जो भी डोनर है वो देने से पहले उसको कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार हमें चीज़ें पता नहीं होती है, चाहे वो लीवर की होती है, कैंसर्स की होती है, या कोई ब्लड में ही हमारी कोई डिजीज़ होती है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो चेक कर लेते हैं और आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट करो, आप डॉक्टर को बताओ। तो कई बार हम चीज़ें उसको सोच नहीं पाते हैं कि हमें ये तो कुछ है ही नहीं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितना कुछ पल रहा होता है। देखिए, आप घर साफ करते हैं जहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन सोप से साफ हो जाता है, पर हमारी जो इनसाइड की बॉडी है उसको कैसे साफ किया जाए? उसके अंदर तो सोप नहीं डाल सकते, उसको क्लीनिंग करने के लिए आपको वेजिटेबल्स खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, उससे आपका ब्लड क्लीन होता है, उससे आपकी बॉडी क्लीन होती है इनसाइड से। बट अगर कुछ चीज़ रह जाए तो वो कैंसर का रूप ले लेती है, जब वो कैंसर का रूप लेती है तो बहुत लास्ट स्टेज पर ही नॉर्मली किसी को पता चल पाता है। वो हमेशा उसी तरीके से चलता रहता है, ऑफिस जाता रहता है, कई बार एहसास होता है हमें थकान क्यों हो रही है, हमें टायर्डनेस क्यों आ रही है, हम लोग बूस्टर ले लेते हैं और एहसास होता है नहीं नहीं काम पर जाएंगे। बट ये छोटी छोटी सी चेकअप है, या तो यहाँ पर आपके आपको जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो डॉक्टर्स बताते हैं, या आप एवरी 6 मंथ्स जाते हैं हॉस्पिटल और उनको चेकअप कराते हैं कि भाई मुझे ये इश्यू हो रहा है, पर हम लोग कई बार उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल छोटा सा ले लेते हैं। तो आप बिल्कुल छोटा मत लीजिए और आप बिल्कुल छोटा दिल मत कीजिए, आज बस आप आ जाइए, सैटरडे का डे है, एक सुबह सुबह आपके लिए 2:30 तक हम यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इन्होंने इतने जो अरेंजमेंट्स किए हुए हैं आप सबके लिए सिर्फ इसीलिए किया कि आप आ सकें, आप यहाँ पर अपना ब्लड दे सकें। छोटी सी एक बॉटल होती है चाहे प्लास्टिक की, उस पर उसके अंदर एक समझ लो जिंदगी होती है। ये छोटी चीज़ हमें जो लग रही है डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप आइए, खाने के साथ पीने के साथ में आपको हम यही कहेंगे, आपको अपने लिए हेल्थ के लिए बहुत चीज़ें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो बिल्कुल पास में ही है, अगर आप बस स्टॉप बस से आ रहे हैं तो बस स्टॉप बिल्कुल पास में है, हल्का सा वॉक करेंगे सीधा आप काथरोबोन SBM के जो बैंक है उसके पास आ जाएंगे। आप बाहर आएंगे तो सारा स्टाफ खड़ा हुआ है, वहां पर भी आप बोलेंगे तो आपको अंदर लेकर आएंगे। यहाँ पर हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, सारे जोक्स कर रहे हैं, और जितने डोनर्स हैं ना उनकी भी एक अलग सा एहसास है, वो कह रहे हैं बातें करो, मस्ती करो, RM2 रेडियो मस्ती जो साथ में लेकर आता है हमेशा गाने, और 24 आवर्स रहता है आपके साथ हमेशा आपके मूड को बनाने के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि गाने सुनाते रहिए और खून लेते रहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि खून सिर्फ उतना ही लिया जाता है जितनी ज़रूरत होती है हमें, और जितनी आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेमिना होता है उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता। इसलिए आप अगर घर पर हैं या आपने अभी रिसेंटली दिया है तो भी आप आ सकते हैं डॉक्टर से।

0: पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपने बहुत टाइम से नहीं दिया है, मोस्टली मेल्स को होता है कि भाई ब्लड देना है। देखिए लेडीज़ का जो सिस्टम होता है ना, उसके अंदर एक सर्कल होता है, तो उसमें हम समझ सकते हैं लेडीज़ को थोड़ा सा रहता है कि अरे हमारे को एवरी मंथ ये चीज़ होती है तो हमको सर्कल की ज़रूरत नहीं है। बट मेल्स होते हैं वो ये समझते हैं इस बात को कि अगर थोड़ा सा भी खून सेफ भी होगा और उनकी बॉडी में रीजनरेट भी होगा और साथ में उनका जो ब्लड है वो साफ भी होगा, तो क्लीनिंग प्रोसेस साथ साथ चलता रहना चाहिए। तो हम यही बोलेंगे आपको, देर मत कीजिए, आ जाइए यहाँ पर, हम आपके साथ हैं 24 आवर्स। आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ, गानों के साथ एंजॉय कीजिए इस रक्तदान शिविर को भी।
1: आरएम टू रेडियो मस्ती श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन। 3 दिन का दिव्य उत्सव, भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण, मधुर कीर्तन, गूंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। कैबिनेट की बैठक में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर में आयोजित 46वें सादेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर चर्चा हुई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इलाकाई एकीकरण और सदस्य देशों के साथ सहयोग मजबूत करने के प्रति मॉरिशस की कटिबद्धता दोहराई। जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अधिक मजबूती और लचीलेपन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने खासतौर पर ग्रीन और स्मार्ट औद्योगिकीकरण, क्षेत्रीय वैल्यू चेन के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने डिजिटल एम्बेसी विलेज की स्थापना का भी प्रस्ताव सामने रखा और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की वकालत की। इसके अलावा डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संकेत दिया कि मॉरिशस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट से हटने के अपने फैसले के संबंध में सादेक के साथ बातचीत जारी रखेगा। ईंधन सप्लाई को लेकर पिछले हफ्ते मॉरिशस और भारत के बीच 5 सालों का एक समझौता तय हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी व्यापार के हालिया आंकड़े मॉरिशस के आयात पर ऊर्जा खर्चों के प्रभाव की तरफ संकेत करते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधे से ज्यादा बढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपये का था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपये तक पहुँचा है। आने वाले कुछ महीनों के दौरान एल नीनो घटना के और तेज होने का अनुमान है। ऐसे में मॉरिशस इलाकाई जलवायु पर इनके प्रभाव की बारीकी से जांच कर रहा है।

0: आहे। इस संदर्भ में गुरुवार कुरुजिल में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में जलवायु परिवर्तनशीलता पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये पहल मॉरिशस ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट की रही, जिसके लिए इंस्टीट्यूट फ्रांसे दो मोर इसका सहयोग रहा। मकसद रहा उन घटनाओं को बेहतर समझना जो जलवायु पर असर डालती हैं, खासतौर पर पानी, खेती, मछली पालन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर इनके नतीजे। मौके पर उपस्थित कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बोलेल के अनुसार हालात के अनुसार धरने की अब बात को अमल में लाए जाना चाहिए। उन्होंने शोधकर्ताओं, संस्थानों, किसानों और मछुआरों के साथ मिलकर प्रयास करने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रिसीजन फार्मिंग और नई तकनीकों की संभावनाओं पर भी बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या अब तक 600 तक पहुंच गई है और 3000 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोग अभी भी कीचड़ में फंसे हुए हैं। राहत कार्य जारी हैं, भारत की तरफ से सहायता भेजी जा रही है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। टैगोर रोद्रिश्मो में 70 साल के 70 years old श्री प्रकाश रामभुजन जो प्रवीण नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी माँ श्रीमती रेवती रामभुजन के मकान टैगोर रोद्रिश्मो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। लक्ष्मी रोड लेस्पेरेंस ट्रेबिशे में 72 साल के 72 years old श्री रामराज दौलत जो पंडित विजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान लक्ष्मी रोड लेस्पेरेंस ट्रेबिशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: RM2 Radio Masti, हम आप सभी का स्वागत करते हैं जो इस समय पहुंच चुके हैं यहाँ पे. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपना ब्लड दें यहाँ पर, क्योंकि वो जानते हैं कि इस ब्लड की जिम्मेदारी भी है और इस ब्लड के लिए उनकी भी जिम्मेदारी है. देखिए कितना अच्छी सोच है. यहाँ पर किसी ने बताया कि हमारा ब्लड कह रहा है कि हमें ब्लड देना चाहिए. ये सच में ऐसी सोच है, क्योंकि हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हम ब्लड देने जा रहे हैं और आप ये देखिए कि वो ब्लड तो बस देना होता है और हम चल पड़ते हैं अपने घर की ओर. पर एक बात सोचिए कि अगर हम डीप थॉट से सोचें तो जब किसी को कोई परेशानी हो जाती है, घर में किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, कोई चाहे कोई हैपनिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट या किसी भी तरीके की डिजीज में किसी को ब्लड चाहिए और डॉक्टर बोले कि हमारे पास ब्लड नहीं है. कई स्पेशल हम आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे पास ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है और ओ ग्रुप होता है, उनके लिए कई बार होता है कि वो ब्लड नहीं अवेलेबल होता है. वहां पर काम आते हैं आप सब जो इस समय हमें सुन रहे हैं और आपको पता है कि आपका कुछ स्पेशल ग्रुप है और आपको देना चाहिए. तब हमें एहसास होता है कि काश हमने कभी किसी की जान बचाई होती. आप कई बार देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर लोग कहते हैं कि भाई ब्लड नहीं है अवेलेबल. छोटा बच्चा होता है, कोई बच्ची होती है, कोई पेरेंट्स होते हैं, आप पैसा लेके भी सामने खड़े होंगे ना तो भी वो ब्लड नहीं मिल पाता है. आपके पास कितना भी कुछ हो, जब ब्लड चाहिए तो उधर सिर्फ ब्लड ही चाहिए होता है. तो हम सभी को कहेंगे, इनवाइट कर रहे हैं, SBM आ जाइए कत्तबोन, जहाँ पर रक्तदान शिविर चल रहा है और बहुत सारे लोग साथ जुड़ चुके हैं. सारे आके बस इतना ही कह रहे हैं कि काश हम इस चीज़ को समझ पाएं और सब कह सकें कि हाँ, हमने जो ये ब्लड डोनेट किया है सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है. भले हमें ब्लेसिंग्स मिले ना मिले, भले हमने इसको अपना एक राइट कॉज समझे ना समझे, बट हम ये ज़रूर समझ रहे हैं हाँ कि हमने ये काम कर दिया. कहीं ना कहीं जब भी कभी ज़रूरत होगी ये बैंक से आपको ब्लड मिल जाएगा और आपको एहसास होगा कि आपने एक अच्छा काम किया. थोड़ी देर में आप जुड़ पाएंगे हमारे एक स्टाफ के साथ में जो यहाँ पे SBM के ऑफिशियल्स हैं और उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस रक्तदान शिविर के बारे में. तो चलिए तब तक गाना सुनते हैं, उसके बाद जुड़ेंगे आपके साथ फिर से.
1: Radio Musti.
0: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: you're into
1: Radio Masti.
2: हेलो जी सभी लिसनर्स, आरएम टू रेडियो मस्ती के जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो अभी नहीं भी जुड़े हुए, प्लीज़ उन सभी को इन्फॉर्म किया जाए कि एसबीएम खतरबून में इस समय हम जुड़े हुए हैं साथ में और यहाँ पर चल रहा है रक्तदान शिविर। यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही कहते हैं स्माइलिंग फेस हैं जिनका नाम है मिस्टर नेलविन। ये हैं स्पेशली पर्सनल बैंकर हैं एसबीएम खतरबून से, तो उनका भी यही इश्यू है कि उनको हिंदी नहीं आती, पर कोई बात नहीं, हम हिंदी को मैनेज कर लेते हैं। तो आप लिसनर्स के लिए हम उनसे क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछने वाले हैं और हिंदी में भी, तो हम बस आपसे यही जानना चाहते हैं नेलविन जी, हेलो पहले तो आपको, और साथ में ये जानना चाहते हैं कि रक्तदान करने से जो डोनर है उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बताएं। और सेम क्वेश्चन हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, कैन यू tell us about the benefits of donating blood?
3: Good morning, Poonam.
2: Very good morning.
3: Hello to our listeners of RM2. So, the biggest benefit is simple. Every donation can save a life. But donating blood carries several health benefits for the donor as well. It acts like a mini health screening because doctor can sometimes pick up early signs of issues through blood analysis. It also helps improve circulation, reduces excess iron, and may lower the risk of heart disease and certain cancers. It supports liver health and even boosts mental well-being. So, when you donate blood, you're helping others while taking care of yourself at the same time. अपने दिल और दिमाग खून दीजिए।
2: क्या बात है, क्या बात है, सही बात है, दिल और दिमाग को खून देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिल हमारा चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है खून के ज़रिए और दिमाग के लिए भी। तो थैंक यू सो मच नेलविन जी आपका, और आपने जो बताए हैं फ़ायदे की कितनी ज़रूरी है ये ब्लड हम सभी के लिए, ये एक मदद नहीं है, ये एक चीज़ के लिए हमारे लिए भी फ़ायदा है और हमारे डोनर के लिए भी फ़ायदा है और सभी पूरी कंट्री के लिए भी फ़ायदा है। जब भी हमें ज़रूरत होगी, किसी को भी ज़रूरत होगी, ब्लड बैंक वो ब्लड निकाल के आराम से दे सकता है। और हम तो यही कहेंगे हमारे लिसनर्स को जो अभी हमें सुन रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए हमें, हम लोग कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे, और जो खुद आराम से आ सकते हैं तो प्लीज़ आप आइए, और यहाँ पर सभी अरेंजमेंट्स हो रखे हैं। और साथ में हम इतना ही कहेंगे, यहाँ पर कोई फिल्म स्टार्स नहीं है, यहाँ पर कोई सिंगर नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको अपना चेहरा दिखाना है या एहसास दिलाना है कि हाँ भाई मैंने ब्लड दिया था, नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल लोकल लोग हैं, ये आपके परिवार के लोग हैं, ये आपके दोस्त हैं, ये आपके साथी हैं, ये आपके साथ चलते हैं रेगुलरली, पर आज बनने जा रहे हैं ये हीरो। जी हाँ, हमारे लिए ये सभी हीरो हैं जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और एसबीएम ने इस तरीके से इस रक्तदान शिविर को लगाया है और सभी को मोटिवेट कर रहे हैं ये हीरोज हमारे। तो हम सभी को कहेंगे बिल्कुल आज घर में मत बैठिए, 2:30 तक यहाँ पर ये अरेंजमेंट्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और सभी टेक्नीशियंस सभी जुड़े हैं, RM2 रेडियो मस्ती के MBC की पूरी टीम यहाँ पे साथ दे रही है। तो हम बोल रही हैं गाने के साथ, मस्ती के साथ में हीरो बनने का मौका आज ही है आपका, तो बनिए हीरो और आ जाइए SBM खतरबून।
1: RM2 रेडियो मस्ती,
4: RM2
0: रेडियो मस्ती,
5: लाफवार बिलबिल काजी रिटर्ने कट विनर,
6: बिलबिल काजी दे रिटर्न कट विनर्स, du vendredi 28 août au lundi 31 août, le thé La Chartreuse vanille ou nature de 500 grammes à 229,95 roupies, et du samedi 29 août au dimanche 30 août, la lessive liquide pour machine Le Chat de 3 litres à 299,95 roupies.

0: household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
1: एंड यस, आज बॉली ब्रंच में पूनम के साथ साथ निर्मली भी है, स्टीयरिंग व्हील के पीछे घुमाने भी लेके जाएंगे, ट्रैवल भी कराएंगे और टिप्स भी है आपके लिए। तो आज का सैटरडे होम मजे को टिप है कि कल थी राखी, तो भाई बहन का प्यार, गिफ्ट्स, मिठाई और सेलिब्रेशंस के बाद

0: घर का हाल तो थोड़ा क्या हुआ तेरे वादे जैसा हो गया होगा। तो आज का सैटरडे है पोस्ट राखी क्लीनअप डे। सबसे पहले गिफ्ट्स और रैपिंग पेपर्स को एक जगह कलेक्ट कीजिए, कशन्स को फ्लफ करें और लिविंग रूम में थोड़ा रीअरेंजमेंट भी कर दें। और अगर फूलों की डेकोरेशन अभी भी फ्रेश है उसे तुरंत मत हटाइए, पेटी वाज में शिफ्ट करके वीकेंड डेको बना लीजिए। थोड़ी सफाई, थोड़ा रीअरेंजमेंट और घर फिर से बोलेगा मैं हूं ना।
1: Saveur marine, tuna en cube 400 grammes à 159 roupies. Rosanna, tomate entier de l'Italie 400 grammes à 30 roupies 50. Melbourne, cheddar cheese 250 grammes à 74 roupies 95.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: 11:36 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपनी RM2 रेडियो मस्ती के साथ। और रेडियो मस्ती जब चलती है तो गानों के साथ में आपको हम आपको बहुत सारी ऐसे सरप्राइजेस देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, वाउचर्स देते हैं, पर आज हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि आज ये जो टाइम है इसको यूज़ कीजिए। बहुत सारा आपको प्यार और ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। मैं इस समय हूँ SBM कथरबोन में, यहाँ पर इनसाइड है क्योंकि हमें पता है कि बारिश है और आपको एहसास हो रहा है अरे बाहर तो बहुत ठंड है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। बट आप जब सोचिए कि जब जिंदगी में कुछ तकलीफ आ जाती है तो हम ना तो ठंड देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना पानी देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, बस ये कहते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर हमें सिर्फ इतना ही कहता है कि भाई थोड़ी सी दवाई लीजिए।

0: या आपको इस चीज़ की इश्यू है, जब ये इश्यू के अंदर आ जाता है ब्लड, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और हमारा दिमाग झटका खा जाता है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हमारे पास ब्लड नहीं है। और यही हम आज SBM से आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रक्तदान शिविर लगा हुआ है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर इस ब्लड देने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है, आपके दिल मजबूत हो सकता है, अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है तो आपको डिटेक्ट हो सकती है बहुत ईजिली, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई स्कैनिंग चाहिए होती है तो यहाँ पर आपको मिल सकती है। उसके साथ में सारे ऑफिशियल्स जो जितने हमारे मेम्बर्स हैं SBM के, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आपसे बताया कि कितना जरूरी है ब्लड को डोनेट करना और यहां पर कितना जरूरी है एक कंट्री में, एक बैंक में, ये नॉट SBM बैंक के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड बैंक में, बैंक हो में ब्लड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें किसी भी समय ब्लड की ज़रूरत है, कोई छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, जहाँ पर हमें ब्लड चाहिए ऑन द स्पॉट, कोई बड़ी सी सर्जरी हो रही है और वहाँ पर चाहिए, तो यही बैंक ओपन हो जाते हैं, कहते हैं ना, खुले हाथों से, और कहते हैं आपने एक दिन हमें हाथ दिया था अपना ब्लड देने के लिए, आज हम खुले हाथ से जुड़े हुए हैं आपके साथ, आपको ब्लड देने के लिए। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आप साथ जुड़ें, आपका साथ हो हमारे यहाँ पर, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वन बाय वन, और जितने भी ऑफिशियल्स इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका सपोर्ट है, नर्सेज का, डॉक्टर्स का, वो तो यही कह रहे हैं कि बस हम आ जाते हैं और आपको ब्लड देते हैं। तो हम यही कहेंगे, बाजू उठाना बहुत आसान होता है किसी क्वेश्चन को करना, और वहीं पर वो बाजू अगर उठाना जहाँ पर आपको देना है ब्लड, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक छोटी सी सुई का जो निशान है वो तो मिट जाता है, पर जो आपने खून दिया है उसका साथ कभी नहीं मिटता। तो हम तो यही कहेंगे, मोहब्बत के साथ आइए, रक्तदान कीजिए, ये समय आपका है। और ये हम तो रेडियो मस्ती आपके साथ 12 बजे तक रहेंगे, पर SBM 2:30 तक इस रक्तदान शिविर को चलाता रहेगा और हम तो चले जाएंगे, पर यहाँ पर सभी आपके साथ जुड़े रहेंगे पल दो पल की सारी खबर के साथ में, आपके साथ के साथ में, और RM2 रेडियो मस्ती के साथ में। तो चलिए हम आपको इतना ही कहेंगे, थोड़ी देर में आप जुड़ पाएंगे हमारे एक और ऑफिशियल्स के साथ में, जो बताएंगे कि क्या ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है, और ये SBM ने क्यों किया, मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अरेंजमेंट्स करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट छोटे ही समय में दोबारा से सेकेंड टाइम इस ईयर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रीज़न होगा, हम उनसे जानेंगे थोड़ी देर बाद। तब तक सुनते रहिए रेडियो मस्ती, रेडियो मस्ती।
1: You're listening to RM2 or Radio Masti.

0: और हमें पता है आपका भी दिल नहीं लगता हमारे बिना। तो चलिए हम भी उनको लेकर आए हैं जिनकी देर से इंतज़ार हो रहा था। और हमारी ये मैम जो हैं बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी हैं, बट एक सेम ही इशू आ रहा है कि उनको हिंदी नहीं आती, बट फिर भी स्टिल वो मैनेज करेंगी। तो हम उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हेलो मिसेस अतिशा प्रसाद वीरास्वामी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रांच ऑपरेशनल सपोर्ट ऑफिसर। हाय मैम, हाउ आर यू?
1: ए वार्म हेलो टू यू पूनम।
0: सो वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू मैम, हिंदी में मैं अपने लिसनर्स के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारा जो टाइम है आपने यहाँ पर दिया हुआ है 2:30 तक यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आ सकते हैं, पर RM2 रेडियो मस्ती आपके साथ जो है 12 बजे तक है। तो बस हम ये रैप अप करने वाले हैं, बट आपसे मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि आप खुद SBM की तरफ से हमारे लिसनर्स को, या जो लिसनर्स नहीं भी हैं इस समय, जो किसी के कहते हैं ना कि बार बार किसी को फ़ोन करके बताते हैं कि यहाँ पर ये रक्तदान शिविर चल रहा है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सो व्हाट इज़ योर मैसेज टू ऑल आवर लिसनर्स बिफोर वी रैप अप मैम?
1: हेलो पूनम एंड टू ऑल लिसनर्स ऑफ RM2। इट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स टू डोनेट ब्लड, but the difference you make could last a lifetime for someone in need. So if you're nearby, out running errands, or just passing through, this is your moment to step in and make an impact that truly matters. You still have time, but don't wait too long. We'll be here at SBM Quatre-Bornes until 2:30 this afternoon. So come on over, roll up your sleeves, and be the hero in someone else's life today.
0: वंडरफुल, क्या बात है। वही कहते हैं ना, इन्होंने जो नाम दिया हुआ है कि अपनी बाजू को उठाइए, स्लीव्स को अप कीजिए और देखिए कि वो जो छोटी सी नीडल चुभती है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि इम्पैक्ट यही पड़ता है कि आप ब्लड दे सकते हैं और ब्लड देने के बाद आपको मिलता है वो खुशी, वो मुस्कुराहट, वो हैप्पीनेस जो आपके लिए शायद ना हो बट उस डोनर के लिए भी ना हो, बट जिसको चाहिए वो ब्लड उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर वन डे आपके दिल में एहसास हो जाता है कि आपका ब्लड वेस्ट नहीं गया, आपका ब्लड किसी ना किसी के लिए कभी ना कभी काम ज़रूर आया होगा। तो बस वही हैप्पीनेस आपके लिए चाहिए। हम भी आपको यही कहेंगे, रेडियो मिस्ती हमेशा आपके साथ है 24 आवर्स, खुशियों के साथ, हर सुख और दुख में आपके साथ है। पर साथ में ये है कि जब हम ऐसे कोई कॉज होता है, चाहे वो सोसाइटी के लिए होता है, बैंक की तरफ से होता है, या किसी भी चीज़ की तरफ से होता है, हम बस इतना ही कहते हैं कि आप उसे यूज़ कीजिए, साथ में उसको हैप्पी बनाइए, उसके साथ में आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि कथरबुन दूर नहीं है, SBM बैंक के इनसाइड हैं हम लोग, सारे नर्सेज डॉक्टर्स सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं और सभी आपको वार्म वेलकम कर रहे हैं और सबको ये कह रहे हैं कि अपने घर आज मत रुकिए, क्योंकि सैटरडे का दिन है, कहीं घूमने से बेहतर है एक बार आकर अपना ब्लड डोनेट कर कीजिए। सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम होता है और उसके बाद जो आपके चेहरे पर हैप्पीनेस होगी, उसके बाद जहाँ पे भी आपको घूमने जाना है आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई इशू नहीं होता है। फीमेल्स आ सकते हैं, मेल्स आ सकते हैं, और आप सिर्फ अपना ID कार्ड लेकर आइए और हमको तो हैप्पी आप करेंगे, बैंक को तो हैप्पी करेंगे, हम सारी सोसाइटी को तो हैप्पी करेंगे, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आप खुद को हैप्पी कर पाएंगे और कह सकेंगे आज आप बन गए हैं हीरो। जिस तरीके से SBM ने बोला है कि हीरो बनने का मौका है और लास्ट चांस है, तो हम आपको बोलेंगे हमारे तो जाने का टाइम हो गया, पर यहाँ पर 2:30 तक आप आ सकते हैं और इन्जॉय कीजिएगा गानों को, RM2 रेडियो मस्ती को, और SBM बैंक Quatre-Bornes आना मत भूलिए। सबसे पहले यहाँ आइए, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत किसी और काम से कीजिए। तो हमारी तरफ से बाय बाय, बट अपना ख्याल रखिएगा।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: दिन के 12 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अभी. नमस्कार.
7: नमस्कार निलमनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. 12 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक जारी रहेगी. मैस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक एंटीसाइक्लोन होने की वजह से तेज हवाएं बह रही हैं और ठंड महसूस की जा रही है. ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो पर बारिश होती रहेगी. कल हुई कैबिनेट की बैठक में हाल ही में डर्बन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 46वें सैडेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी पर विचार किया गया. डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने क्षेत्रीय एकीकरण और सदस्य देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के प्रति मॉरिशस की प्रतिबद्धता को दोहराया. भू राजनीतिक तनावों, आर्थिक चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उन्होंने क्षेत्रीय रेजिलियंस को बढ़ाने की मांग की, जिसमें विशेष रूप से हरित और स्मार्ट औद्योगिकरण, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया. प्रधानमंत्री ने डिजिटल एम्बेसी विलेज बनाने का भी प्रस्ताव रखा और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत की. ऐसे समय में जब मॉरिशस ने भारत के साथ अगले 5 वर्षों के लिए अपने ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित कर लिया, विदेश व्यापार के हालिया आंकड़े देश के आयात पर ऊर्जा बिल के भारी बोझ को दर्शाते हैं. दूसरी तिमाही में व्यापार घाटा बढ़कर, यानी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़कर लगभग आधा, यानी कि 50% अधिक हो गया है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा विदेश व्यापार पर जारी इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स के अनुसार अप्रैल और जून के बीच व्यापार घाटा बढ़कर 27.65 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, जबकि पहली तिमाही यही रकम 45.6 बिलियन रुपए था. विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि बुधवार को नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद हालात बेहद भयावह हो गए हैं. मध्य और दक्षिणी नेपाल में 200 किलोमीटर लंबे भोटे काशी त्रिशूली नारायणी नदी मार्ग पर स्थित मुर्दा घर पूरी तरह से भर चुके हैं और उनकी क्षमता जवाब दे गई है. बाढ़ में बह गए लोगों के शव जैसे जैसे नदी के निचले इलाके में मिल रहे हैं. प्रशासन को मजबूरी में शवों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजना पड़ रहा है. हालात इतने गंभीर

0: है कि सरकारी इमारतों और सामुदायिक भवनों को अस्थायी मुर्दा घरों में तब्दील करना पड़ा। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: एवेन्यू पिंसन सा सुदना कैथोबोन में 41 साल की 41 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नैति देवी जानगी पैदाइशी नाम बकोरीसन और जिन्हें सब लोग विदिशा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उन्हीं के घर एवेन्यू पिंसन सुदना कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM लक्ष्मी रोड लेक्सपेरेंस ट्रेबुशे में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्री रामराज दौलत जिन्हें सब लोग पंडित विजय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उन्हीं के घर लक्ष्मी रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM टैगोर रोड रिश्मा में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्री प्रकाश रामभुजन जिन्हें सब लोग प्रवीण के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी माँ श्रीमती रेवती रामभुजन के घर टैगोर रोड रिश्मा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेवोंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: यस कह रही है हवा गम की बातें छोड़ो बस खुशियां बतोरने में लग जाओ. हेलो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू योर बॉली ब्रंच विद नमनी. सैटरडे आफ्टरनून का समय है और वेदर थोड़ी भीगी भागी सी वर्ब्स को अफेक्ट कतई ना करेंगे. आपके लिए अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे ताकि सैटरडे वाइब्स हैप्पी हैप्पी से गुजरे. आप बस यही पर रहना कनेक्टेड. इट्स योर आरएम2 रेडियो मस्ती.
0: बॉली ब्रंच आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: आशा भोसले जी की आवाज में वो गाना था ले गई ले गई। आप सुन रहे हैं अभी बॉली ब्रंच, जहां बॉलीवुड के तड़के के साथ गॉसिप भी है आपके लिए हाजिर। तो कहीं जाना नहीं, बॉली ब्रंच का सफर है जारी।

एंड गॉसिप्स की प्लेट अभी बाकी एंड मैसेजेस को चेक करते हैं। हमारे बड़ी यालीश सो के नाम से कनेक्टेड हैं और विश कर रहे हैं आप सभी को सैटरडे आफ्टरनून। एंड आप हैं अब्दुल जी और सारा बानो जी। नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं रेहान दाहू के लिए जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू रेहान एंड ऑल दोस जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। दिस वन इज़ फॉर यू।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा जी। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण पाने के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में भाग लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर राम प्रसाद सरोजबाली की मौजूदगी में ये परेड लगाई गई। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी सेवा निभाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर एवं पवित्र प्रतिबद्धता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि वे सुब्रमण्य कृष्णन की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तेज हवाओं और ऊंची लहरों समुद्री लहरों की चेतावनी सोमवार 31 अगस्त 2026 तक दिन के 10 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये जानकारी नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर के कम्युनिके में दी गई, जो मौसम विभाग के बुलेटिन के बाद जारी किया गया। दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण पूरे मस्करिंस में मौसम बहुत ठंडा और हवादार रहेगा। दक्षिण पूर्वी हवाएं औसतन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिनके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। प्रवाह रेखा के बाहर समुद्र बहुत उग्र रहेगा। दक्षिण पश्चिम से आने वाली लहरों की ऊंचाई 4 से 6 मीटर तक हो सकती है। उन ऊंची लहरों के कारण विशेष ज्वार के समय समुद्र का पानी तट की ओर बढ़ सकता है और निचले तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। ये खतरा खासतौर पर द्वीप के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में अधिक हो सकता है। ऐसे में जनता से सावधानी बरतने की मांग की जाती है। विदेश में नेपाल में बचाव कर्मी लगभग 2500 लापता लोगों की तलाश और नेपाल चीन सीमा पर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अपने प्रयास तेज कर रही हैं। ये कार्रवाई उस भयंकर बाढ़ के 3 दिन बाद हो रही है, जिसमें कम से कम 623 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और इस दुखद समय में मॉरिशस नेपाल और चीन की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपने फेसबुक पेज पर संदेश जारी कर दोनों देशों की सरकारों और जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने विशेष रूप से इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति जताई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आशा व्यक्त की कि शोकाकुल परिवारों को आने वाले दिनों का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस मिले। उन्होंने ये भी कामना की कि प्रभावित समुदाय इस त्रासदी से उभरे और अपने जीवन तथा क्षेत्रों का पुनर्निर्माण कर सके। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। लक्ष्मी रोड लिस्पेरेंस त्रिबुशे में 72 साल के 72-year-old श्री राम राज दौलत, जो पंडित विजयी से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान लक्ष्मी रोड लिस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर दाह संस्कार के लिए लिस्पेरेंस त्रिबुशे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: गी क्रिमिशन टुडे एट 3 पीएम टैगोर रोड रिश्मा में 70 साल की 70 ईयर ओल्ड श्री प्रकाश रामभोजन श्री प्रकाश रामभोजन जो प्रवीण से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी मां रेवती रामभोजन के मकान टैगोर रोड रिश्मा से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावांचे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 पीएम और एवेन्यू पिनसन सिडना काठबोन में 41 साल की 41 ईयर ओल्ड श्रीमती नैती देवी जांगी श्रीमती नैती देवी जांगी पैदाइशी नाम बकोरी सेन जो विदिशा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान एवेन्यू पिनसन सिडना काठबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 पीएम शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

0: Family Brunch RM2 Radio Masti.
1: Can you feel the music? और हाँ, म्यूजिक तो हम फील कर ही रहे हैं, लेकिन मौसम भी आज अपना मूड फील करवा ही रहा है। वैसे आपके यहाँ मौसम कैसा है? कहीं पर बारिश हो रही है ना? हाय, दिल तो चाहता है कि बस इस बारिश में भीग जाए। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से अगर आपको ठंड लग गई तो आपकी मम्मियाँ मुझे डांटेंगी। तो बेहतर है इंडोर रहिए, वार्म रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि मॉरिशस में स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी स्वेल का वार्निंग मंडे मॉर्निंग तक जारी है। अभी के लिए आप बस बारिश को एंजॉय कीजिए खिड़की के अंदर से, और म्यूजिक तो हम चलाते रहेंगे आपके बॉलीवुड ब्रंच में। 2 बजे तक नीलमणि आपके साथ ही है, तो म्यूजिक को एंजॉय करते हैं साथ में। नेक्स्ट वन करते हैं आपके नाम फरोसन मूवी से आपके लिए सुंदर गाना।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: मूवी का टाइटल और सॉन्ग क्या बात है, इस आफ्टरनून को फिर से किसी की याद दिला दी ना। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, किसी खास इंसान की याद के साथ फील किए जाते हैं। तो अगर इस गाने ने आपको भी किसी की याद दिला दी, नाम मत बताना, हम समझ जाएंगे। तभी के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद एक अमेजिंग गाने के साथ।
1: Alpa Dol Petit Pois 500 grammes à 15,95 rupees. Basmati First Choice grade 11-21 de 5 kg à 385 rupees. Des huiles N-Lit Omega 100% Soya à 60.

to Radio Masti. जगाती है कयामत को।

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: हर रेस ना की एक स्टोरी होती है, कभी हीरो स्टार्टिंग से लीड में, कभी लास्ट मोमेंट में होता है प्लॉट ट्विस्ट। तो रेस कोर्स की तरफ बढ़ने वाले हैं 1:40 को। अभी के लिए बॉलीवुड स्टाइल में गानों को कंटिन्यू रखते हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग मेहंदी का रंग फॉर यू, स्पेशली आपके इस बॉली ब्रंच के सफर में।

0: Holy Branch RM2 Radio Masti.
1: यस, होली ब्रंच का सफर है ना, आपको पता है दोस्त, आज है इंटरनेशनल कॉस्प्ले डे। मतलब आज अपने फेवरेट सुपर हीरो, मूवी कैरेक्टर या एनिमे कैरेक्टर का लुक रिक्रिएट कर सकते हो आप। एंड ऑनेस्टली कॉस्प्ले में एक दिन के लिए कैरेक्टर बनना तो इजी है, लेकिन कोई आपको घर पे बुलाए और आप बोले कि आई एम बैटमैन, तो मम्मी का रिएक्शन क्या होगा सोच भी नहीं सकती मैं। तो आज अपने फेवरेट कैरेक्टर का अवतार चूज कीजिए, थोड़ा ड्रामा कीजिए, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाइए, क्योंकि लाइफ में कभी कभी अपने कैरेक्टर से बाहर निकल कर भी एक कैरेक्टर बनना चाहिए, है कि नहीं। तो एंजॉय योर इंटरनेशनल कॉस्प्ले डे विद योर आरएम2 वेरी मस्ती, क्योंकि नमनी यही पर है 2 बजे तक साथ देने के लिए।
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
3: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

और इसी प्यारे से गाने के साथ बॉलीबर्न शो का सफर यही खत्म होता है. मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक से मस्ती से म्यूजिक और ढेर सारी बातों के साथ. तब तक सेफ रहिए, स्पेशली अगर आप बाहर जा रहे हैं. हवाएं आज कुछ ज्यादा ही हीरो बन रही है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, तो अननेसेसरी बाहर निकलने से बचिए. संभाल कर ड्राइव कीजिए और अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर. याद रखिए, हवा तेज हो सकती है लेकिन हमारे वाइब्स उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सी यू नेक्स्ट वीक. टिल देन कीप लिसनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: your musty.
1: North, South,
0: 103.5,
1: East, West,
0: 96.4,
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Wishing you all a very good afternoon. I check your time. It's the 2 p.m. Sunday hai sangshat samachar Yachna ke saath. Aapko namaskar Yachna.
4: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण न पाने के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सोहजबारे की मौजूदगी में ये परेड लगाई गई। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी सेवा निभाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर और पवित्र प्रतिबद्धता है। देश में सोमवार सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरें और तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार के वक्त लहरें तटों तक भी पहुंच सकती हैं। खासकर दक्षिण और पश्चिम में आम जनता से सावधानी बरतने की मांग की जाती है। तेज हवाएं बहेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। आम जनता से यहां वहां उड़ती चीज़ों से बचने और खासकर सड़कों पर क्रॉसविंड्स के कारण ज़्यादा सतर्क रहने और ऊंचाई वाली जगहों पर काम करते वक्त ज़्यादा सतर्क रहने की मांग की जा रही है। विदेश की खबरों में ये दुखद खबर। नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या 600 पार कर गई है, जबकि 2400 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज चौथे दिन बचाव अभियान जारी रखा गया। बारिश के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक त्रिशूली में बचाव अभियान में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं, जो पर्यटक के रूप में वहां घूमने गए थे या फिर हिमालय की तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। और रूसी सेना द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में किए गए हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल हुए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में कम से कम 50 आवासीय इमारतें प्रभावित हुई हैं, इनमें बुजुर्गों का एक होम भी शामिल है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। Shok Samachar Sunye, Avenue Pinson, Sudna 4 Bonne Mai, Avenue Pinson, Sudna 4 Bonne Mai, Ikiali Sisalki, 41 years old, Ki, Shrimati Naiti Devi Jangi, Shrimati Naiti Devi Jangi, Pedashi Naam Bako Hisen, or Jo Vidisha Ke Naam Se Zyada Jani Jati Thi, Unki Mrityu Ho Gayi Hai, Arthi Sapeher 3 Baje, उनके मकान एवेन्यू पैंसों सुदना कथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल मां की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
5: RM2 रेडियो मस्ती।
0: प्लग एंड प्ले।
2: RM2
0: प्लग एंड प्ले।

0: Find your number. Find your fragrance. Beaujolais. We all have a number one. Find Beaujolais at Victoria Urban Terminal. Call on 214-6811.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Plug and play.
2: RM2
3: बजकर 10 मिनट हो गया है. आप सभी का वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. एंड बिल्कुल आज ये जो दिन आया है यहाँ पर टू सेलिब्रेट योर डे, टू सेलिब्रेट योर डे. और अगस्त महीने का अंतिम वीकेंड चल रहा है, सो वी आर हियर टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल. खास बनाते जाएंगे इस म्यूजिकल सफर को. यहाँ पर आ गई है हंसनी आप लोगों का साथ निभाने के लिए. और कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे शादी मॉ सपोर्ट रेस, जहाँ पर लगने वाला है द नेक्स्ट रेस. दैट विल बी आज का रेस फोर. So for all the updates, keep listening to Radio Musti. और साथ में आज काफ़ी हलचल मची हुई है. यहाँ पर दिन के दौरान हम गए थे फॉर सम लाइव एनिमेशन. हमारे अवजय सर जो बिल्कुल तैनात है वो यहाँ पर बिल्कुल साथ निभाते जाते हैं जहाँ पर भी इवेंट होते हैं. और जैसे कि विदिता शे इज ऑलरेडी देयर एट फ्लैक. और कुछ ही पल में हम विदिता से मिलने वाले हैं. शी विल बी हियर लाइव फॉर टू आवर लाइव रेडियो एनिमेशन जो होने वाला है एट फ्लैक. सो वी आर ऑल सेट फॉर अ धमाकेदार सफर जो बिल्कुल तय हम करेंगे आप लोगों के लिए. एंड वैसे वी हैव गट शिकोंकू एज वेल. अगर आपको जाना है शान के धमाकेदार कंसर्ट में जो होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे को, तो बिल्कुल ये मौका हम आपको देंगे राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. सो कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड. वी विल बी वेटिंग फॉर द रेसेस. इसके बाद हम लेकर आएंगे द क्वेश्चन और साथ ही साथ वो स्पेशल गिफ्ट जो हम आपको देने वाले हैं रेडियो मस्ती द्वारा. सो जहां पर भी साथ जारी है आप सभी का वार्म वेलकम.
1: प्लग एंड प्ले.
2: RM2
1: प्लग एंड प्ले.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Back with Masti on our radio station, जो है आप ही का रेडियो मस्ती, और यहाँ पर है हंसनी जो आपके साथ है. We are just celebrating your special Saturday. और जैसे हमारा इशारा हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल ये चांस हम आपको दे रही हैं to be part of दर्शकों को. The game is powered by ticketboxer.mu. यहाँ पर एक ऐसा सफर होने वाला है, a journey filled of melodies, कुछ ऐसी यादों के साथ. वो timeless आवाज आएगी, Mauritius, the आवाज of the great सिंगर शान. तो यहाँ पर रेडियो मस्ती RM2 जो है बिल्कुल ये चांस आपको दे रहा है टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक, और वो भी लाइव शान से उनकी गानों को हम सुनने वाले हैं. और वो तो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स इन बॉलीवुड, और वो तो है शान. तो ये जो लाइव इवेंट है वो तो होने वाला है 5th of September को, यानी कि नेक्स्ट वीकेंड को होने वाला है, नेक्स्ट सैटरडे को. और वो एक आवाज़, वो धमाकेदार कंसर्ट जो होने वाला है एट SBICC आज फ्रॉम 8 PM शुरू होगा. दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketboxer.mu. और रेडियो मस्ती इज हियर यहाँ पर टू गिव यू द चांस टू विन अ प्लैटिनम टिकट. तो इस धमाकेदार कंसर्ट में आप जाना चाहते हो, ये जो चांस है वो तो हमारा रेडियो स्टेशन आपको दे रहा है. सो जल्दी से आप आइए यहाँ पर हमारे साथ, जुड़ जाइए ऑन रेडियो मस्ती, एंड बिल्कुल ये सवाल जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं. सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन, वेयर इज द ticketbox.mu kiosk located? The question is, where is the ticketbox.mu kiosk located? अगर आपके पास सही जवाब आ गया है, कोई बात नहीं, ये तो भी चलेगा, क्योंकि to make it easy, options हम आपको देंगे. Option A, is it at Phoenix? Option B, Port Louis? या फिर option C, Tribeca Mall? Where is the ticketbox.mu kiosk located? Phoenix, Port Louis? या फिर Tribeca Mall? अगर आपके पास सही जवाब आ गया है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर आप अपने सही जवाब भेजें on a 54998 94. Don't forget, पूरा नाम पता ये सब प्लीज आप लिखिए, ताकि जो लकी ड्रॉ है बस आसानी से आप इन हो जाए इसके द्वारा, राइट? सो चलिए हंसनी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट.
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: यहाँ पर आपके लिए सवाल था where is the ticketbox.mu kiosk located और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए थे Phoenix, Port Louis या फिर Tribeca Mall और यहाँ पर से जवाब इट्स ऑप्शन सी यानी कि Tribeca Mall जहाँ पर ticket box team can assist you with your online bookings on ticketbox.mu जहाँ पर इंक्लूड होते हैं होटल्स इवेंट्स स्पास एक्टिविटीज गिफ्ट कार्ड्स एंड मच मोर यहाँ पर सही जवाब इट्स ऑप्शन सी यानी कि Tribeca Mall जो बिल्कुल सही जवाब है अभी के लिए लेट्स गो एंड चेक आउट कौन है वो लकी विनर

तो यहाँ पर जीतने वाली है हो वो तो बकवा की रहने वाली है. कंग्रेचुलेशंस टू करिश्मा जलीम, आपकी जीत हो गई है करिश्मा जी. एंड यस यू आर विनिंग प्लैटिनम टिकट बीइंग ऑफर्ड टू यू बाय रेडियो मस्ती. यहाँ पर ये जो चांस है हम आपको दे रहे हैं ऑफ कोर्स टू बी देयर टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेट कंसर्ट जो होने वाला है 5th of September को, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को. गेट रेडी करिश्मा जी, आप तो जा रही हो शान को देखने के लिए लाइव, उनके लाजवाब गानों को सुनने के लिए, और वो भी एकदम लाइव. ये जो इवेंट है शुरू होगा आज फ्रॉम 8 PM, प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu. कंग्रेचुलेशंस टू यू. ये जो चांस है हमेशा आपको देता रहता है हमारा वन एंड ओनली रेडियो मस्ती. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. यहाँ पर गाना हो जाए, इसके बाद हम बढ़ेंगे, घूमने जाएंगे आज फ्लैग, जहाँ पर विदिता से मुलाकात होने वाली है. एंड शी विल बी लाइव फॉर आज का एक धमाकेदार रेडियो एनिमेशन. स्टे वेल कनेक्टेड.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. RM2 Radio Musti.
2: Right, my lovely people, it's already 2:30 PM और जैसे आपको पता है यहाँ पर घूमने का टाइम आ गया है. Let's go to Flak Boulet Rouge, जहाँ पर एकदम तैयार रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वेदिता. Hello my dear, welcome on Radio Musti.
3: हेलो हंसनी एंड हेलो माय ब्यूटीफुल लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती. आप सबों का स्वागत है, वेलकम करते हैं. और जैसा आपने कहा कि सैटरडे का दिन है और सैटरडे में हम स्टूडियो में बैठे क्यों रहे, तो चलिए इसी के लिए हम आपको लेकर आए हैं स्टूडियो से बाहर. अब की बारी हम आपको ले आए हैं शॉपिंग कराने के लिए. अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपिंग कराने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं. भाई आजकल क्या है ना कि बहुत सारी शादियाँ हो रही, बहुत सारे लोग अपने फर्नीचर को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नया घर बना रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नया टच लाना चाहते हैं अपने घर में. अब चाहे वो आपका लिविंग रूम हो, चाहे वो आपका डाइनिंग रूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम क्यों ना हो. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जाए तो जाए कहाँ. मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपके लिए द बेस्ट फर्नीचर लेकर आए हैं और ये है हमारा टेक वर्ल्ड. जी हाँ, टेक वर्ल्ड, जहाँ पे जो दुनिया है टेक के ना, तो इसे देखकर आप बेहोश नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोमोज लगे. हाँ, प्रोमोज देकर बेहोश गिर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए लगी है सेल. तो आप लोग अगर फ्लैक के आसपास में रहते हैं, वैसे अगर आप मायबू में रहते हैं, अगर आप पोर्टविस में रहते हैं, तो अगर आपका घूमने का भी मन कर रहा है, वैसे भी सैटरडे यार, घर में क्या करना है, चलो बाहर निकलो और आ जाओ हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टेक वर्ल्ड है, इन्होंने सेल्स लगाया हुआ है अपने सभी प्रोडक्ट्स पे, सभी फर्नीचर्स पे. यहाँ पर आकर मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग जहाँ पर है ना, यहाँ पर एक इतना सा खूबसूरत सा बेड है, मैं तो आ ही लेट गई. और फिर उसके बाद मैंने इतने अच्छे अच्छे सपने देखे कि लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर उनको डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि जो सेल लगी है उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं. तो जितने भी लोग इस समय सोच रहे हैं कि अपने घर को एक नया टच देना चाहते हैं, अब यहाँ पर क्या क्या है, कौन से फर्नीचर्स हैं, इसके दाम कितने थे. भाई लाखों के फर्नीचर्स यहाँ पे इतने कम दाम में मिल रहे हैं. तो अगर आप लोग फ्लैक के आसपास में हैं तो आप लोग जरूर यहाँ पर आ सकते हैं. टेक वर्ल्ड, जी हाँ, बुले रूज, जी हाँ, बुले रूज में आप लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, आप लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं, घूमने आते हैं, लेकिन घर के सामान के लिए अगर आपको आना है तो हम लोग हैं बुले रूज के टेक वर्ल्ड में, जहाँ पर हम आपका वेलकम करें. तो चलिए थोड़ी देर में कुछ और डिटेल्स के साथ, यानी कि यहाँ पर जो फर्नीचर्स है इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पे जो हमारे मालिक है, अगर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कहना चाहा, सो डेफिनेटली इज मोस्ट वेलकम. चलिए आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर में कुछ और डिटेल्स के साथ कंसर्निंग यहाँ के जो फर्नीचर्स है, इनकी क्वालिटी के बारे में और इनके प्राइस के बारे में. तो हंसनी अगर आप रेडी है तो थोड़ी देर में सारे डिटेल्स और आंखों देखा हाल हम आपको बताएंगे. स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन रेडियो मस्ती. टेक वर्ल्ड से लाइव हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर हम रह रहकर आपको सारी डिटेल्स देते रहेंगे.
0: RM2 Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: So my dear friends, like we said it before, हम लोग आज स्टूडियो से बाहर आए हैं सेंटर फ्लैक, जी हाँ बुले रूज, जहाँ पर हम हैं आज टेक वर्ल्ड। जी हाँ, टेक वर्ल्ड के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन टेक वर्ल्ड के अंडर अभी जो सेल लगी है उसके बारे में अभी बताने का समय आ गया है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जैसे जैसे आपकी नज़रें जाती हैं वैसे वैसे आपका दिल जो है ना वो खुश होता जाता है। लाइक वी ऑलवेज से मोगैम्बो खुश हुआ। चले तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फर्नीचर्स देख रहे हैं, और कुछ लोगों को अगर अपना जो लिविंग रूम है उसको एक नया लुक देना है तो यहाँ पर एक सेट जो है, सोफ़ा सेट जो है, मैं आपको बताऊँ कि हमेशा हम लोग जब सोफ़ा सेट देखते तो उसमें होता है 3+2+1, लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं 3+2+1 है, यानी कि एक यहां पर मुझे ज्यादा लग रहा है। और इनका जो टेबल है बहुत ही खूबसूरत है। वैसे ये जो सोफा सेट है, मैं आपको बताऊं, ये था 1,15,900 रुपीज, और अभी ये इस प्राइस से निकलकर आ गया है 92,720 रुपीज। अब सोचो कि लाखों का ये फर्नीचर जब इतना आपको डिस्काउंट दे सकता है तो बाकी के जो हमारे फर्नीचर्स हैं उसमें कितने आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए, सेल लगी है यहाँ पर, और आपको अगर अपने घर को नया लुक दे रहा है तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, टेक वर्ल्ड आकर आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से सबसे पहले तो इनका जो, जैसे आप एंट्री लेते हैं ना, इनकी जो सजावट ही है ना, इसे ही देख के दिल खुश हो जाता है। यानी कि आपको एक, वो कहते हैं ना कि एक पहले से आइडिया हो जाता है कि जब आप अपने घर में ये सोफ़ा डाल रहे हैं या डाइनिंग टेबल डाल रहे हैं और उसके साथ साथ जो कटलरी है उसको डाल रहे हैं, तो आपका जो लिविंग एरिया है, आपका जो डाइनिंग एरिया है, वो कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लगेगा। तो सोफे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोफ़ाज हैं जो कि आप अपने घर पे लगा सकते हैं। एंड नॉर्मली लोग जो हैं वो प्रिफर करते हैं एक ऐसी क्वालिटी की सेट

जो कि उनके घर को सिर्फ एक नया लुक ना दे बल्कि ये ड्यूरेबल भी हो। यानी कि आपको पता है कि एक बार आपने ये सोफ़ा अपने लिविंग रूम में लगा दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि ये जो सोफ़ा है ये टूटने वाला नहीं है। घर में बच्चे होते हैं, कूदते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो यहाँ पर ये जो सोफ़ा है ये आपके हिसाब से है। यानी कि अगर आप सिर्फ खूबसूरत लिविंग रूम के लिए सोफ़ा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे इसमें बैठ के ना एक वो रॉयल वाली फीलिंग आती है, तो इस तरह के सोफ़ाज हैं यहाँ पे। और बाकी अगर आप अपने टीवी रूम में सोफ़ा लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई रिक्लाइनर हो, बैठ के आपके पैर थके ना, क्योंकि मूवी देखते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे तो हम बैठते हैं टीवी के सामने, तो रिक्लाइनर भी हैं जो आप बैठ सकते हैं और बगल में मैं देख सकती हूँ आपकी कॉफ़ी की कप आप रख सकते हैं या चाय की कप आप रख सकते हैं एंड साथ में बैठकर आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे यू कैन हैव अ गुड टाइम। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग सोफ़ाज हैं और कुछ सोफ़ा ऐसे भी हैं जो आप कभी कभी मेहमान आते हैं और आपको लगता है कि भाई मेहमान आ गए हैं, घर में कुछ ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो सोफ़ा कुछ ऐसा भी है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस पर सो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी सोफ़ाज हैं जहाँ पर 2 लोग तो आराम से, स्पेशली इसको आप ये सोफ़ा है लेकिन देखने पे लगता नहीं है, इसे भी आप अपने टीवी रूम पे लगा सकते हैं, सोफा का सोफा हो जाएगा और अगर फैमिली आ गई तो उसको बेड बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, नाउ यू कैन इमेजिन कि यहां पर 46,990 रुपीज से निकलकर जो सेट 32,890 रुपीज़ पे आ गया है, तो बाकी के जो सोफ़ा है इस तो कमाल ही है भाई। तो चलिए यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं एट टेक वर्ल्ड बुरे रूज, जहाँ पर आप आकर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं घर के लिए और अगर आप अपने घर को नया लुक देना चाहते हैं तो वाई नॉट। चलिए इसी के साथ हमें इशारा किया जा रहा है कि थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं रेसेस की ओर और फिर उसके बाद वापस टेक वर्ल्ड में आकर हम करेंगे आपके साथ मिलकर शॉपिंग।

0: FM 104.2
1: Radio Masti.
2: हाय वेलकम वंस अगेन टू रेडियो मस्ती. वी आर लाइव फ्रॉम टेक वर्ल्ड बुले रूज. जी हाँ दोस्तों, चलिए अभी बात करते हैं. अभी हम सोफे के बारे में बात कर रहे थे और अभी मेरे सामने जो है एक ऐसा ऑफिस डेस्क है, ये है मास ऑफिस डेस्क. जी हाँ, सीटिंग और स्टैंडिंग आप अपने हाइट के हिसाब से इस पे काम कर सकते हैं. कभी कभी होता है ना कि टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है या टेबल जो है बहुत ज़्यादा नीचे होता है, तो यहाँ पर ये जो टेबल है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से. जी हाँ, और इसका जो प्राइस है वो है 14,990 रुपीज़. मैं आपको बताऊँ, एक बहुत ही खूबसूरत सा, दिखने में बहुत खूबसूरत सा और एकदम सिंपल सा टेबल है ये, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. और इसके साथ अगर आपको चेयर चाहिए तो यहाँ पर आपको एक ऑफिस चेयर मिल सकता है. और ये है अर्गोमैक्स एग्जीक्यूटिव हाई बैक, एक ग्रे कलर का बहुत ही खूबसूरत सा ये चेयर है. इसमें आपको 20% ऑफ भी मिल रहा है, जो कि इस टेबल के साथ एकदम मैच कर रहा है. और इसका प्राइस है 12,790 रुपीज़, यानी कि इस पे भी आपको यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है. और चलते चलते मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको अगर कारपेट्स चाहिए अपने घर के लिए, वैसे भी अभी सर्दी का मौसम है, लोग जो है ना टाइल्स पे चलना पसंद नहीं करते, और जब बैठते हैं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वो लोग स्लीपर्स पहन के चले, तो उनको ना ऐसे नंगे पैर चलना अच्छा लगता है. गर्मी के सीजन में तो ठीक है, ठंडा ठंडा टाइल्स मज़ा आता है, लेकिन सर्दी के मौसम में क्या करें. तो यहाँ पर बड़े बड़े कारपेट्स हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर मैं बैठ गई तो अलादीन जैसे कारपेट पर बैठ के उड़ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि इसमें बैठ के भी आपको वही वाली फीलिंग आने वाली है. बड़े बड़े कारपेट्स, खूबसूरत कारपेट्स हैं और कलरफुल भी हैं, एकदम कलरफुल हैं. तो ये जो कारपेट्स हैं, मैं आपको बताऊँ, इसमें भी काफ़ी प्रोमोज लगे हुए हैं. और अपने घर पर आप अपने सोफे के कलर के हिसाब से, अपने घर के पेंट के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग ये कारपेट जो है खरीद सकते हैं. लाइक बिफोर मैं फिर कहूँगी कि यहाँ पर टेक वर्ल्ड जो है इन्होंने जो प्रोमो लगाया है, इसका फ़ायदा अगर आपने अभी नहीं उठाया तो पता नहीं ये मौका आपको फिर कभी मिलेगा. ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, मिलेगा मिला गया मिलेगा आपको मिल रहा है ये मौका. सो आप लोग अगर टेक वर्ल्ड की ओर हैं, आसपास में अगर आप लोग इधर से गुजर रहे हैं, वैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग हमारी आवाज़ें सुन सुन कर आ रहे हैं देखने के लिए कि लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है. अरे झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ. आप एक बार यहाँ पर कदम रखो, अंदर आओ, देखो तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि सच में टेक वर्ल्ड ने आपके लिए इतने सारे डिस्काउंट लगाए हैं अपने फर्नीचर्स पर, अपने सारे प्रोडक्ट्स पर. तो समाचारों के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं, कुछ और बातें करेंगे और कुछ और डिस्कवरीज करेंगे. ये है टेक वर्ल्ड, वी आर लाइव फ्रॉम बुले रूज ऑन रेडियो मस्ती.

0: Greatest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
1: Good afternoon, everyone. I check your time. It's already 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ है। आपको नमस्कार याचना।
2: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण पाने के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुहजबाली की मौजूदगी में ये परेड लगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी सेवा निभाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर और पवित्र प्रतिबद्धता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि वे सुब्रमण्यन कृष्णन की मौत की जो गुठी है वो सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में सोमवार सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार के वक्त लहरें तट तक पहुंच सकती हैं। खासकर दक्षिण और पश्चिम में आम जनता से मछुआरों से और लेजर क्राफ्ट ऑपरेटरों से सावधानी बरतने की मांग की जाती है और तटों के पास सभी से भी दूर रहने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी समंदर में। इसके अलावा तेज हवाएं भी बहेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। क्रॉस विंड्स के कारण सड़कों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जा रही है। महात्मा गांधी संस्थान में आज सुबह देश के विरासतों, खासकर ऐतिहासिक जगहों और स्मारकों पर आधारित एक फोरम का आयोजन किया गया। इसमें गणराज्य के राष्ट्रपति और साथ में कला एवं संस्कृति मंत्री ने भी भाग लिया। इन विरासतों, स्थलों और स्मारकों की रक्षा के लिए और उनके मरम्मत के लिए कई कदमों का ऐलान किया गया। विदेशी समाचारों में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या 600 पार कर गई है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। आज चौथे दिन बचाव अभियान जारी रखा गया। हालांकि बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में से एक त्रिशूली में बचाव अभियान में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं जो पर्यटक के रूप में वहां घूमने या फिर हिमालय की तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: FM 101.2 Radio Masti.
1: Welcome once again. Yes, we are live on a Radio Masti from Boulet Rouge. Exactly, हम लोग हैं from Tech World. जी हाँ, Tech World, जहाँ पे आपके लिए यहाँ भारी promos लगे हैं, यानी कि यहाँ sale लगा हुआ है. और जितने भी यहाँ पर furnitures आप देखेंगे, जितने भी यहाँ पर आप sofa set है, यहाँ पर हम देख सकते हैं sofa bed है. We have so many beautiful sets जो कि आपके kitchen को चार चांद लगाएंगे. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइनिंग सेट की. ट्रस्ट मी, ये देख कर ना आपको ये जो रॉयल वाली फीलिंग आती है ना, चाहे उसका ये जो चेयर है इतना कंफर्टेबल है. नॉर्मली जब हम चेयर की बात करते हैं तो चेयर जो होता है इतना स्मूथ नहीं होता, इतना कंफर्टेबल. आप इंसान जो है ना, अगर खाना खाने बैठेगा तो उसको खाना खाना होता है, वो ज़्यादा देर तक बैठता नहीं है. क्यों? क्योंकि चेयर पर इतने देर तक बैठना ज़रा मुश्किल होता है. तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो सेट लगे हुए हैं, ये जो कुर्सी है ना, जो चेयर्स हैं, आप इस पर आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि इस पर बैठना और सोफे पे बैठना जैसे कोई फ़र्क नहीं है. हाँ, सोफ़ा कुछ ज़्यादा ही कम्फर्टेबल होता है, लेकिन ये जो चेयर्स लगे हुए ना, हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. आजकल क्या होता है कि लोग खाना खाते हैं फैमिली के साथ, नॉर्मली जो लोग ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं उनके लिए ये सही रहेगा कि वो इन चेयर्स पे अगर बैठ रहे हैं डिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और देर तक इस पे आप बैठ सकते हो. और ये नहीं कहोगे कि भाई कमर में दर्द हो रहा है या आप धक्के बैठे बैठे थक गए हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे खूबसूरत सेट्स हैं. ज़्यादातर यहाँ पर जो बेज है, अगर आप इसको अपने डाइनिंग रूम में लगा रहे हो, और कुछ है जो यहाँ पर बेज के साथ साथ जो है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ उस वो बेज कुर्सी के साथ, और यहाँ पर बेज नहीं बल्कि ग्रे कुर्सी के साथ भी कुछ यहाँ पर कुछ बहुत हल्का हल्का जो ग्रीन कलर होता है उसके हिसाब से भी इसको मैच किया गया है. और कुछ ऐसे भी चेयर्स हैं जो आपके इस टेबल के साथ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो टेबल है ये एक्सपैंड होता है. जी हाँ, ये टेबल एक्सपैंड होता है, और ये मैं कह सकती हूँ कि इस पे साथ आप काफ़ी सारे लोग जो हैं बैठकर इस पे आप डिनर पे अगर किसी को बुला रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा. क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये जो टेबल है ये चार पीसेस में मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसको किस तरह से ये लोग बन करके इसको फिर छोटा बनाते हैं ये डेमो में थोड़ी देर में देखने वाली हूँ. लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है और आपके घर में अचानक से बहुत सारे लोग आए हैं तो इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, और कोने में रखे हुए आप जो चेयर्स हैं उसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को आप यहाँ पर एंटरटेन कर सकते हैं. आई मीन टू से कि 10 लोग जो हैं, 10 क्या, मैं तो कह सकती हूँ कि यहाँ पर 12 लोग भी इस टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यहाँ पे हर तरह के टेबल्स आपको मिल जाएंगे, और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो सेट्स हैं यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं. एंड मैं जो ये जो राउंड टेबल्स होते हैं, छोटे वाले साइड टेबल्स होते हैं, ये भी मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत है. तो कुछ हैं जो 9,990 रुपीज़ से निकलकर 7,990 रुपीज़ में आ गए हैं. तो ये जो कोने वाला जो साइड टेबल होता है ना, इस पे आप अपने डेकोरेशन को भी रख सकते हैं, या तो फिर इसको आप मिडिल में भी रख सकते हैं. और कई सारे लोग हैं जो अपने गार्डन में इसको रखना पसंद करते हैं, अगर वो वेल कवर्ड है तो ये जो साइड टेबल हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और बाकी के जितने भी हमारे यहाँ पर फर्नीचर्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपके लिए कुछ और डिटेल्स लेकर आ रही हूँ. साथ देते रहिएगा. वी आर लाइव ऑन रेडियो मस्ती फ्रॉम टेक वर्ल्ड बुले रूज.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Masti. And yes, guys, thank you so much for joining us on Radio Masti. हम हैं live from Tech World Bulle Rouge. And जितने भी लोग यहाँ पर इस समय Tech World में हैं, उन सब का हम welcome करते हैं. Thank you so much for coming. And काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपने हिसाब से, अपने पसंद से यहाँ पर जो है furniture select कर रहे हैं. Thank you so much for coming. And आगे बढ़ते हैं. Yes, अभी हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो चीज बड़ी है मस्त. जी हाँ, खाने वाली चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर एक मैट्रेस की. जी हाँ, जब हम मैट्रेस की बात करते हैं, पता है इंसान काम करता है दिन भर, थकता है, गाड़ी चलाता है, और कुछ लोग जो है दिन भर बैठ के काम करते हैं, कमर जो बेचारा है वो भी थक जाता है. अब ऐसे में अगर आपको रिलैक्स करने के लिए एक अच्छी सी मैट्रेस ना मिले रात को सोने के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा. आपको पता है कि हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग कम से कम 6 घंटे तो इस बेड पे रहते हैं, इस मैट्रेस पे बिताते हैं. अब अगर मैट्रेस अच्छा नहीं तो इसका असर होता है हमारे पूरे बॉडी पर. तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं ऑटो रिलैक्स. जी हाँ, ये जो मैट्रेस है, मैं आपको बताऊँ कि ये जो है आपके पास तीन यहाँ पर मॉडल्स रखे गए हैं. एंड ऑटो रिलैक्स जो है बहुत ही कंफर्टेबल है. और इसमें मैं आपको एक बात बोलूँ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं रिलैक्स करके ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसी बेड पे बैठी हुई हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ. एंड मैं एक्चुअली उनसे इस बेड के बारे में पूछ ही रही थी, तभी उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दिया. तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए इन्फॉर्मेशन क्यों रखूँ, मैं आप तक भी शेयर कर लूँ. तो यहाँ पर आप यू नो, यू कैन वेक अप टू अ बेटर सपोर्ट एंड यू कैन स्लीप वेल. तो यहाँ पर जो कंफर्ट है डिज़ाइन किया गया है टू अलाइन योर बॉडी एंड रिलीव एवरीडे प्रेशर. हम रोज़ टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है, दिमाग भी थक जाता है. और ऐसे में अगर आपको अच्छी सी गहरी नींद में सोने के लिए एक कंफर्टेबल मैट्रेस हो तो क्यों नहीं. तो ये जो मैट्रेस है यहाँ पर आता है आपके लिए अलग अलग, यानी कि मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं जिस मैट्रेस पे बैठी हूँ, ये मैट्रेस जो है ये मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा वाला है. ओके, बड़े वाले ऊपर में है. तो इसके अलग अलग प्राइस है, 13,990 रुपीज़, जिसका दाम था 19,990 रुपीज़. और एक था 21,420 रुपीज़, उसका दाम आ गया है 14,990 रुपीज़. और एक था 22,850 रुपीज़, उसका दाम आ गया है 15,990 रुपीज़. सो इफ़ यू वॉन्ट टू वेक अप विद अ ब्राइट स्माइल इन द मॉर्निंग, खुश होकर अच्छे से. अब मैं इतना रिलैक्स होकर बात कर रही हूँ, यहाँ पर एक बच्चा है मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, उसको भी मज़ा आ रहा है मेरी बात सुनकर. वैसे ही जैसे कि आप जब सोने जाते हो, आप जब अपने बेड को टच करते हो, उस पर आप सर रखते हो, फिर आपको नींद आने लगती है, तो वैसे ही वाली फीलिंग आ रही है. इससे पहले कि मैं सो जाऊँ, मैं उठ जाती हूँ, थोड़ी देर में रेसेस की ओर बढ़ते हैं, और भागते भागते मैं फिर वापस आपको लेकर आऊँगी. बुले रूज, वी आर राइट हियर इन टेक वर्ल्ड.
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट.
3: टक टक बॉलीवुड.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: रेडियो मस्ती गाइस, यस यहाँ पर हम हैं लाइव फ्रॉम टेक वर्ल्ड. ये है फ्लैक रिटेल पार्क बुले रूज और मैं वेदिता आपके साथ हूँ. तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. लेट मी रिमाइंड यू कि यहाँ पर बहुत बहुत बहुत सारे फर्नीचर्स हैं जिस पे यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिलेगा. एंड मैं अभी एक सोफ़ा देख रही थी भैया, और ये एक सोफ़ा सेट है जहाँ पर आपको मिलेगा ये आट 49,990 रुपीज़ में. इसमें 30% ऑफ है क्योंकि इसका प्राइस था 71,420 रुपीज़. और ये सोफ़ा एकदम मेरे सामने में है. अभी थोड़ी देर पहले मैं इसमें बैठ रही थी, खेल रही थी. हाँ बिल्कुल, एंड बहुत ही कंफर्टेबल है. और ये जो सोफ़ा है ये आता है 2, 2+1 पर. एंड इसके बीचों बीच यहाँ पर जो राउंड टेबल है ये भी इस सेट को चार चांद लगाता है. मैं आपको बताऊँ कि हम लोग टेक वर्ल्ड में यहाँ पर चक्कर पे चक्कर काट रही हूँ. अभी तो मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर में हूँ, ऊपर तो अमीर तक मैं गई ही नहीं हूँ. लेकिन इसके अलावा जो हमारे फ्यूचर पेरेंट्स हैं उनके लिए तो ये जो मैं फर्नीचर अब बताने वाली हूँ ये इतना खूबसूरत. मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, यहाँ पर मैं एक कपल को देख रही हूँ, हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ, अभी अभी शादी हुई है. तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि भाई आने वाले दिनों में शायद उनको इस फर्नीचर की ज़रूरत पड़े. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड देयर स्माइल. Wow, happy married life to you. And देख रही हूँ अभी नई नबीली दुल्हन जो है फर्नीचर्स देख रही है. बात कर सकते हैं आपसे? ओके, हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: ऐशनवी.
2: ऐशनवी, हाय. आपका नाम?
4: अभिषेक.
2: एंड ऐशनवी, आपको शादी बहुत बहुत बधाई हो.
3: थैंक यू सो मच.
2: शादी लगता है अभी नई नई हुई है, एक हफ्ता हुआ?
3: नहीं, 30 days.
2: 30 days, वाओ. आपके हाथों में ये चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही है. अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, क्या देखने आए हैं?
3: बेड और कबोर्ड टू रिनोवेट आवर रूम.
2: वाओ, और यहाँ पर ये जो मेरे आंखों के सामने है ये बाद में आपको जरूरत पड़ेगी. मेक श्योर यू बाय दिस ओनली. एंड यस, तो आपको कैसा लगा फर्नीचर?
3: यस, देयर इज अ वेरी गुड प्रोमो हियर. We are very interested. Do come.
2: All right. तो आपको पता चल गया. देखिए यहाँ पर नई नबीली दुल्हन, उनको कहते हैं ना लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो लक्ष्मी ने यहाँ पे पैर रखे. और वो अगर आपको बता रही है कि यहाँ पर जो फर्नीचर्स है इसके दाम कम कर दिए गए हैं और ये जो प्रोमोज हैं बहुत बहुत अफोर्डेबल है, तो आप यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं. एंड बाय द वे, आपको यहाँ पर जो बाकी के जो फर्नीचर्स हैं, जो सोफ़ा है, आपको इसकी ज़रूरत है अभी या घर पर सब कुछ लगा दिया पहले? अभी आप रो रही हैं कि पहले क्यों खरीद लिया. देखा, मैंने बोला था. अभी ये पछता रही है कि यार शादी से पहले क्यों नहीं आए. तो जो लोग शादी से पहले यहाँ पर आ रहे हैं, मेक श्योर कि यहाँ पर हमें सुनने के बाद ज़रूर आइएगा. एक तो यहाँ पर फर्नीचर इतनी खूबसूरत है, और दूसरी यहाँ पर जो सेल लगी है इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज, यू आर वंडरफुल एंड ऑल द बेस्ट यू. गॉड ब्लेस यू. हाँ जी, ऑल राइट जी, थैंक यू. ओके जी, तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं थोड़ी देर में. और बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो हम अभी बात कर रहे थे रिक्लाइनर सोफ़ा की, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल सकता है. एक सिंगल टच ऑफ अ बटन एंड फिर उसके बाद यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं. ये जो रिक्लाइनर है आजकल लोग जो हैं अपने टीवी रूम पे लाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब टीवी देखते हो आप तो आपको यहाँ पर पैर जो है आपके कभी कभी सूजन हो जाती है, कमर में दर्द होने लगता है.

0: तो ये जो रिक्लाइनर है इस पे जब आप बैठते हो तो डेफिनेटली आप लोग इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम कुछ और जो यहाँ पर फर्नीचर्स है उसके बारे में बात करते हैं। एंड अभी सर्दी का मौसम है ना, आजकल सर्दी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तो मुझे ये भी लग रहा था कि हम लोग कहीं भाई स्विट्जरलैंड में तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये जो सर्दी है कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर एक हीटर एंटेना है जो कि ब्लैक स्टेनलेस स्टील में है, इसका दाम है 19,990 रुपीज़। तो जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जो लोग क्यूपिप में है, फॉरेस्ट साइड में है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो ये जो हीटर है इसको लगाने के बाद आप लोग एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको सर्दी नहीं लगेगी। ज़्यादातर लोग जो है अपने रेस्टोरेंट में लगाना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कुछ ओपन एयर होते हैं जहाँ पर लोग बाहर बैठना पसंद करते हैं। अब ठंडी में कैसे खाएंगे, 5 मिनट में तो उसका खाना ही ठंडा हो जाएगा। तो ये जो हीटर है आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं, आप इसको रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ और भी बहुत सारे कपल्स आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको किसी को सोफ़ा चाहिए, किसी को टेबल चाहिए, यही मौका है, कहते हैं ना मौके पे मारो चौका और बस मौके का उठाओ फ़ायदा। मिलते हैं थोड़ी देर में आपके साथ राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती लाइव फ्रॉम फ्लैक रिटेल पार्क बुलेऊज।
1: You're listening to RM2, Radio Masti.

0: are into
1: Radio Musti.
2: Hello guys, welcome to Radio Musti. We are live from Tech World. Exactly कहाँ पर Flack Retail Park, Boulay Rouge. और हम मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास एक छोटा सा टेरिस है जिसे आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, बहुत ही एक पीसफुल जगह बनाना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपको टेबल्स और चेयर्स चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बहुत से खूबसूरत टेबल्स और चेयर्स आपको मिल सकता है, चाहे दो लोगों के लिए हो, चाहे चार लोगों के लिए हो. स्क्वायर में भी आता है, राउंड में भी आता है, कलर्स में भी आते हैं, ग्रे में आता है, बेज में आता है, वाइट में आता है. तो ये जो टेबल्स हैं आप इसको लगा सकते हैं अपने टेरेस पे, अपने टेरेस को थोड़ा कवर कर सकते हैं और ये जो टेबल्स हैं आप वहाँ पे लगा सकते हैं शाम के वक्त. अभी सर्दी के मौसम में गरम गरम कॉफ़ी के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने का जो मज़ा आता है ना, कभी कभी हमारे दोस्त घर पे आ जाते हैं, कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आ जाते हैं, या तो फिर कभी कभी बच्चों के साथ मन करता है बैठकर कुछ बातें करने का, तो गर्मा गर्म पकौड़े कुछ गर्मा गर्म चाय के साथ बाहर बैठकर

बात करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम इसके बहाने आपका जो मोबाइल है थोड़ी देर के लिए आप उसको थोड़ा रेस्ट तो करने दोगे, वरना बाकी तो आजकल सारे लोग जो है मोबाइल के अंदर इस तरह से घुस गए हैं जैसे उनको कोई और दुनिया मिल गई है। तो इस मोबाइल से बाहर आकर अगर आप दूसरी दुनिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेक वर्ल्ड का कम्फर्ट, चाहे वो बाहर का जो टेबल हो, चाहे वो घर के अंदर का सोफा हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका लिविंग रूम हो, यहाँ पर आपको हर तरह का फर्नीचर मिल रहा है, अच्छे अच्छे प्राइस में मिल रहा है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो बेड जो डिज़ाइन है, जो कलर्स है, जिस तरह से इसको यहाँ पर सजाया गया है आप देखोगे, जिस तरह से यहाँ पे कंफर्टेबल मैट्रेस है, जिस तरह से यहाँ पर आपको कंफर्टेबल चेयर मिल सकता है आपके डाइनिंग रूम के लिए, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। कभी कभी होता है ना कि जब हम कुर्सी पे बैठते हैं हमें जब मुड़ना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उठना पड़ता है, चेयर को बाहर करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर बैठे बैठे आप घूम सकते हैं। जी हाँ, ये चेयर घूमता भी है, इस पे बैठे बैठे आप लेफ्ट राइट घूम सकते हैं और आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अभी कुछ और फर्नीचर्स की। तो हमने आपको बताया था ना कि जो सोफ़ा सेट है यहाँ पर बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल के हैं। तो सोफ़ा सेट जो है इसको आप अपने टीवी रूम पर लगा सकते हैं। आजकल हर किसी के घर में एक टीवी रूम होता है जहाँ पर वो कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं। तो अगर वहाँ पर आप रिक्लाइनर वाली सोफ़ा लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो सोफ़ा बैठे हैं आप उसको भी वहां पे लगा सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा ना कि आपको अगर नींद भी आ गई तो आपको पता है कि आपका आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, आप आराम से वहीं पे सो सकते हैं। बाकी जब सोने की बात चली है तो यहां पर हम बच्चों का जो बेड है वो देख रहे थे। लेट मी टेल यू कि ये इतना खूबसूरत है, किसी ने देखा नहीं और मैं चुपके से घुस के इसमें सो भी गई थी, नहीं सो नहीं गई थी, मैं देख रही थी कि कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो यहां पर दो नहीं बल्कि तीन मॉडल्स के यहां पर बेड है और बहुत बहुत खूबसूरत है। एक के ऊपर आप नेट लगा सकते हैं और बच्चा अपने आप को अंदर बहुत खूबसूरत से बहुत कूल फील करेगा। एक तो इस तरह से है जैसे एक छोटा सा हट है और ये जो है इस तरह से इनको इनके बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि बच्चा घिरे ना। और दूसरा जो है ये बिल्ट इन होता है एक छोटा सा, यानी कि एक छोटा सा यहाँ पर डेस्क भी है, यानी कि बच्चा जो है ये 14-15 साल तक इसको यूज़ कर सकता है। एंड इसके साथ इसका चेयर भी है और ये एक फुल मॉडल में आता है जहाँ पर इसका बेड और इसका छोटा सा जो टेबल है बिल्कुल ये बिल्ट इन है, यानी कि सेपरेटली नहीं है। आप इसको बाद में चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने में ये जितना खूबसूरत है। तो जितने भी फ्यूचर मम्मीज, जितने फ्यूचर पापाज हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आप एक राउंड यहाँ टेक वर्ल्ड में ज़रूर लगाइएगा। ट्रस्ट मी, आपका दिल आ जाएगा, आपको ये छोटे छोटे जो बेड्स हैं ना इनसे प्यार हो जाएगा। वैसे इतना भी छोटा नहीं है, एक के साथ नीचे एक और मैट्रेस भी लगा हुआ है, तो अगर कल को कोई आता भी है तो बच्चा जो है नीचे के मैट्रेस में खेल भी सकता है, आप उसको नीचे सुला भी सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स क्या होता है उनमें डर होता है कि बच्चे गिर ना जाए, तो नीचे का जो मैट्रेस है इसमें आप उनको सुला सकते हैं। ये अंदर, ये बिल्ट इन है, ये अंदर चला जाता है, उसको खोलते हो बच्चा इसी पर अगर सो गया फिर बच्चे को आप ऊपर डाल के इसको नीचे बंद कर सकते हैं और बच्चा जो है वो गिरेगा भी नहीं। तो इस तरह से ये जो बेड है कमाल का है। अभी अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो ये है बेड हाउस वाइट पाइन वुड जो कि है 13,080 रुपीज़। जी हाँ, इसका दाम था 18,690 रुपीज़, अभी आ गया है 13,080 रुपीज़ तक। तो ये जो बेड है मैं आपको बताऊँ ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है और दिखने में जितना क्यूट है इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे घर के अंदर एक छोटा सा घर, ठीक है। तो ये है, अभी हम कुछ और डिटेल्स के साथ आपके साथ फिर वापस मिलेंगे और कुछ और फर्नीचर्स के बारे में बात करेंगे। कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, वी आर लाइव फ्रॉम टेक वर्ल्ड। हम आज डिस्कवर कर रहे हैं इस वर्ल्ड को जहां पर आपको हर तरह के फर्नीचर्स मिल रहे हैं, वो भी सस्ते दाम में।

0: RM2 Radio Masti.
1: Well guys, thank you so much. You are listening to Radio Masti. Radio Masti पर हम हैं live from Boulay Rouge. और जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम हैं at Tech World. तो Tech World में जो हमारी जो products हैं इसको हम check कर रहे हैं. Now talking about some really beautiful furnitures. हमारा जो best seller है, मैं बताऊँ आपको, ये है एक dining table Novara. और ये वाइट सिंटरेड स्टोन मेटल लेग्स है इसके. और इसका जो प्राइस है, मैं आपको बताऊं, ये जो टेबल है इसका प्राइस है 7,000 rupees. और मैं आपको बताऊं कि ये जो चेयर है ये आता है 1,490 rupees का. तो ये जो टेबल है इसके साथ अगर आप इन चेयर्स को मैच करेंगे तो ये देखने में एक तो बहुत खूबसूरत है. और इसके जो चेयर्स है इसको आप अलग अलग कलर्स के ये जो टेबल है वाइट, इसके अलग अलग कलर्स के चेयर्स के साथ इसको मैच कर सकते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है. वेल, यहाँ बहुत सारी डाइनिंग टेबल्स हैं. जैसा मैंने कहा कि एक टेबल ऐसा है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं. हमारे घर में जब फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि भाई दूसरा टेबल ढूंढ के लाओ, फिर उसके लिए जगह बनाओ. जबकि ये जो टेबल है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, चार लोग हैं इसको बंद कर दो, जब 10 लोग आएंगे इसको खोल दो और बस. आजकल हमारे जो न्यू कपल्स हैं, जब वो अपना घर बना रहे हैं तो वो अपने किचन को एक नया लुक देना चाहते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, वो बार चेयर्स लगाते हैं. तो यहाँ पर पहले तो कुछ आता था, अभी वुडन हमारा जो है ना, एक सॉलिड टेक वर्ल्ड का जो हमारा चेयर है ये आता है 7,990 rupees में, जिसका दाम था 9,990 rupees. और ये एक राउंड टेबल है जो बहुत खूबसूरत है. और बाकी यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे चेयर्स मिलेंगे. इसमें आपको 30% ऑफ रहा है. वैसे हम बात करें तो यहाँ पर स्टूल भी हैं, जो बार स्टूल होते हैं ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने किचन में. अलग अलग मॉडल के अलग अलग ये जो डिज़ाइन है इसमें आता है. ऐसा करता है कि हम लोग भागते हुए अभी रेसेस की ओर बढ़ते हैं. मौसम जो है थोड़ा बरसाती हो रहा है, तो चलिए अभी हम आपको भगा के ले चलते हैं शॉट मॉस और फिर उसके बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती कुछ और अपडेट्स के साथ. अब की बारी हम यहाँ पे जो बॉस है उनसे बात करेंगे और उनसे जाने हमारे इस प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ मोर डिटेल्स. तो चलिए इसी के साथ रेसेस मिलते हैं थोड़ी देर में.
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
3: टक टक बॉलीवुड
2: रेडियो मस्ती
4: RM2 रेडियो मस्ती.
5: The time is brought to you by
6: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
5: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
7: Radio Musti.
8: North, South,
7: 103.5.
8: East, West,
7: 96.4.
8: Center,
7: 99.4.
0: RM2, Radio Musti.
7: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
9: Good afternoon, everyone. Check your time. Sham ke 4 baje hain. संदेह संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार. याचना
10: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. तेज और ठंड हवाएं आज सुबह से मॉरिशस के कई इलाकों में ठंड महसूस की जा रही है. तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा रही है. इसका कारण

एक जोरदार एंटी साइक्लोन है जो मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में पाया जा रहा है। देश में सोमवार सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरें और तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार के वक्त लहरें तटों तक भी पहुंच सकती हैं, खासकर दक्षिण और पश्चिम में।

0: फोरम का आयोजन किया गया। गणराज्य के राष्ट्रपति और केवल कला एवं संस्कृति मंत्री वहां उपस्थित रहे। देश की ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण और मरम्मत के लिए कई कदमों का ऐलान किया गया। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में भाग लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद दास सुरजवाली की मौजूदगी में ये परेड लगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्ष रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर और पवित्र प्रतिबद्धता है। विदेशी समाचारों में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या 600 पार कर गई है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज चौथे दिन बचाव अभियान जारी रखा गया। बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक त्रिशूली में बचाव अभियान में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं जो पर्यटक के रूप में वहां घूमने गए थे या फिर हिमालय की तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: qui court très rarement mal, même s'il est quelquefois battu. Et le voici.
1: सारे प्रमोशन के बारे में बताया है, इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, तो हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं एट फ्लैक रिटेल पार्क बुले रूज। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो प्रोमोज लगे हैं, सोफे के बारे में हमने बात कर ली। वैसे तो मैं नीचे नीचे ही घूम रही थी, ऊपर तो मैं गई नहीं थी। ऊपर गई तो पता चला कि ऊपर में एक नई दुनिया है, जहाँ पर इतने वराइटीज के सोफाज आपको मिलेंगे, इतने वराइटीज के बेड जो है आपको मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने जो छोटा सा टेरेस है उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, या आपका गार्डन है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भाई गार्डन में हमने फर्नीचर्स लगा दिया, बारिश हो गई तो भीग जाएगा, उसको कवर करना पड़ेगा, डोंट वरी, यहाँ पर ऐसे भी चीज़ें हैं जो आप अपने टेरेस में गार्डन में लगा सकते हैं। अगर बारिश भी पड़ती है तो कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर उसको ख़राब नहीं होने देंगे हम। और बाकी तो यही कहूँगी मैं आपसे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कब से मैं आपको यहाँ पर जो टेबल्स है इसके बारे में बता रही हूं, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये जो सोफाज हैं, ये जो रिक्लाइनर सोफा है जिसमें बैठकर आप सिनेमा का, वैसे सिनेमा में, सिनेमा घर में भी जब हम जाते हैं ना तो वहां पर भी हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, वहां पे जो चेयर्स होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो रिक्लाइनर है इस पे जब आप बैठते हो फिल्म देखने के लिए तो इसमें तो मजा ही आ जाता है। चलो छोड़ो, इस बात को छोड़ो, आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ आपको सोफा और बेड ही मिलता है, अरे गलत, यहाँ पर घर को डेकोरेट करने के लिए आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पर मैं कुकरी सेट भी देख रही हूँ, और मैं यहाँ पर सेरेमिक कप सेट देख रही हूँ जो बहुत खूबसूरत है। एक तो ये वाइट है, ऊपर से इसमें गोल्ड है, इसका जो इसके जो कलर्स है बहुत मैच कर रहा है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर खूबसूरत कैंडल्स भी हैं। लोग सोचते हैं कि भाई जब हम शादी में जाते हैं या बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको मिल सकता है ये खूबसूरत चीज़ें जो आप गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल्स। जी हाँ, यहाँ पर कैंडल होल्डर है जो तीन कलर्स में आता है, एक ग्रे है, एक बेज है, और यहाँ पे एक ग्रे कलर का है जो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो कैंडल्स हैं, आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कप सेट है, सेरामिक का कप सेट है, ये भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसका दाम था 1190 रुपीज़, अभी इसका दाम आ गया है 950 रुपीज़। व्हाट, 950 रुपीज़ ये वाला? वाव, दिस इज सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिन लोगों को प्लांट्स पसंद है लेकिन को लगता है कि भाई प्लांट्स घर पे डालेंगे तो पानी देगा कौन? आपको पता है कि आजकल जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, उनमें और असली में कोई फ़र्क नहीं होता, बस फ़र्क ये होता है कि आपको उसमें पानी डालना नहीं होता। एंड यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कैक्टस है जिसे मैं देख रही थी, एक्चुअली मैंने बोला कि भाई इनको, इन्होंने ये टेबल पर रखा है, अगर किसी ने गलती से टच कर लिया, अगर हर्ट हो गए तो, फिर बाद में पता चला ये नकली है। आप सोचो मैं धोखा खा सकती हूँ तो कोई भी धोखा खा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे फ्लावर्स मैं देख रही हूँ, ऑर्किड्स, माय गाइस, ऑर्किड्स, इतना असली लग रहा है ना ये ऑर्किड्स, आप इसे आज गिफ्ट भी दे सकते हैं या तो फिर आप अपने घर पे लगा सकते हैं थोड़ी सी जलेसी फैलाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे मैं कैक्टस देख रही हूँ, और अलग अलग प्लांट्स है जिसके नाम मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि प्लांट्स है और बहुत खूबसूरत है, जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या तो फिर आप इसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर जो हम लोग कारपेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बड़े से बड़े कारपेट हैं, यानी कि पूरा आपका रूम भी कवर कर सकता है। कुछ लोगों को बड़े कारपेट्स अच्छे लगते हैं, बड़े कारपेट्स के ऊपर वो लोग अपना सोफ़ा रखते हैं, फिर उसके बाद आपको चप्पल वप्पल पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, जो लोग नंगा पाँव जो है चलना पसंद करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक वार्डरोब देख रही हूँ जिनके 5 doors हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर आप लोग अपने सारे सामान रख सकते हैं। एंड होते हैं ना कभी कभी हमारे जो सर्दी के कपड़े होते हैं, गर्मी के कपड़े होते हैं, कभी कभी हम लोग जो बाकी के जो चीज़ें होती हैं जैसे सॉक्स होते हैं, ढूंढो तो एक नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, इसके अंदर आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। यही नहीं, कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जो आप सिर्फ विंटर में निकालते हैं, तो ये सामान जो है आप इसके अंदर भर करके इसको अपने किसी कोने में रख सकते हैं। इसका दाम ज़्यादा नहीं है, ये है 4,490 रुपीज़, जिसका दाम था

0: 8,990 rupees. अब सोचो ऑलमोस्ट आधा मिल गया आपको. तो ये सारे सामान हैं जो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं. और टेबल्स की तो बात ही मत करो, अलग अलग छोटे छोटे क्यूट क्यूट टेबल है जिसके दाम यहाँ पर मैं देख सकती हूँ. एक कॉफी टेबल है जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसका भी प्राइस था 6,990 rupees. इसका दाम आ गया है 4,890 rupees पर. और वहीं पे जो वार्डरोब है, अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमें बच्चों का यूनिफॉर्म आयरन करना पड़ता है, देखो हमें क्या ज़रूरी होता है, जब बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके जो यूनिफॉर्म है उसको संडे में सैटरडे में लोग क्या करते हैं, आयरन करके रख देते हैं. अब बच्चों का एक अगर अलग हो, उसके सॉक्स, उनके जो अंडरगार्मेंट्स हैं आप इसके अंदर रख सकते हैं, तो क्या होगा ना, आपने यूनिफॉर्म को प्रेस किया और इसके साथ हैंग कर दिया. ज़्यादा नहीं, इसका प्राइस है 4,490 rupees. ये एक हैंगिंग वार्डरोब है और साथ में इसके तीन ड्रॉवर्स हैं. ड्रॉवर्स में आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं और इसमें आप बच्चों का जो यूनिफॉर्म है, बच्चों का क्या, आप खुद के 5 दिन के कपड़े आयरन करके इसमें डाल सकते हैं, अपने ज़रूरी सामान इसमें डाल सकते हैं. आपको पता है कि बच्चों को सॉक्स की ज़रूरत है तो उनके वहाँ यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है, उनको सारी चीज़ें मिल सकती हैं एक साथ. तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो. तो अलग अलग यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जो वॉल मिरर्स हैं, लोग जो हैं अपने घर में, अपने लिविंग एरियाज में भी आईना लगाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल अलग अलग डिज़ाइन के आपको वो भी मिल सकते हैं. एंड मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी नज़रें हर जगह जा रही हैं, मेरी आंखें एक जगह रुक नहीं रही हैं. क्यों? क्योंकि चीज़ें ही कमाल के हैं यहाँ पर. तो आप भी अगर मेरी नज़र से देखो तो यहाँ पर आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओगे. ऐसा करो, आप सैटरडे का दिन है और यहाँ पर हम लोग जो हैं आपके लिए दरवाज़े खोले हुए हैं. आप लोगों का घर का काम काज ख़त्म हो गया होगा, आप रिलैक्स करने के लिए सोच रहे होंगे और साथ ही साथ सोच रहे हैं कि चलो भाई खाना नहीं बनाना, बाहर जाना है. तो अगर खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक नज़र आप आकर यहाँ डाल सकते हैं. एंड दरवाज़ा यहाँ पर कितने बजे तक हम लोग हैं, एट व्हाट टाइम वो गोना बी ओपन? 9 बजे. ओ माय गॉड, रात के 10 बजे तक. ओ लर, अच्छा जी 6 बजे. हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी हो गई, इन्होंने बोला नहीं बेटा 6 बजे, मेरे को आर सुन लिए. हाँ तो चलो 6 बजे तक दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आकर यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं. और जिन लोगों को घर को सजाने के लिए अगर आपको चाहिए एक वॉल माउंटेड फायरप्लेस हीटर, जी हाँ घर में हीटर लगाना चाहते हैं, तो ये देख के आपको लगेगा कि सच में यहाँ पर किसी ने एक्चुअली फायर जो है लगाया हुआ है और यहाँ पर जो फ्लेम्स हैं ऊपर आ रहे हैं. इसका दाम है 19,990 rupees. पहले इसका दाम था 24,990 rupees. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आप अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं या टीवी रूम में लगा सकते हैं. कर्शन्स की बात मत करो, हर कलर के, हर डिज़ाइन के, हर मॉडल के आपको मिल सकते हैं. इसको आप अपने सोफ़ा पर भी रख सकते हो, इसको अपने बेड पे भी रख सकते हो और ये लगेंगे एकदम कमाल के. तो चलिए इसी के साथ मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़ डू कम एंड हैव अ लुक, क्योंकि यहाँ पर हम आपको मौका दे रहे हैं, आप आकर जाने पहचाने कि भाई असली सेल क्या होता है, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स पे 10,000, 20,000, 30,000 तक का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है. सो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस एट टेक वर्ल्ड. वी आर लाइव ऑन रेडियो मस्ती फ्रॉम फ्लॉक रिटेल पार्क बुले रूज.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipia pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
1: RM2
3: Radio Mustang.

0: RM2
1: Radio Musti. Well, friends, you're listening to Radio Masti. We are live from Tech World. और यहाँ पर कहते हैं ना Tech World. यानी कि यहाँ पर जो furnitures आपको मिल रहे हैं कमाल के हैं. और इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो पता है एक चीज़ होती है क्वालिटी. और क्वालिटी जो है जब आप एक फर्नीचर को देखते हैं, उसको टच करते हैं और उसके साथ ना आपको फील होता है कि भाई ये है कुछ अलग चीज़. और देखने में तो कभी कभी कुछ चीज़ें सेम दिखती हैं, लेकिन अब जब किसी चीज़ को यहाँ पर टच करते हैं, उस पर बैठते हैं और जिस तरह से आप देखते हैं कि एकदम परफेक्ट लगता है, तो मेरे ख्याल से जब हम टेक वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वो वाली फीलिंग आपको आती है. एंड अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग आपके मूड के हिसाब से भी आपको चीज़ें मिल सकती है. इंसान जो होता है हर तरह से उसका मूड एक तरह नहीं रहता, कभी कभी उनका मूड बदल जाता है. वो कहता है कि भाई हमें कुछ ऐसा चाहिए जो अभी आजकल जो फैशन में है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो वो चाहिए जिससे हमें रॉयल टच वाली फीलिंग आए. कुछ लोग कहते हैं कि हमें चाहिए कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से हमें बिल्कुल सिंपल लगे, लेकिन हाँ लग्जरियस लगे, खूबसूरत लगे. तो हर एक मूड के हिसाब से आपको यहाँ पर फर्नीचर्स मिल सकते हैं. और लाइक आई सेड कि मेरा दिल तो बच्चों के इस बेड पे ही पड़ गया है. लगता है कि एक तो मैं उठा के ही ले जाऊँगी. अभी मम्मी को बोलना पड़ेगा, मम्मी मेरी बेड को चेंज कर दो, ये बच्चे वाला लगा दो. आई एम श्योर कि इसमें सोने से जो सुकून की नींद आएगी ना, ओ माई गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इतना कम्फर्टेबल लग रहा है ना. हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर टेबल की. तो लाइक आई सेड, कुछ लोग जो हैं जब ऑफिस में काम करते हैं, या कभी कभी कुछ लोगों का अपना ऑफिस होता है, आई एम नॉट टॉकिंग टू दोज जो काम पर जाते हैं, वहाँ पे तो अपने हिसाब से टेबल नहीं लगा सकते. लेकिन अगर आपका अपना कोई ऑफिस है और अगर आपको लगता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो काम कर रहे हैं और उनको थोड़ी मुश्किल होती है, हर कोई लंबा नहीं होता, कुछ लोग छोटे भी होते हैं मेरी तरह और टेबल को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल इस टेबल को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से. उसको अगर आपको करना है तो वो नीचे हो जाएगा, ऊपर करना है तो ऊपर हो जाएगा. बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. एंड साथ में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कारपेट्स की तो बहुत धूम मची हुई है और मैं सोच ही रही थी कि किस में बैठ के मैं अलादीन वाला फीलिंग फील करूं. और इतना स्मूथ, इतना कंफर्टेबल, इतना फ्लफी, हर तरह के कारपेट्स हैं भाई. और इतने बड़े बड़े हैं जो कि शायद आपके आधे रूम को तो पूरा कवर कर देगा. तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हैं, देख रहे हैं. और कुछ लोग यहाँ विंडो शॉपिंग के लिए भी आए हैं और यहाँ पर हमसे बस यही कह रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत हैं, ये बहुत खूबसूरत.

सकते हैं, महंगा होगा ना। फिर मैंने बोला आंटी महंगा नहीं है, आप अंदर जाके देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यहाँ पर सेल लगी है। तो सारे लोग जो है यहाँ पर आकर अपने अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चूज कर रहे हैं। यहाँ पर की जो कॉफ़ी टेबल्स हैं, एक कॉफ़ी टेबल आता है 3 सेट का, ये बहुत खूबसूरत है। यानी कि आप अगर यूज़ करना चाहो तो वक्त आने पे तीनों को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो 3 टेबल्स हैं ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक है, तो आप या तो फिर अगर जगह नहीं है तो तीनों को एक जगह रख सकते हैं, यानी कि तीनों को अंदर घुसा सकते हैं, और अगर जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल सकते हैं। ये था 12,900 रुपये, आ गया है अब 9,030 रुपये का, और इसमें एक सेट है यानी कि 3 कॉफ़ी टेबल एक साथ, जस्ट इमेजिन। और लकड़ी की तो पूछो नहीं, यहाँ पर जो टेबल है हम लोग कोने में या इन द मिडल लगाते हैं अपने लिविंग रूम में, जो सोफे के साथ रखते हैं, इतने कमाल के हैं, देखो तो बहुत लाइक आंखों को राहत आती है। चलो तो यहाँ पर हम लोग लैंप की बात करें तो मेरे बगल में ही एक इतना खूबसूरत सा लैंप है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैजिक चल रहा हो। मैजिक, आपने मैजिक देखी है? आपने कभी फूल को ऐसे लाइट से देखा है? नहीं ना। तो यहाँ पर एक ऐसा लैंप है जिसमें लाइट है, यानी कि एक स्टैंड है एक्चुअली। देखो तो आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पर एक फ्लावर है, लेकिन ये फ्लावर नहीं है, फ्लावर के अंदर लाइट है। और ये जो फ्लोर लैंप है, एकदम ये फैदर जैसे उसका एक टच देता है, एंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में जैसे लाइट आ रही है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको जो लैंप्स हैं वो भी मिल सकते हैं। हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं एट टेक वर्ल्ड, टेक वर्ल्ड जहाँ पर आपको मिलेगा बेड से ले के डाइनिंग सेट से ले के डाइनिंग टेबल से ले के सोफ़ा से ले के कबट से लेके कॉफ़ी टेबल से लेकर रिक्लाइनर सोफ़ा से लेके मैट्रेस से लेके यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कारपेट्स मिलेंगी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं भूल जाती हूँ ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं तो भूल जाती हूँ, लेकिन आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि हम लोग हैं एट टेक वर्ल्ड, ये हैं एट फ्लैक रिटेल पार्क बुले रूज, और आपके लिए दरवाजे खुले हैं 6 बजे तक, आप आकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दाम गलत लगा। मैंने कहा दाम गलत नहीं है, ये सेल लगा है। तो कुछ लोग आकर कहते नहीं ये सिर्फ एक ही चीज़ इसका दाम। मैंने कहा नहीं भाई, पूरा सेट है यहाँ पे। तो उनको यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर टेक वर्ल्ड ने इतना प्रोमो लगाया है। तो आपको अगर मौके का फ़ायदा उठाना है, मौका मिला है आपको, तो आइए मौके का फ़ायदा उठाइए। चलो भाई, अभी हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर हम आपको बाय बाय कहेंगे, लेकिन रेडियो मस्ती पर म्यूज़िक जारी है। हम अभी को और साथ में डोमिनिक को भी थैंक यू कहना चाहेंगे, और रोशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, वो हमारी टीम में है, हमारे साथ है, और यहाँ पर टेक वर्ल्ड में जितने भी स्टाफ्स हैं उन सबको थैंक यू सो मच गाइस, और पूरी टीम की तरफ से हम आपको कहेंगे थैंक यू। हमारे अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, लेकिन हम लोग सिर्फ रेडियो से जा रहे हैं, बाकी हमारी शॉपिंग अब शुरू होती है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग फ्रॉम टेक वर्ल्ड फ्लॉक रिटेल पार्क बुले रूज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक नज़र ज़रूर आएंगे यहां पर, एंड ट्रस्ट मी, आप यकीन कीजिए आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बैक टू योर स्टूडियो।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वाजिबा कमाल हो गया। ऐसे ऐसे गाने हम चलाएंगे आप लोगों के लिए कि आपसे मुंह से बस यही वर्ड निकलेगा कि वाजिब कमाल कर दिया। वेल, हम तो यही चाहते हैं कि बस आप ऐसे ही बैठे रहे और हमारे गीतों को एंजॉय करते रहे, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम बैठकर यहां से वहां तक का सफ़र आपके साथ तय करें और साथ में आपको बहुत सारा गिफ्ट देते रहे। चलिए, गिफ्ट से मुझे याद आया, आपको गिफ्ट देना है अभी के लिए। यस, वी आर प्लेइंग अ गेम विद यू आते ही, लेकिन इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना तो आपसे भूल गई मैं। वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यस यस, शाम के 4:35 हो चुके हैं। थैंक यू वेदिता एंड हंसनी, एंड वैसे अभी दिव्या की बारी है, तो चलिए हमारा और आपका साथ रहने वाला है शाम के 7 तक। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल म्यूजिकल जर्नी, एंड हमारा साथ जरूर देते रहिएगा। चलिए, यहाँ पर गेम हम खेल रहे हैं आपके साथ। अगर आपकी जीत होती है तो ऑफकोर्स विनर विल गेट 1 टिकट फॉर द कॉन्सर्ट जो होने वाला है 4 को, ऑफर्ड बाय इमीडिया। यस, 4 सितंबर 2026। तो आपको ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा जानकारी आपको हम बाद में देते रहेंगे, लेकिन इससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट इमीडिया इज ब्रिंगिंग टू मॉरिशस मुख्तार शाह द वॉइस ऑफ मुकेश फॉर 2 ऑन फ्राइडे 4th एंड संडे 6th सितंबर एट कुद ऑर्ट्स सेंटर। तो चलिए, जो जो लोग मुख्तार शाह को जानते हैं और उनकी आवाज़ में मुकेश साहब की एक झलक है, और अगर आप मुकेश साहब की भूले बिसरे यादों को एक बार फिर से जीना चाहते हैं, इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप हमारे साथ खेलिए एंड ट्राई टू विन दिस टिकट फॉर योरसेल्फ और मे बी फॉर समवन वेरी स्पेशल टू यू। तो चलिए, यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल है आपको, सिंपली हमें ये बताना है। यस, आपको सिंपली हमें ये बताना है कि जो गाना अभी आपने सुना, इसमें कौन सी एक्ट्रेस पिक्चराइज हुई थी। अभी अभी जो गाना आपने सुना, मेरी गोरी गोरी बाहें बाहों में आ जाना, आपको हमें बताना है कि इस गाने के अंदर कौन सी एक्ट्रेस पिक्चराइज हुई थी। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294। ऑल द वेरी बेस्ट।
0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल, देखा जाए तो बर्दाश्त के बारे में हमें इतना तो नहीं पता, लेकिन लेकिन आपने इतने पेशेंट से हमारा साथ दिया और वेट किया फॉर द राइट आंसर, थैंक यू सो मच। यस, हम खेल रहे हैं इमीडिया के साथ और हमने आपसे कहा था अगर आप हमारे साथ खेलते हैं और आपकी जीत होती है तो ऑफ कोर्स आपको मौका मिलेगा टू विन 1 and 2 टिकट फॉर द कॉन्सर्ट ऑन 4th September 2026 ऑफर्ड बाय इमीडिया। तो चलिए, यहाँ पर हमने सवाल किया था कि गाने को सुनने के बाद यू हैव टू टेल मी कि मूवी के अंदर कौन सी एक्ट्रेस पिक्चराइज हुई थी और गाना था मेरी गोरी गोरी बाहें बाहों में आ जाना। एंड इस मूवी के अंदर ऑफ कोर्स पिक्चराइज हुई थी द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस रम्या। यस, रम्या कृष्ण इज द राइट आंसर। और क्या लग रही थी इस मूवी के अंदर रम्या, और उनका पेयर अप गोविंदा के साथ किया गया था और जिस ह्यूमर के साथ बहुत ही प्यार से गोप है कह के बुलाती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। सो चलिए, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए, बट लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है विष्णु बिनिक ऑफ कास्टेल। Congratulations to you, Vishnu ji, and you are getting 1 and 2 ticket for the concert on 4th September 2026 offered by Imedia. And Imedia brings to Mauritius Mukhtar Shah, the voice of Mukesh, for 2 shows jo hone wala hai on Friday 4th and Sunday 6th September at Koda Arts Center. Aur aapko ye bhi bata dete hain ki Mukhtar Shah Ahmedabad se hain, Gujarat, India se, and he has been enthralling audiences worldwide with his Mukesh-like voice. Aur saath mein, Mukhtar Shah will perform the timeless melodies of the legendary singer, and music lovers will be treated to unforgettable masterpieces of India cinema from the 50s, 60s and 70s. Ye mauke baar baar nahi milte hain. So our reputed Mauritian co-singers wahan par bhi honge jo unke saath gaane wale hain, awaaz se awaaz milakar. Varsha Rani Bisesar and Vishal Mangru will sing alongside Mukhtar Shah, accompanied by our finest musicians under the musical direction of Vijay Munisamy. So, bas aapko nyota diya ja raha hai. MBC is inviting you to participate and win tickets for the show, jo aap already kar hi rahe hain. So, you are the lucky winner, Mr. Vishnu Binik. Aur aapko mauka milega to listen to most popular songs of Mukesh ji, like Main Pal Do Pal Ka Shayar Hoon, ya fir Dost Dost Na Raha, in the voice of Mukhtar Shah. So, once again, aapko mini mini congratulations, and our team will get back to you, Mr. Vishnu Binik, aapko ye batane ke liye ki how you are expected to receive this entry ticket. So once again, many many congratulations.
0: Music,
1: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to Radio Musty.
1: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vignes plus agréables avec un bon dipé à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui danse l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
2: Tamam Deals, il arrive coup de métrique. Pas croise, pas rêvé. Du 14 au 31 août, profite jusqu'à 50% discount. Oui, vous êtes bien attendez. Carreau, robinet et sanité à top qualité avec du rat, 50 tranquillité. Tamam Deals là, tamam même ça. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
3: Ce soir, les jackpots voient grand. Le Loto Plus affiche environ 12 millions de roupies et le Loto lui atteint approximativement 40 millions de roupies. 40 millions au Loto. Difficile de ne pas y penser. Nos réservoirs, eux, sont dans le rouge. Alors chaque goutte d'eau compte. Économisons l'eau.
4: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
5: Radio Musty.
6: Music
5: RM2 Radio Musty.
7: उफ तेरी अदा और शायद इसी अदाओं पे आपका दिल मर मिटता है और क्यों ना हो भाई जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए लाखों में क्या करोड़ों में एक होता है चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वक्त आप उतने ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं जितने प्यार से एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात करने आए हैं ऑलरेडी 5:11 हो चुके हैं बस हमने गारंटी दी है आपको और हमने वादा किया था कि यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल म्यूजिकल जर्नी टिल 7 PM और कुछ ऐसा ही करने का इरादा है विल कीप यू वेल एंटरटेन्ड एंड कीप एंजॉइंग द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, क्या बात है, क्या गाना था। आ आ आ आ ऐसे ऐसे गाने हम चलाएंगे आप लोगों के लिए कि आप गुनगुनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और साथ में कुछ ऐसे गाने भी हम लेकर आ रहे हैं जिनको सुनने के बाद आपके पैर भी थिरकने लग जाएंगे। वैसे एक्सक्यूज़ अगर आपको चाहिए, बहाने अगर आपको चाहिए डांस करने के लिए, तो हमारे गाने हैं। एंड ट्रस्ट मी, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट रीज़न ताकि आप हमेशा खुश रहें। एंड चलिए यहाँ पर कुछ खुशी की वजह आपके मैसेजेस भी बन रहे हैं जिनको देखकर हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बस यही सोच रहे हैं कि हम भी आपके लिए स्पेशल हैं। बस हमें याद करने के लिए दिल से शुक्रिया। नमस्ते सिस्टर। नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर अरशद। यू माय बेस्ट लाइफ पार्टनर एंड ट्रस्ट मी आई रियली लव यू नो मैटर हाउ फॉर यू आर ऑलवेज इन माय हार्ट फ्रॉम वाइफ रेबेका। एंड साथ में किसी ने हमें ये मैसेज भेजा है, हेलो नमस्ते प्यारी दिव्या, हेलो प्यारी सिटीना जी, कैसी हैं आप। नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू। एंड साथ में आप हमारी सुपर प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर लवली लेडीज अरुणा टीना रागिनी संजना including me, that's really sweet of you। and chaliye Tina ji, ye next gana goes out specially aapke naam bhi। aur saath mein aap kehti hain namaste radio masti team, next gana goes out specially for Geeta। aur Geeta ji, next gana goes out specially aapke naam aur saath mein aapke all friends ke naam। so chaliye iske sath hum badhenge kuch aur khoobsurat geeton ki aur, kuch 90s geet ke sath agar aap vibe karna chahte hain, so I guess this one will be the best।
0: music
1: tak-tak-tak RM2 radio masti।
3: raakh ke dher mein chalte hue sholon ko haath mat laga, chal jayegi।
4: naam mera Shabnam hai पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
5: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: All right, every Saturday की तरह आज भी हम कुछ फैशन टिप्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो आप अपने डेली रूटीन में इसको अप्लाई कर सकेंगे. सो अभी के लिए आपके साथ हम बात करेंगे आपके आउटफिट और जूतों के कॉम्बिनेशन के बारे में. आपको तो पता है ही कि हमेशा हम या तो कलर व्हील के बारे में बात करते रहते हैं टू मैच विद योर आउटफिट्स, कौन से कलर आपके पैंट एंड आपके शर्ट के साथ ज़्यादा मैच होता है, या फिर हम एक्सेसरीज जो आपके फेस स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आज हमने चूज किया टॉकिंग अबाउट आउटफिट्स एंड द शूज. आउटफिट और राइट शूज को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्टाइल आपके लिए एक स्टेटमेंट बन जाता है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आप का जो स्टाइल है ना वो लोगों पर एक इम्पैक्ट छोड़ता है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो अगर आप कभी भी वाइड लेग पैंट्स पहन रहे हैं, तो वाइड लेग पैंट्स के लिए आपको बल्कि स्नीकर्स नहीं पहनना है. यस, हमेशा याद रखिए, जब भी आपका वाइड लेग पैंट्स आप पहनना पसंद करेंगे, तो इसमें आपको हमेशा पॉइंटेड हील्स ही डालना है. पॉइंटेड हील्स या फिर स्लीक सैंडल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं. और ब्लेजर आउटफिट के लिए कभी भी आपने जीन्स डाला है और आज कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल आप ब्लेजर आउटफिट को डालना चाहते हैं, तो इसमें आपको लोफर्स डालना है. यस, लोफर्स या फिर किटन हील्स, इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्लासी. मैक्सी ड्रेस के लिए आपको चूज करना है स्ट्रैपी सैंडल्स या फिर वेजेस, और खुले हुए सैंडल्स मैक्सी ड्रेसेस में बहुत ही अच्छे लगते हैं. शॉर्ट्स आउटफिट के लिए आपको चूज करना है स्लाइड्स या फिर ब्लॉक हील सैंडल्स. लेगिंग्स लुक के लिए आपको चूज करना है चंकी स्नीकर्स या फिर एथलेटिक शूज. और इवनिंग गाउन के लिए ऑफ कोर्स आपको स्टिलेटोज या फिर ड्रेसी हील्स ही चूज करना है. अभी हम स्कर्ट के बारे में बात करेंगे. अगर आपको मिनी स्कर्ट डालना है, तो मिनी स्कर्ट का पेयर जो होता है, इट कॉम्प्लीमेंट्स बेटर विद चंकी स्नीकर्स, एंकल बूट्स, मेरी जेन फ्लैट्स, लोफर्स एंड स्ट्रैपी हील्स. अगर आपने पेंसिल डाला हुआ है नी लेंथ वाला स्कर्ट, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है विद पॉइंटेड पम्प्स, स्लिंग बैक हील्स, एंकल बूट्स, किटन हील्स एंड लोफर्स. और कभी भी आपने मिड काल्फ लेंथ वाले स्कर्ट्स डाली हैं, तो इट लुक्स बेस्ट विद स्लिंग बैक हील्स, ब्लॉक हील्स, एंकल बूट्स, मेरी जेन फ्लैट्स एंड पॉइंटेड फ्लैट्स. सो डेफिनेटली आप इन चीज़ों पर आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है. हमेशा हम कहते हैं ना कि हम कभी कभी तैयार होते हैं, बट वी डोंट नोटिस दीज पेटी थिंग्स. लेकिन ट्रस्ट में, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो आपका जो स्टाइलिंग है, जिस तरीके से आप अपने आप को स्टाइल करते हैं, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा.
0: Fashion tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Music,
1: Tak Tak Tak. RM2 Radio Musti.

0: चली गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे।
1: 57 ऑलरेडी एंड चलिए इस खूबसूरत गीत के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 6 बजे की समाचार बुलेटिन की ओर। मिलते हैं उस पार, तब तक के लिए बस एंजॉय कीजिए RM2 के खूबसूरत गाने।

0: on to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। नमस्कार और आदाब। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे आज पहले आज की सुर्खियां। वाकवा जिमखाना में 360 नए पुलिस अधिकारियों ने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। समारोह में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही नेशनल क्राइम एजेंसी बिल राष्ट्रसभा में पेश करेगा। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। इसमें शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग करने पर वाहन जब्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के कारण भारी तबाही में के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बुधवार को नेपाल तिब्बत सीमा पर आए इस संकट में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत। मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान में ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनिशिएटिव्स की पहल पर मॉरिशस की विरासत स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को समर्पित एक मंच आयोजित किया गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। इस शनिवार 360 नए पुलिस अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग के समापन पर पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। यह आधिकारिक समारोह वाकवा के जिमखाना में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और बड़ी संख्या में आए उनके परिवारजनों की उपस्थिति में संपन्न हुई। वाकवा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की

कि सरकार जल्द ही नेशनल क्राइम एजेंसी बिल राष्ट्रसभा में पेश करके पुलिस बिल में पूर्ण सुधार करने की योजना बना रही है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग किसी

0: लागू हैं। ये ऊंची लहरें मुख्य रूप से देश के दक्षिण पश्चिम तट को प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय सावधानी बरतने की मांग की है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में पेश है।
1: इसका असर खासतौर पर पश्चिम से दक्षिणी तट तक के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह से ही प्लीकॉम्फ्लाक से लेकर लिमोन तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस बीच समंदर में कुछ पर्यटक भी नजर आए। कुछ लहरें हैं, हम दूर समुद्र में नहीं जा रहे, गहरे समुद्र में जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, सावधान रहना चाहिए, खतरा हो सकता है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली तेज लहरें न केवल मॉरिशस बल्कि रोड्रिग्स में भी समुद्र की स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। इसी वजह से तेज समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो सोमवार तक लागू रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि उच्च ज्वार के समय बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है, खास रूप से पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में। हवाएं भी तेज हो रही हैं और झोंकों के साथ चल रही हैं। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
0: कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की डर्बन में आयोजित हालिया सडक शिखर सम्मेलन में भागीदारी के परिणामों पर विचार किया गया। मॉरिशस के प्रस्तावों में शामिल है मॉरिशस को एक इलाकाई डिजिटल और तकनीकी केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए डिजिटल एम्बेसी विलेज का निर्माण, साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए बढ़ा हुआ समर्थन। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनवरी 2025 में 8 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान करके सडक के भीतर मॉरिशस की वित्तीय स्थिति को नियमित करने की भी जानकारी दी। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में शराब, नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन को जब्त करने और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान है। इसमें रोड रेज को भी एक अपराध घोषित करने का प्रावधान है। इसके अलावा डेंजरस ड्राइविंग से मौत का कारण बनने और सार्वजनिक सड़क पर अवैध रेसिंग जैसे अपराधों के लिए भी अधिक कठोर दंड का प्रावधान इसमें किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कल इस पर गौर किया गया। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ साथ MITD प्रशिक्षण केंद्रों के कर्मचारियों के लिए स्कूल अवकाश घोषित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इसका जायजा लिया। कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मॉरिशस म्यूजियम्स काउंसिल के सहयोग से 18 सितंबर 2026 को सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती मनाने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उनकी स्थायी विरासत का सम्मान करना, उनके कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले एकता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को याद दिलाना तथा युवा पीढ़ी को मॉरिशस की पहचान के निर्माण और विकास में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनिशिएटिव्स की पहल पर आज सुबह मोका के महात्मा गांधी संस्थान में मॉरिशस की विरासत, स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को समर्पित एक मंच आयोजित किया गया, एक फोरम लगाया गया। इस कार्यक्रम में कई महानुभावों ने भाग लिया, जैसे गणराज्य के राष्ट्रपति तथा कला एवं संस्कृति मंत्री वहां उपस्थित रहे। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पुराने पत्थरों के पीछे कई आवाजें छिपी हैं, कई जिंदगियां, मुलाकातें, बिछड़ने की कहानियां और कभी कभी ऐसे जख्म भी जो पीढ़ियों से चली आई हैं। मॉरिशस में ये निशान कई अलग अलग स्मृतियों से बनी एक साझा कहानी बयान करते हैं। ऐसी ही ऐतिहासिक स्मृति पर आधारित देश के ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों पर ये फोरम आयोजित किया गया। उद्देश्य इन धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विचार करना कि अलग अलग इतिहासों को आने वाली पीढ़ियों तक किस तरह पहुंचाया जाए। गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा, कहते हैं अलग अलग जहाज़ों में आए, अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन आज सभी एक ही जहाज़ में हैं, सभी को साथ में मिलकर पतवार चलाना

0: हैं, ऐसे स्थल हैं जिसकी बदौलत हमें धरोहर में प्राप्त समाज को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और साझा समाज के निर्माण पर चिंतन किया जा सकेगा भावी पीढ़ी के लिए। इस विचार विमर्श के साथ कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेमोन के सांस्कृतिक परिदृश्य के पुनर्वास के लिए 3 वर्षों में 124 मिलियन रुपए और म्यूबर्ग के राष्ट्रीय इतिहास म्यूजियम के लिए 100 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे 100 मेमोरियल सेंटर को भी जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। मंत्री महेंद्र गुंडिया ने कहा, मंत्रालय इन ऐतिहासिक स्थलों के रक्षा के लिए काम कर रहा है। कार्य की प्रगति के वास्ते विशेषज्ञों की भी मदद मिलती है, उनकी रिपोर्ट का इंतजार है ताकि आगे बढ़ सके। इन संरक्षण परियोजनाओं के पीछे उद्देश्य इस ऐतिहासिक स्मृति को जीवंत बनाए रखना है। एक बहुआयामी स्मृति है जो अलग अलग इतिहासों और समुदायों से मिलकर बनी है, जिसने मिलकर मॉरिशस के निर्माण में योगदान दिया है।
1: मॉरिशस से 415 किलोमीटर उत्तर में स्थित सेंट-मार्टिन में देश के बाकी हिस्सों के साथ संवाद करना कभी भी आसान नहीं रहा है और अब तक वहाँ काम करने वाले लोग मुख्य रूप से रेडियो और सैटेलाइट टेलीफोन के जरिए ही अपने परिवार वालों से संपर्क कर सकते थे और इंटरनेट कनेक्शन अब सुरक्षा बलों और मछली पकड़ने के ऑपरेटरों के दैनिक जीवन को आसान बना रहा है। सरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: सैंट-मार्टिन में लंबे समय तक सैटेलाइट फोन और रेडियो ही मॉरिशस से संपर्क में रहने का मुख्य साधन रहा है। ये उपकरण अटोल पर काम करने वाले लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन महंगे होने के साथ साथ इनकी सुविधाएं भी सीमित हैं। ऐसे में इंटरनेट कनेक्शन की शुरुआत ने पूरी स्थिति बदल दी। इस परियोजना के लिए टेंडर जीतने वाली कंपनी एमटेल अब सैंट-मार्टिन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अटोल पर रहने और काम करने वाले लोगों ने इसे पहले ही एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में स्वागत किया।
2: Ce qui s'est passé maintenant, c'est vraiment très important.
0: राफेल फिशिंग कंपनी के बेथ्रॉन बुले ने कहा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार जब नहीं होता तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए दूरदराज कंपनी का प्रबंधन तभी बेहतर होगा जब जान पाएंगे कि क्या हो रहा है।
3: Face beaucoup moins de difficultés dans les passés, surtout quand il y a search and rescue opérations qui nous tiennent là-bas.
0: Vishwanath Virasomi ne kaha, विगत में कई कठिनाइयों हुई राहत ऑपरेशन के दौरान संदेश पहुंचाने में और रिपोर्ट भेजने में भी। वहां काम करने वाले लोगों की ज़रूरतों से बढ़कर ये नया कनेक्शन अधिक समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है, खासकर गणराज्य के सबसे दूरदराज इलाकों के लिए। मंत्री अविनाश राम टोहल ने कहा, अब सैंट-मार्टिन को भी कनेक्ट किया गया है लियो टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी लो ऑर्बिट सैटेलाइट। इसकी लागत कम है, कनेक्शन भी ज्यादा शीघ्र है।
4: Vous êtes aussi qu'à contacter votre famille.
5: Après qu'il finit faire connecter à Galega, d'aller connecter.
0: Tesarajan Pillachidambaram ne kaha, Agalega ke baad Rafael Tapu aur Sebondo ko jod rahe hain sabhi Mauritian, chahe jis bhi tapu par ho connectivity ka adhikar rakhte hain। एमटेल के लिए भी ये परियोजना मुख्य आबादी वाले क्षेत्रों से बढ़कर कनेक्टिविटी का विस्तार करने और गणराज्य के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के और करीब लाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
6: I think MTEL has a mission.
0: मौसिलो आलिमान ने कहा, हमारा मिशन इस कनेक्शन को स्थापित करना ताकि सभी इससे जुड़ सके, व्यापार, मनोरंजन आदि के लिए। समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और स्थापना का काम शुरू हो गया है। इस तरह सैंट-मार्टिन में मॉरिशस गणराज्य की कनेक्टिविटी के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
1: ऑटिज्म के प्रति जागरूक करना, जानकारी देना और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलना है। ईस्टर्न वेलफेयर एसोसिएशन फॉर डिजेबल्ड ने आज सुबह फ्लैक में इसी उद्देश्य को समर्पित एक मार्च का आयोजन किया। ये उचित सहायता और मार्गदर्शन के महत्व की याद दिलाने का एक अवसर था, साथ ही उन परिवारों को अपनी बात रखने का मंच देना

0: था जो इस वास्तविकता को हर दिन जीते थे। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे, इस शनिवार 360 नए पुलिस अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग के समापन पर पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। ये औपचारिक समारोह वाक्वा के जिमखाना में लगा। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: ये गर्व के साथ अपनी नई वर्दी पहने हुए हैं ये युवा रिक्रूट 10 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्हें शारीरिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि पुलिस सेवा में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए वे जरूरी कौशल और क्षमताएं हासिल कर सकें। केवल 20 साल की उम्र में इस युवा रिक्रूट को अपनी बैच का सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट चुना गया है। कोई राज की बात नहीं, इसके लिए केवल कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी और त्याग की आवश्यकता है। ये एक नेक पेशा है जहां हम पुलिस बल में हर रोज देश व जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। 360 युवा महिला और पुरुष रिक्रूटों ने प्रधानमंत्री के साथ साथ पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आधिकारिक रूप से परेड की। ये प्रदर्शन उन विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में से एक था जिनसे इन रिक्रूटों को गुजरना पड़ा। ये वर्दी मेरे त्याग को दर्शाता है जिससे मैं यहाँ खड़ी हूँ। प्रशिक्षण में हमें अनुशासित होना सिखाया गया जिससे हम जनता की सेवा कर सकें। ये एक पारामिलिटरी प्रशिक्षण है जिससे मेरे चरित्र को दृढ़ बनाया गया है और मानसिक शारीरिक रूप से मैं प्रशस्त और अनुशासित भी बना हूँ। अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध ये अधिकारी सबसे पहले देश और जनता की सेवा करना चाहती हैं। पुलिस एक नेक पेशा है, हम समाज की सेवा करते हैं, जनता के संपर्क में होते हुए जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। बचपन से मैं एक पुलिस अफसर बनना चाहता था, देश और जनता की सेवा करना चाहता था तथा मेरे दादा जो एक पूर्व ACP थे उनसे मैं प्रेरित हुआ हूँ। गर्व के इस पल को उन्होंने अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने दूर रहकर भी हमेशा उनका समर्थन किया। 10 महीने दूर रहे, ऐसा पहली बार हुआ कि हम इतने लंबे अरसे के लिए दूर रहे, पर ये भी समझ गया कि एक बार पुलिस फोर्स में कदम रखना मतलब सब कुछ बदल जाता है। इसका हौसला बढ़ाया गया, बहुत सलाह दिया, फिर इसने अपना रास्ता खुद तय किया। पूरे ट्रेनिंग में इसका समर्थन किया हमने, माँ बाप भाई बहन सभी का साथ मिला। अब ये नए रिक्रूट अपनी अपनी यूनिट में शामिल होंगे और अपने प्रशिक्षण के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। इस बार वास्तविक परिस्थितियों में काम करते हुए वे अपने अनुभव और कौशल को और मजबूत करेंगे।
0: और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें नेपाल तिब्बत सीमा पर आए विनाशकारी अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या आज 600 पार कर गई है और करीब 2400 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें कई विदेशी भी शामिल हैं जो वहां पर पर्यटन के लिए या फिर हिमाचल में तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे और अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए 4 से 5 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है जो उसकी अर्थव्यवस्था का 10वां हिस्सा है। इस आपदा के बाद भारत 62 टन आपातकालीन सहायता पहुंचाने वाला पहला प्रमुख देश बना। चले जानते हैं मौसम का हाल। देश में सोमवार 10 बजे तक ऊंची लहरों और तेज़ हवाओं की चेतावनी बरकरार रखी जा रही है। इसके अलावा मस्कलिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज़ हवाएं और ठंडी हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। कल दिन के दौरान भी मौसम बरसाती रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15, अधिकतम 17 से 20। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर में खासकर दक्षिण पश्चिम में 4 से

6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों तथा तटों पर भी न जाने की मांग की जाती है, खासकर ऊंचे ज्वार के समय, और हवा भी तेज रहेगी। यहाँ वहाँ उड़ती चीज़ों से बचने, ऊंचाई वाली जगहों पर काम करने से बचने और सड़कों पर क्रॉस विंड्स के कारण ज़्यादा सतर्कता बरतने की मांग की जाती है। कल सुबह सूर्योदय 6:20 पर, शाम को सूर्यास्त 6 बजे होगा।

देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर शिव का साथ रहा। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: शोक समाचार सुनिए। नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल में, नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सुकिया जीवलाल, श्रीमती सुकिया जीवलाल पैदाशी नाम छतू और जो नुएली के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 2 PM। मिस्यू लीन लालुई कैथोबोन में, मोंसेयर लीन लालुइज कैथोबोन में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड की श्रीमती आनी रागू, श्रीमती आनी रागू पैदाशी नाम लक्ष्मण और जो आनी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:30 लाशा पेलो दौंत दिलियन सन सब बासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM। मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश में, मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती एलामा रामिया, श्रीमती एलामा रामिया जो कमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शुमे माशिन पालमा कैथोबोन में, शुमे माशिन पालमा कैथोबोन में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री कुपुसामी मामुंजी, श्री कुपुसामी मामुंजी जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे मोगा पिचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में, आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुलारी सिबालक, श्रीमती दुलारी सिबालक जो मैडम रोजी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनके मकान आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 7 इमाम मुस्तफ़ा अदमद स्ट्रीट कॉयलोफ पोटवी में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शिंगफू यिपुन सन, मिसिज शिंगफू यिपुन सन पैदाशी नाम लाम चान की और जो आफुक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी गुजर गई है। उनका जनाजा, उनका ताबूत कल दिन के 1 बजे लाशा पेलो दौंत दे मोरा पिचित रिविया से उठाकर दफनाने के लिए शिबेल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चलिए जी, एक बार फिर से फाइनली हमारी और आपकी मुलाकात हो ही गई है। ऑलरेडी 6:37 एंड एक बार फिर से आप सभी का हम वार्म वेलकम कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है हमारी और आपके बीच में, इट्स ओनली बस लेस दैन 30 मिनट्स। एंड ट्रस्ट मी, जब अच्छे गाने चलते हैं ना, एक घंटा क्या, दो घंटे तीन घंटे भी बहुत ही कम लगने लग जाते हैं। अभी तो 30 मिनट से कम वक्त है हमारे बीच, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सके हम खूबसूरत गीतों को समेटने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। चले बढ़ते हैं आपके खूबसूरत मैसेजेस की ओर। नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर बदवक विदेशी, एनी गाना आपने मांगा है, बिल्कुल सब गाने आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे। यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, हेलो RM2 टीम, अ सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड पुष्कर, वो कुहाश टोल हिज कलीग्स ऑफ ऑप्स रूम पुलिस स्टेशन। और चलिए यहाँ पर आप कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो तुम। थैंक यू फॉर बीइंग माय पार्टनर, माय बेस्ट फ्रेंड एंड द लव ऑफ माय लाइफ। फ्रॉम वाइफ दिशा टू ऑल किरोधर एंड गुदी फैमिली ऑफ कॉटेज हविया जोंपा, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत सारा

0: एंड बो कुराज। आई नमस्ते जी, अनुषा वर्सेस यमील फॉर अ साइड कनेक्टेड है हमारे साथ। ब्यूटीफुल गाना हो जाए आपके पति के लिए विमल, स्वीट बेटी परी एंड मासी के पास है अभी गुडलैंड्स में और उनकी दोस्त हैं, यस अनुषा के दोस्त हैं पूनम, चाचा अनिल, मालदिनी एंड आपके बॉस है ऋषि, सभी RM2 टीम के लिए और मेरी फैमिली के लिए। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर।
1: म्यूजिक RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक चटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: डेलिशिया
3: व्हाट्स इन अ वन टाइम विद यू

6:55 हो चुके हैं और चलिए इसी खूबसूरत धमाकेदार गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको इनसे फैंस ऑफ विकास, तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jamka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: रात के साढ़े बजकर चार मिनट और बीस सेकंड 7 to 9 यानी झंकार बीच जिसमें होता है खेल और संगीत का अद्भुत संगम अद्भुत मिलन। मैं हूं विकास और हूं आपके साथ रात के 9 बजे तक एज यूजुअल सैटरडे इवनिंग 7 to 9 झंकार बीच। लिवरपूल फिर हारते हारते बच गया किंतु ब्रैडली बाकुला फाइनली आ गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का दूसरा सप्ताह बड़े दमदार तरीके से आरंभ हुआ विद लॉट्स ऑफ हैपनिंग। कल से टेनिस में यूएस ओपन प्रतियोगिता शुरू, क्रिकेट में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान लाइमलाइट में आ गया है। यह झंकार बीट्स जहां जोश है, जुनून है और जीत की उड़ान है। नंबर भी वही है 5499-1294-5499-1294। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: मैदान का रोमांच, संगीत की मस्ती, हर धड़कन में जोश, हर सुर में जुनून, ऐसा ही होता है झंकार बीच में। एवरी सैटरडे इवनिंग रात 7 से 9 के बीच हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात। इस समय रात के 7:16 हो चुके हैं और लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स इंग्लिश प्रीमियर लीग रिजल्ट्स। और बता दें कि आज शाम फिर लिवरपूल के लाल ड्रॉ मैच कर गए। पहले सप्ताह में एक पहला मैच ड्रॉ गया, सेकंड वीक रनिंग, और दूसरा मैच भी आज ड्रॉ ही गया, यानी लिवरपूल 2 नॉटिंघम फॉरेस्ट 2। दो बार द रेड्स केम फ्रॉम बिहाइंड एंड दे वर चेसिंग, यानी अपनी ही गुफा में, अपने ही शहर में, अपने ही लोगों के सामने उन्हें झेलना पड़ रहा है। सो एक पहला गोल बना लिवरपूल ने नहीं बल्कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने स्कोर किया ट्वाइस। एंडोये का एक पहला गोल खेल के 24वें मिनट पर, उसके बाद अलेक्जेंडर इसाक का एक इक्वलाइजर, वो भी केवल 60th मिनट पर जाकर। एंड देन अगेन मोगान गिब्स वाइट का एक गोल पेनाल्टी पर, और 82nd मिनट पर विक्टर मुनोज अगेन ऑन टारगेट फॉर लिवरपूल। इट्स फाइनली लिवरपूल 2 नॉटिंघम फॉरेस्ट 2। गत सप्ताह भी मैच ड्रॉ गया था, सो नॉट हैपनिंग फॉर लिवरपूल। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ब्रैडले बाकुला आ गया है 123 मिलियन पाउंड में। बात करेंगे पर बता दें कि इस समय जो दो मैच खेले जा रहे हैं उनमें बोर्नमुथ इज लीडिंग बाय 1-0 अगेंस्ट एवर्टन। बोर्नमुथ 1 एवर्टन 0, गोल कर्टेसी ऑफ स्कॉट खेल के 41वें मिनट पर। एंड और दूसरा मैच ड्रॉ चल रहा है, इट्स कोवेंट्रो सिटी 0 हल सिटी 0 आज रात 8:30 बजे। तो तेनाम हॉस्पिटल का मुकाबला, हॉट मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से होगा। सो इतने सारे मैच आज प्रीमियर लीग में, बाकी सभी कल खेले जाएंगे। कल के भी फिक्चर्स आप सुन ही लीजिए। कल शाम 5 बजे चेल्सी वर्सेस ब्राइटन एंड होव एल्बियन, फिर लीड्स यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, सन्डरलैंड का मुकाबला कल शाम 5 बजे फुलहम से, और कल रात 7:30 बजे 7:30 PM नॉट टू मिस मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस इप्सविच टाउन। 5499-1294-5499-1294 पर मैसेज भेजते रहिए। और कमिंग नेक्स्ट ब्रैडली बाकुला टू लिवरपूल, और कौन कौन आएगा, कौन जाएगा, सुनते रहिए

0: दिल में है जुनून और आंखों में सपने। वेलकम टू द अल्टीमेट वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक। हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2 Radio Musti.
3: उस राज को खोलने की कोशिश करते हैं इस झंकार बीच में. सो राज न रहा, ब्रैडली बाकुला आ गया है लिवरपूल में. इतने सारे महीनों तक कह सकते हैं, महीनों की कोशिशों के बाद मई 2026 से ब्रैडली बाकुला ने ऐलान कर लिया था कि वो लिवरपूल में आना चाहता है वर्ल्ड कप से ही, लेकिन बात न बन पाई थी. लेकिन अंततः फाइनली अब जाकर आज सुबह तक ये खबर सामने आई. लगभग ये लगभग नहीं बल्कि पक्का समाचार है, 123 मिलियन पाउंड में ब्रैडली बाकुला और लिवरपूल के बीच एक सहमति बन गई है. लिवरपूल और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच फॉर द फॉरवर्ड ब्रैडली बाकुला, जो केवल 23 साल का है और बहुत जल्द वो कम से कम 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेगा. इस वीकेंड के दौरान कल तक उसको एनफील्ड में आ जाना चाहिए एक मेडिकल पूरा करने के लिए. उसके बाद अगले सप्ताह से शायद वो खेल भी जाए. सो 23-year-old इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए मेडिकल दिस वीकेंड बिफोर साइनिंग ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एट एनफील्ड. हालांकि वो राइट फुटेड है, ही प्रीफर्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पर खिलाड़ी खेलता था कुडी गैक्पो, उसका भविष्य लिवरपूल में अब असमंजस में पड़ गया है. इसीलिए शायद कुडी गैक्पो को पिछले 2 मैचों से राइट विंग में खिलवाया जा रहा है. कहीं वो रह जाए तो उसके लिए भी जगह होनी चाहिए. सो कुडी गैक्पो के लिए टोटनहम हॉटस्पर मैनचेस्टर सिटी बाहें फैलाए हुए हैं. कब वो हाँ करे तो वे उनको ला दे अपनी टीम में. एंड लिवरपूल ब्रैडली बाकुला के बाद यानकुबा मिंते और इस्माइल असाओ पर भी अपनी नज़र गड़ाई हुई है, लेकिन बात नहीं बन पा रही. वहां पर भी 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा लिवरपूल देना नहीं चाहता और 50 मिलियन पाउंड से कम न तो ब्राइटन न तो क्रिस्टल पैलेस लेना भी चाहते हैं. सो इट हैज हैपेंड फाइनली, ब्रैडली बाकुला टू लिवरपूल. बता दें कि अभी साल 2023 में ही 2023 में वो लियों से पेरिस सेंट जर्मेन में गया था 38.5 मिलियन पाउंड में ही. और 2 सालों में उसका दाम कितना बढ़ गया, बस कुछ हिट्स, कुछ सक्सेस, कुछ सफलताएं, 3 लीग टाइटल, 2 चैंपियंस लीग टाइटल, फ्रेंच कप 2 बार जीता, एज वेल एज यूएफए सुपर कप एंड द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब कप. इतना सब मिलाकर उसका दाम 38.5 मिलियन पाउंड से 123 मिलियन पाउंड हो गया है. वेलकम टू लिवरपूल, ब्रैडली बाकुला.

And this one specially for Girish Harlol. अगला गीत आपके लिए. थैंक यू जुड़ने के लिए और चुनने के लिए. दिस इज योर रेडियो, 24 घंटे आपकी सेवा में. मैसेज ऑन 5499-1294. हाय बेटी,

फंटास्टिक सॉन्ग, यादें याद आती हैं, बस बातें भूल जाते हैं. Going to wedding, will miss this program. Regards from whole family, Harsh, Preet, Parmita, Betty and Praveen Siu from Petit Raffray. और ये एक और मैसेज है 54991294549994 एक दो नौ चार पे कमिंग फ्रॉम वी आर हम अपने अपनी राह पे हैं टू वेडिंग हल्दी ऑफ पूजा आज बेले या अगला गीत जो आपके हस्बैंड राजीव के लिए आपकी बेटी काइना एंड सोन रिवान हल्दी विधि में आप लोग जा रहे हैं तो राहों में है रौनक दिल में है उमंग आज सजेंगे रिश्ते बजेगी प्यार की तरंग गाड़ी धीरे चलाइए सफर रहे शानदार विद रेडियो मस्ती और M2.

ठंड भी है और गर्मी भी है, मौसम खराब है, बुखार भी चढ़ा हुआ है, संगीत का बुखार, स्पोर्ट्स का बुखार, ऑल इन वन एंड वन फॉर ऑल, झंकार बीट्स आपके लिए सैटरडे

0: night 7 to 9.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
0: So it's वार्म अप टाइम. अभी अभी प्रीमियर लीग शुरू हुई है. कल सेकंड वीक का पहला मैच आरंभ हुआ जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने अपना तेवर दिखाया, अपनी पूरी ताकत दिखाई, क्रिस्टल पैलेस को एवे जाकर 4-1 से हराकर. एर्लिंग हैलैंड अगेन ऑन टारगेट, दो गोल कल उसने स्कोर किया और रॉयन शेकी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, उसने भी दो गोल बनाए और एंजो मारिस का कोच ने उसकी खूब तारीफ भी की. रॉयन शेकी जो है ही इज डूइंग रियली वेल और इस तरह रॉयन शेकी और एर्लिंग हैलैंड की जो जोड़ी है वो शायद अच्छा रंग लाएगी. एंड हैलैंड लास्ट सीजन वो लीडिंग स्कोरर था विद 27 लीग गोल्स. कल उसने दो गोल स्कोर किए एंड रॉयन शेकी डबल्ड द लीड एंड उसके दो गोल जो हैं कमाल के गोल रहे. अब देखना है कि आने वाले मैचों में और क्या क्या ये लोग करते हैं. सो बता दें कि आज इस समय जो दो मैच खेले जा रहे हैं उसमें उनमें बोर्नमुथ 1-0 से लीड कर रही है और अभी अभी हल सिटी ने गोल स्कोर किया है. कोवेंट्री 0 हल सिटी 1, गोल कर्तेसी ऑफ मिला खेल के 82nd पर. एंड फिलहाल खेल का ये 86th minute बींग प्लेड. कोवेंट्री सिटी 0 हल सिटी 1, बोर्नमुथ 1 एवर्टन 0. यानी एवर्टन की द टॉफीज की हार हो रही है. बोर्नमुथ के लिए गोल स्कोर किया स्कॉट ने 41st minute पर. एंड रात 7:30 भूलेगा नहीं, रात 8:30 आज एक धमाकेदार मुकाबला होगा, टोटनहम हॉटस्पर वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड. सो टोटनहम हॉटस्पर अब गैकपो के पीछे पड़ा हुआ है. क्या कोडी गैकपो लिवरपूल को छोड़कर जाएगा टोटनहम में या फिर न्यूकासल यूनाइटेड में? मैनचेस्टर सिटी भी उसकी तलाश में है. यदि ब्रैडली बाकुला तो आ ही गया है, एक और विंगर की तलाश है ऑन द राइट विंग. आकर यदि वो भी आ जाए तो कोडी गैकपो के लिए खतरा. बट ही इज प्लेइंग रियल गुड फुटबॉल. आज भी कोडी गैकपो का फुटबॉल काफ़ी अच्छा रहा और लिवरपूल जो है अभी भी गोदाज में है. बट आई फील डिफेंस थोड़ा बहुत संभल चुका है, मिडफील्ड में अभी भी गड़बड़ी है और यदि अटैक लीसल रहा, जानलेवा रहा तो पीछे जो है आराम से खेलेंगे. सो देखते हैं आगे आगे होता है क्या.
2: झंकार बीट्स, RM2 रेडियो मस्ती.
1: झंकार बीट्स.
0: एबेग्रुन हिट्स और रेडियो मस्ती.

0: किमले कूपिना फिर आ गई।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
0: जी हाँ, टू ऑफ ब्रिटेन जीतने के बाद, फतेह हासिल करने के बाद, आज शनिवार से फिर किम लेकू पिना फ्रांस में क्लासिक लोरियन प्लुए में भाग ले रही है और ये भी दुनिया के सबसे महान साइकिलिंग प्रतियोगिता में से एक है और वहाँ पर जाकर हमारे मॉरिशन चैंपियन मॉरिशस का नाम फिर से रोशन करने की कोशिश करेगी। सो हैट्स ऑफ टू यू किम लेकू पिना, जो हर वक्त, हर समय, हर सेगन मॉरिशस को आगे रखकर साइकिलिंग करती हैं और कितना फ़र्क है, कितना हम लोग गर्व करते हैं कि एक मॉरिशस की एक नागरिक, एक साइकिलिस्ट दुनिया की समम चोटी पर जाकर मॉरिशस का नाम रोशन करे। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड दिस वन टू यू ऑल। 5499-1294-5499-1294 पे वी स्टिल हैव वन मोर आवर टू गो, इसलिए स्टे ट्यून टू रेडियो मस्ती।
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: अच्छा, फुल टाइम रिजल्ट, बोर्नमुथ 1 एवर्टन 1, फाइनली इट्स ए ड्रॉ, और कोवेंट्री 0 हल सिटी

सुपर लीग के तीन मैच आज समाप्त हो गए. पहले मैच में आज लिवरपूल ने अपना मैच ड्रॉ किया विद नॉटिंघम फॉरेस्ट. लिवरपूल 2 नॉटिंघम फॉरेस्ट 2. बोर्नमुथ 1 एवर्टन 1. आखिरी मिनटों में एवर्टन ने इक्वलाइज किया. बोर्नमुथ के लिए एलेक्स स्कॉट और 90वें मिनट पर जेम्स टार्कोस्की का इक्वलाइजर फॉर एवर्टन. और इधर कोवेंट्री की हार हुई हो मैदान पे. कोवेंट्री सिटी 0 हल सिटी 1. गोल कर्टेसी ऑफ लियाम मिला फॉर हल सिटी. और अभी से कुछ ही मिनट बाद 8:30 टोटनहम हॉटस्पर का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से है. कुछ और चैंपियनशिप की ओर बढ़ते हैं. स्पेन की लालिगा में इस समय एक मैच हाफ टाइम पे है. लेवांटे 2 बेटिस 2. बाद में रियल सोसिएदाद का मुकाबला स्पैन्यूल से है. सेविलिया वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड. इटली के सीरिया में भी आज 3 मैच खेले जाएंगे विद ए सर्टेन यूवेंटुस वर्सेस पार्मा. जर्मनी के बुंडेसलीगा में आज 5 मैच समाप्त हो गए. एक मैच रखा हुआ है अभी 8:30 के लिए जब बोरुसिया डॉर्टमुंड खेलेगी हैमबर्ग एसवी के विरुद्ध. सो हियर आर द फुल टाइम रिजल्ट्स. एल्वर्सबर्ग 3 बेलवेकुसन 2. एफसी कोलोइन ने भी होफेनहाइम को 3-2 से परास्त किया. माइंस 0 पाडेबोर्न 0. आरबी लाइप्ज़िग ने बोरुसिया मोंचेनग्लादबाख को 3-0 से तोड़ा. और यूनियन बर्लिन 3 आइंट्राख फ्रैंकफर्ट 3. फ्रांस के लीग में भी एक मैच हाफ टाइम पे है. स्ट्रासबूर 0 रेसिंग क्लब दे लांस 1. और बाकी सभी मैच रात के समय खेले जाएंगे जिनके नतीजे हम आपको देंगे कल सुबह 7:30 AM शार्प ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो ये अगला गीत जो है खास तौर पे हमारे दो भाई अजय और अनेश के लिए. खास तौर पे अनेश जो कनाडा से आया हुआ है मॉरिशस में कुछ दिनों की छुट्टी मनाने के लिए. सो वेलकम होम अनेश. ये आपके लिए हैं. हाय ब्रदर्स. मिल नहीं पा रहे हैं पर मिलेंगे ज़रूर. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम होम. एक प्यार का नगमा है जिसके लिए दिल भी बूम बूम करता है.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: इधर दो टीमें क्रिकेट खेलने निकली और एक जीत एक की हार हुई। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की और लोकल क्रिकेट भी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी। सबसे पहले लोकल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 के अंतर्गत आज उसका 5वां सप्ताह आरंभ हुआ। AMG Panthers एंड थॉमस कुक टाइगर्स, ये मैच आज खेला गया और इसमें AMG Panthers की जीत हुई 8 विकेट से। एंड मैन ऑफ द मैच वॉज दीवान वन डे मेरोए, ऐसा भी होता है। सो आपको बधाई AMG Panthers। बता दें कि अब कल सुबह 9 बजे एक और मैच खेला जाएगा बिटवीन APP Leopards एंड वन हेल्थ Jaguars। ये मैच सुबह 9 बजे मापू स्थित SSO क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। और कल ही दिन के 1 बजे कॉन्टिनेंटल चीताज का मुकाबला थॉमस कुक टाइगर्स से है। ICC सीजन 4 अगले सप्ताह इसका फाइनल खेला जाएगा अगले संडे को। इस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बढ़ते इंटरनेशनल क्रिकेट की ओर। इस समय इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टेस्ट मैच का दूसरा दिन चल रहा है और इंग्लैंड नाउ लीड पाकिस्तान बाय 357 रनों से विद 3 विकेट्स रिमेनिंग। सो इंग्लैंड की पहली पारी समाप्त हुई ऑल आउट 290 पर 290 पर। जवाब के तौर पर पाकिस्तान की पूरी पारी आउट हो गई 110 रनों में ही ऑल आउट। और इस प्रकार सेकंड इनिंग्स में इस समय इंग्लैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 177 पर खेल रही है। सो दे आर लीडिंग बाय 357 रन्स विद 3 विकेट्स रिमेनिंग। ग्रेट गोइंग इंग्लैंड टीम, लेकिन क्रिकेट है, पासा पलट सकता है किसी भी वक्त। एंड क्रिकेट एक और टेनिस की भी बात करेंगे। कमाल की प्रतियोगिता भी आने वाली है। कल से US Open टेनिस प्रतियोगिता आरंभ होने जा रही है।

0: टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड मैच शुरू हो गया है. खेल का ये दूसरा मैच चल रहा है एंड ऑफ कोर्स इट्स 0-4 टोटनहम एंड 0-4 न्यूकासल यूनाइटेड. जबकि स्पेन की ला लीगा में लेवांटे इस समय बेटिस को 3-2 से हरा रहा है और जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी बोरुशिया डॉर्टमुंड 0 हैम्बर्ग एसवी 0. बाकी सभी मैच फुल टाइम रिजल्ट हम आपको दे चुके हैं. एंड नाउ मूविंग ऑन टू यूएस ओपन 2026 जो कल से फ्लशिंग मेडोज में आरंभ हो रहा है. ये प्रतियोगिता आरंभ हो रही है और इसमें नोटेबल एब्सेंटी इज वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर जो नहीं खेल पाएगा इंजरी के कारण. राइट नी उसके दाहिने घुटने में चोट लगी है सो नहीं खेल पाएगा. जबकि कार्लोस अल्कराज भी चोटिल अवस्था में था लेकिन वो खेल रहा है. ही इज़ द डिफेंडिंग चैंपियन. और नोवाक जोकोविच दुकोविच 39 साल का है 39 ईयर ओल्ड एंड ही इज प्लेइंग. शायद वो जो है एक रेकर्ड इज इट 25th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की कोशिश में है. सो लेट्स होप. सो मेजर एब्सेंटीज अमंग मेन ये हैं यानिक सिनर, जैक ड्रेपर, होल्जर रून डेनमार्क का ये खिलाड़ी है, हुआओ फोंसेका फ्रॉम ब्राजील, एमा राडुकानू ग्रेट ब्रिटेन की ये खिलाड़ी जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर इन द शिन इस कारण नहीं खेल पाएगी. एंड द बिगेस्ट लॉस इज यानिक सिनर नहीं खेल पाएगा. और नोवाक जोकोविच इज प्लेइंग डिस्पाइट कंसर्न्स अबाउट हिज फिजिकल कंडीशन. ही इज चेसिंग ए हिस्ट्रिक 25th ग्रैंड स्लैम टाइटल.
1: झंकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झंकार बीट्स.

कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: दोनों टीमें मैदान पे उतर गई हैं. टोटनहम हॉटस्पर वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड. खेल का ये 12वां मिनट स्टिल 0-0 और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मैदान पे है. टोटनहम हॉटस्पर की ओर से किंस्की आज गोलकीपर, फिर ग्रे, यान पोल, वान हेक, वान डे वेन, रॉबर्टसन डिफेंस में, टोनाली, बेंटनकूर, पोरो, मैथ्यूस फर्नांडेज, टेल और उमर मारमुश भी खेल रहा है आज टोटनहम हॉटस्पर के लिए. जबकि न्यूकासल यूनाइटेड की ओर से युआन विसा आज अटैकर, देन बाउंस, विलोक, एंटोनी एलांगा, लेविस माइले, निको गोंजालेज, लेविस हॉल, ज्वेन बैटमैन, मलिक चाउ और अमा डेडिक के साथ ल्यूकास हानिसेक आज गोलकीपर. सो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं. पर खबर अच्छे भी अभी अभी खबर आई है कि लिवरपूल का लॉन्ग टाइम टारगेट एम्बाई, इब्राहिम एम्बाई लिवरपूल में नहीं बल्कि एस्टन विला में चला गया है 55 मिलियन पाउंड में, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर एक्सपर्ट फैब्रिजियो रोमानो. अभी अभी खबर आई है कि इब्राहिम एम्बाई पेरिस सेंट-जर्मेन से चला गया है एस्टन विला में. एटलीस्ट इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर समझौता तय हो गया है 55 मिलियन पाउंड में फ्रॉम पेरिस सेंट-जर्मेन टू एस्टन विला, इब्राहिम एम्बाई.
1: RM2 Radio Musti
0: Junkyard Beats.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
3: किसी ने खूब ही कहा है कि एज इज जस्ट इन नंबर, है ना। हम बात कर रहे हैं वोजिनिया की, जो केप वर्दे का गोलकीपर है और वर्ल्ड कप में उसने अपना कमाल तो दिखाया, सबका दिल जीत लिया और वो गया है खेलने के लिए चिली में विद द कोलो कोलो टीम। रवि बुधवार को ही उसने अपना पहला ऑफिशियल मैच खेला कोलो कोलो के साथ और उसमें कोलो कोलो टीम की जीत हुई 3-0 से। एंड दैट वॉज ए फैंटास्टिक मैच बाय वोजिनिया। एक भी गोल उसने कंसीड नहीं किया, ए क्लीन शीट 3-0 से। एंड ही वॉज ए की प्लेयर फॉर नॉट ओनली फॉर केप वर्दे लेकिन कोलो कोलो के लिए भी। और वहाँ पर रेकर्ड जो फैंस हैं और रेटिंग भी, टीवी की रेटिंग भी, फैंस की रेटिंग भी, इसको इन सबको देखकर फीफा के प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फांटिनो ने भी ट्वीट किया और उसको सलाम किया। द मैच अचीव्ड ए 13.47% रेटिंग एंड इट ऑल्सो बिकेम द हाईएस्ट रेटेड गेम ऑफ द 2026 सीजन, 63% हायर दैन द सेकेंड हाईएस्ट रेटेड मैच। सो हैट्स ऑफ टू वोजिनिया, जो आजकल केप वर्दे को छोड़कर खेल रहा है चिली में कोलो कोलो टीम के साथ। एंड बता रहे थे आपको यूएस ओपन के बारे में, लड़कों में द मेन एब्सेंटी इज वर्ल्ड नंबर वन यानी सिनर, तो लड़कियों में कोई खास एब्सेंटी नहीं है। कल सुबह ही, कल संडे से ये प्रतियोगिता शुरू हो रही है और कल ही जेसिका पेगुला, डैनियल मेडवेदेव एंड जैस्मिन पाउलिनी, साथ में टॉमी पोल, आई कैन सी पाब्लो कैरेनो बुस्टा, माटा कुस्चुक भी कल ही मैदान पे उतर रही है, डेनिश

शापोवालोव, और साथ में आप देख सकते हैं कैमरन नूरी को खेलते हुए। कैथी बाउटे भी मैदान में उतर रही है विद द लाइक्स ऑफ मार्टिन लंदनोस एंड एमिलियानो अरांगो, चागो ओगस्टिन तिरांटे, सब के सब कल से मैदान में उतर रही है। लॉस पेड्रो, देखते हैं, एक नज़र डालते हैं अभी के लेटेस्ट स्कोर पर। सो डू वी हैव ए लेटेस्ट स्कोर? टोटनहम वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, खेल का ये 24वां मिनट, स्टिल टोटनहम हॉटस्पर 0 न्यूकासल यूनाइटेड 0। आपको बता दें कि कल प्रीमियर लीग में जो मैच खेले जाएंगे उनमें चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, खबरों के मुताबिक एंजो फर्नांडेज मैनचेस्टर सिटी में जाने वाला है, एकदम पक्का है, और दाम के तौर पर जहां तक दाम का सवाल है वो सब चेल्सी के हाथों में है। मैन सिटी उसके लिए कोई भी दाम देने के लिए तैयार है। सो चेल्सी वर्सेस ब्राइटन कल ये मैच खेला जाएगा कल शाम 5 बजे। उसी समय लीड्स का मुकाबला ब्रैंडफोर्ड से, सन्डरलैंड वर्सेस फुलहम, और कल रात 7:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस इप्सविच town.

So last for the road. बहुत धन्यवाद शुक्रिया जुड़ने के लिए और चुनने के लिए साथ देने के लिए शुक्रिया 7 to 9 every Saturday on RM2 Radio Masti अगले सप्ताह तक आज्ञा दीजिए नमस्कार और शुभ रात्रि

0: झलकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: झलकार बीट्स
1: वेलकम टू RM2
0: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
0: 103.5
2: ईस्ट वेस्ट
0: 90

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई मैं हूं वेदिता, आ गई हूं लेकर आपके लिए आप ही का अपना लेट नाइट ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो मस्ती पर। तो भाई रात जवां है और आपका मूड भी काफी मस्त होगा, तो चलिए इसी के साथ मैं और आप साथ में मिलकर रेडियो मस्ती पर करते हैं थोड़ा हंगामा। अपना रेडियो सेट का जो वॉल्यूम है उसको हाई रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं धमाकेदार गाने।

राइट से जो लोग अपने घर पर हैं और उनको ये लगता है कि पार्टी करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। पार्टी करने के लिए आपका मूड अच्छा होना चाहिए और वो वाइब होनी चाहिए। तो घर पर हो, अकेले हो, कोई बात नहीं भाई, हमारा डांस तो कहीं भी निकल जाता है। हम तो किचन में खाना बनाते बनाते डांस कर लेते हैं, बर्तन धोते धोते डांस कर लेते हैं, कभी कभी मम्मी की डांस सुनते सुनते भी कर लेते हैं डांस। तो आप भी ऐसा करो कि मम्मी की डांट नहीं लेकिन हमारे गाने सुनकर डांस तो कर ही सकते हो, है ना। लेट्स कीप कंटिन्यू विद दिस ब्यूटिफुल प्रोग्राम। आप

फ्रेंड्स, अगर आप इस समय रोड पर हैं तो सेफ ड्राइव कीजिए और रेडियो मस्ती को अपना ट्रैवल पार्टनर बनाए रखिए। चलिए जी, विदिता का साथ है, लेट नाइट ग्रुप हमारा प्रोग्राम है, पेपी गाने हैं आपके लिए नॉन स्टॉप। ऐसा करो, सीट बेल्ट लगाइए और रिदम के साथ जर्नी को मेमोरेबल बनाइए।

सो दोस्तों ग्रूव कर रहे हैं आप भी, ग्रूव कर रहे हैं हम भी, चाहे आप कार में हो, किचन में हो, या हेडफोन लगाकर घर पर डांस कर रहे हैं, डोंट वरी, हम किसी को जज नहीं करते।

आप हाई ही रखना और आप हमारे गीतों के साथ हाई हो जाइए और कहिए हाई टू ऑल द ब्यूटीफुल मेमोरीज जो आपके साथ इन गीतों के साथ बना है।

अच्छा हो तो मन तो भर ही जाता है, साथ में ऐसा लगता है कि भाई हम बैठे क्यों हैं। चलो कोई नहीं, हाई एनर्जी वाले गाने लेकर आए हैं आपके लिए, आपकी इवनिंग को कलरफुल बनाने के लिए, और इसे हमें अलाइव रखना है। तो लेट्स कीप ऑन ग्रूविंग रेडियो मस्ती पर।

मेरे दोस्तों गेट रेडी, क्योंकि नेक्स्ट हमारे गाने जो हैं अभी आपको सीट से उठाएंगे और आपको डांस करवाएंगे। यस, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती विनीता के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आप ही का लेट नाइट ग्रूव्स।

अभी अगर मैं बताऊं कि अगले गाने को सुनने के बाद भी आप डांस करना नहीं रुकेंगे तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास म्यूजिक ही कुछ ऐसा है ना, फील होना चाहिए, फील तो फील करो म्यूजिक और शुरू हो जाओ। दिस इज योर लेट नाइट ग्रूव्स विनीता के साथ ऑन रेडियो मस्ती।

का जो पॉजिटिव वाइब है वो आप तक पहुंच गई होगी और पहुंच रही है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो गाने हैं आपके मूड को बदलते हुए, हम यहाँ पर आपको बिल्कुल टेंशन फ्री करते हैं। अपने आप इस म्यूजिक को फील करो, इस एनर्जी को फील करो। गाना गाना है, गाओ। लिरिक्स आते हैं तो, नहीं आते हैं तो फिर भी गाओ, नहीं आते हैं तो लिप सिंक करो, लेकिन मूड बने रहने चाहिए।

ओके सैटरडे इवनिंग जाने का टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगले वीक भी हम ऐसे ही गाने के साथ आएंगे. एंड चलो, टेंशन जो होती है ना, ये आपके चेहरे पे झुड़ियाँ जैसी होती हैं, रिंकल्स जैसे होते हैं, अच्छे नहीं लगते. उसको दूर करो, और उसको दूर करने के लिए स्माइल करना ज़रूरी है. जितना स्माइल करोगे, जितना खुश रहोगे, झुड़ियाँ

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: पूरी थी अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: You're listening to RM2, a radio masti.

0: समझे,
1: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: स्पेन के एक दूरदराज इलाके के सरहद ढांचे को मजबूत किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर हो रहे गैरकानूनी सीमा पार को काफी हद तक रोक दिया जा सके। इससे पहले ही दिन में हजारों लोग समुद्र और जमीनी रास्तों से वहां पहुंच गए थे। पानी में कम से कम 19 लाशें मिली। स्पेनिश डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ने बताया कि गृह मंत्रालय के हवाले से अंदाजा है कि 24 घंटों के अंदर 49,000 से ज्यादा लोग गैर कानूनी तरीके से मोरक्को से सरहद पार कर गए हैं। अमेरिका ने नए सिरे से ईरान पर नई पाबंदियां लगानी शुरू की हैं। एक व्यक्ति और 5 कंपनियां प्रतिबंध से ताल्लुक रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाज कंपनियां मध्य पूर्व में उड़ानों को रद्द कर रही हैं। लंबे युद्ध के बाद विमानन क्षेत्र को दोबारा गति मिल रही थी कि अब अरब मुल्कों में फिर से रुकावटें पैदा हो गई हैं। गजा में हमास के लिए समझौता। गजा की शांति परिषद ने कहा कि हमास ने एक रोड मैप की मंजूरी दी है, जिससे गजा से इजरायली ताकतें फारिग होंगी और हमास का निःशस्त्रीकरण होगा। हमास ने शर्त रखी कि इसराइल को भी इस रोड मैप का पालन करना पड़ेगा। उसने बताया कि वो तब तक कदम नहीं उठाएगा जब तक इजरायली पक्ष की स्वीकृति ना हो। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में एक खान में एक धमाका हुआ। 34 लोग जान से गए हैं। घटना के वक्त 40 लोग स्थल पर मौजूद थे। सभी मरहूमों के परिवारों को 5,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक जांच शुरू की गई है। स्पेन और फ्रांस के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में लगी जंगल की आग फिलहाल काफी हद तक काबू में आ गई है। हालांकि दोनों मुल्कों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि आग ग्रीस और इटली की तरफ भी फैल सकती है। तेज हवाओं और भयंकर गर्मी की वजह से ग्रीस से लेकर यूके तक कई जगहों पर लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। मेडिटेरेनियन क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं आग को और तेज फैला सकती हैं। इन हवाओं की वजह से आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रीस की मुख्य भूमि के साथ साथ क्रेट और पेरिस द्वीपों पर लगी आग से निपटने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। एक वृहद विस्थापन कार्रवाई शुरू की गई है। भारत में मानसूनी बारिश की वजह से अनेक राज्यों में नुकसान हैं। आसाम में बाढ़ की वजह से 78 लोगों की जान गई है। आने वाले 3 दिनों के लिए भी तेज वर्षा का अनुमान है।